एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 अगस्त सन 2026। इस समय सवेरे के 5:56 और 55 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: मैं वैष्णवी। भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। दो दिन की बैठक में तीन प्राथमिकता क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक से ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत सांस्कृतिक साझेदारी मजबूत करने तथा संस्कृति के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त होती है। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्य रूप से आरंभिक बाल्यावस्था में समुचित देखभाल और शिक्षा, कौशल विकास सहयोग बढ़ाना तथा अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर विचार होगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति, लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। इससे पहले लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित किया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश के संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही का नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। इसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। संसद की कार्यवाही आज दिन के 11 बजे से शुरू होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि वहां की वास्तविकता विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही हिंसा है।
1: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के

0: संतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेगी। पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही हैं। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप आज से शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्य भारतीय टीम हिस्सा लेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, आज का परिश्रम कल का परिणाम तय करता है। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 271। छह बजकर 45 पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा। कलाकार हैं गायिका शुभा मुक्तल। सुनिए श्रृंखला की 5वीं कड़ी। प्रस्तुति है कांचन प्रकाश संगीत की। 7 भूले बिसरे गीत हमेरा ही प्यार के 7:30 पर। 8:15 पर त्रिवेणी। आलेख और स्वर है आरती श्रीवास्तव का। आठ बजकर 30 पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार। कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री काजोल पर। प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। 10:00 आप सुनेंगे पिटारा में सेल्यूलॉइड के सितारे। अभिनेत्री और निर्देशक तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। संपादन सहयोग मनीषा सिंह का। प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। 11:00 सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। 1:00 सुनिए सुरीला सफर। दोपहर 2:00 त्रिवेणी। सुनिए आलेख और स्वर है आरती श्रीवास्तव का। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 2:30 पर सदा बहार नगमे। 3:00 आप सुनेंगे सखी सहेली। 4:00 पिटारा में आज के मेहमान लेखक निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। संपादन सहयोग मनीषा सिंह का। प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने।

6:35 पर संध्या रंजन, 7 बजे सुनिए जयमाला कार्यक्रम, 7:45 पर इंद्रधनुष में आप सुनेंगे राग अनुराग, 8 बजे हवा महल में सुनिए झलकी चुपके चुपके, लेखन है आर के शर्मा का और निर्देशन है नीलम चोपड़ा का, 8:15 पर रात्रि चित्रलोक। रात 9 बजे सुनेंगे आपके लिए कार्यक्रम, 10 बजे छाया गीत, आलेख और स्वर है मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की, और 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात।

प्रसंग है किष्किंधा कांड में बालिवध के बाद सुग्रीव के राज्यारोहण तथा बालिपुत्र अंगद के युवराज घोषित किए जाने के बाद प्रवर्षण पर्वत की गुफा में राम लक्ष्मण प्रवास का। ऋतुचक्र अपनी गति से चल रहा है। वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। सुंदर स्फटिक मणि की अत्यंत उज्जवल शिला पर बैठे हुए श्री राम छोटे भाई लक्ष्मण से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेक कथाएं कहते हैं। आकाश में घुमड़ते बादलों को देख मोरों के झुंड ऐसे नर्तन कर रहे हैं जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होता है। आकाश में घुमड़ते बादलों को देख मोरों के झुंड ऐसे नर्तन कर रहे हैं जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होता है। बादल पृथ्वी पर ऐसे झुके आते हैं जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। वर्षा की बूंदों की चोट पर्वत ऐसे सहते हैं जैसे दुष्टों के वचन संत सह लेते हैं। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है जैसे विद्यार्थियों का समूह वेद पाठ कर रहा हो।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 271।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोता मित्रों, संगीत सरिता कार्यक्रम में आपका स्वागत है और शुभा जी आपका भी स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: हमने शुद्ध मल्हार, मेघ मल्हार, मेघ गौड़ मल्हार, मियाँ की मल्हार, जो कि वर्षा ऋतु से संबंधित राग हैं, की आपने चर्चा की और बंदिशें भी सुनाई।
1: जी।
0: लेकिन शुभा जी, मुझे एक सवाल हमेशा मन में ये उमड़ता घुमड़ता रहता है कि ऐसी जो बंदिशें हैं वो क्या सिर्फ मल्हार ही में मिलती हैं, किसी और राग में?
1: जी, बहुत सारी हैं ऐसे अन्य रागों में जिनका वर्षा से ऐसा कोई संबंध नहीं है रागों का, लेकिन जो बंदिशों की जो साहित्य है वो वर्षा से संबंधित जरूर मिलता है।
0: जी।
1: एक ऐसी बंदिश है जिसे संगीत के बहुत सारे विद्यार्थी उससे परिचित होंगे, राग बिहाग की एक बंदिश है, लट उरझी सुलझा जारे बालम। ये बहुत सारे लोग सीखते हैं, और क्योंकि बिहाग ऐसा राग है, एक महा राग है, जिसे शुरुआत में भी सिखाया जाता है, यानी जो सीखना शुरू करता है वो उसके पहले दूसरे साल में आपको बिहाग जरूर सिखाया जाता है, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस बंदिश से परिचित होंगे। मुझे जो एक बात इसमें अलग लगी कि ख्याल के रूप में तो इसे गाया ही जाता है, ख्याल गायक इसे गाते ही हैं, लेकिन मुझे यही साहित्य और यही पद, यानी जो साहित्य है, वो मुझे वैष्णव मंदिरों में, कृष्ण मंदिरों में, जो उत्तर भारत के कृष्ण मंदिर हैं, उनमें आप जानती हैं कि संगीत के बिना सेवा ठाकुर की पूरी नहीं होती, नहीं है। राग सेवा
0: ये सनातन परंपरा है।
1: जी बिल्कुल।
0: अष्टछाप कवियों ने
1: जी
0: इसका
1: जी, जी और ऐसा साहित्य और ऐसा संगीत मिलता है उसमें जो कि बिल्कुल खजाना सा है, तो उसमें यही साहित्य मुझे मिला, लेकिन उसे तीज के पदों के एक संग्रह में शामिल किया गया था।
0: जी, जी।
1: तो हम तो जब ख्याल गाते हैं तो एक स्थाई एक अंतरा गाते हैं, लेकिन उस पद में जिसे तीज का पद कहा गया, और वो ठीक भी लगता है क्योंकि तीज का जो त्योहार है वो वर्षा ऋतु के ही दौरान आता है, और मुझे याद है कि अभी जो एक तीज के समय मेहंदी लगाई जाती है, कन्याएं सुहागिनें सब जो है सज धज के और मेहंदी लगाती हैं,
0: हरी चूड़ियां
1: लाल चूड़ियां, मणिहारन बुलाई जाती है चूड़ियां पहनाने के लिए घर की महिलाओं को, और माँ की ओर से साड़ी श्रृंगार का सामान ये सब आता है, तो झूला पड़ता है, झूला भी झूला जाता है तीज के दौरान, तो ये बिल्कुल इसका जो साहित्य है

0: उपयुक्त लगता है कि तीज का पर्व क्यों कहा जाए इसे? शुभा जी, भारतवर्ष में जगह जगह सावन ऋतु सावन और जो आप ये कह रही हैं त्योहार, थोड़ा सा फर्क होगा इसको मनाने की जो पद्धति रीति है उसमें फर्क होगा, लेकिन मनाया तो जाता ही है।
1: जी हाँ, किसी ना किसी रूप में धरती का जो एक की जो उपजाऊ एक सृजनशीलता
0: बिल्कुल
1: उसको नवाजा जाता है, उसको नमन किया जाता है और प्रार्थना होती है कि ये सदैव ऐसा ही बना रहे। तो इस पद में क्या कहा गया? जो नायिका है वो तो हाथ में मेहंदी लगा के बैठी है, दोनों हाथों में मेहंदी लगी है, तो अब संकेत कैसे करे वो नायक को, कैसे उसे अपने पास बुलाए? तो वो कहती है, लट उर्झी सुरझाए जा बालम, मोरे हाथन मेहंदी लगी है। वो तो बेबस है, वो तो मजबूर है, अपने दोनों हाथ तो वो लगा ही नहीं सकती है अपने केश पे, तो लट उलझी सुलझा जा रे बालम, मोरे हाथन मेहंदी लगी है। फिर जो तीन अंतरे हैं वो इस प्रकार हैं, सिर की सारी सरक गई है, जो साड़ी का जो घूंघट है जो सर पे लिया था वो सरक गया है, अपने हाथ उढ़ाए जा बालम, मोरे हाथन मेहंदी लगी है।
0: वाह।
1: फिर दूसरा अंतरा उसके बोल इस प्रकार है, भाल की बेंदी मोरी गिर जो परी है। शायद हाथ लगा हो तो बिंदी भी गिर गई हो। भाल की बेंदी मोरी गिर जो परी है, हा हा करत लगाए जा बालम।
0: हा हा करत,
1: हाँ मतलब एक बुलाने का तरीका
0: हा,
1: है
0: हा।
1: नीलांबर प्रभु गुण ना भूलूं, बीरी नेक खवाए जा बालम। बीरी यानी पान का बीड़ा, वो भी मुझे अपने हाथ से खिला दो, ऐसा निवेदन है
0: जी।
1: तो ये पद तीज का पद, जो कि यदि हम उसे बिहाग में बैठा के आलाप इत्यादि के साथ बढ़त के साथ गाएं तो वो ख्याल गायक भी गाते हैं, और मंदिरों में ये तीज के पद के रूप में भी सुनने को मिलता
0: और
1: है।
0: और भले ही इसमें जैसे उमड़ घुमड़ कर आई घटा और ये सब ना भी हो, फिर भी वर्षा ऋतु के समय वर्षा काल में इसे मनाया जाता है।
1: जी बिल्कुल,
0: त्योहार
1: बिल्कुल
0: तो
1: मनाया जाता है।
0: उस समय तो नायिका के हाथों में जब मेहंदी लगी है, और हर जगह हर प्रांत में ये होता है कि सावन में हाथों में मेहंदी तो लगाई जाती है, तो सुनाएंगी आप ये पूरा पद या
1: बिल्कुल
0: क्या मन है?
1: बिल्कुल पूरा पद भी सुनाऊंगी और ये भी कहूंगी कि हर रचना का जो साहित्य है उसे यूं ही उड़ा नहीं देना चाहिए, उसमें बहुत सारी कहानियां पिरोई हुई आपको मिलेंगी।
0: और हमारी ये सांस्कृतिक धरोहर सी बनी हुई है ये चीजें बंदिशें, तो इनको सुनना और सुनाना दोनों ही बहुत ही उपयुक्त होगा।
1: राग बिहाग का चलन कुछ इस प्रकार है।

0: था तीज का पद, तीन अंतरे बड़े ही सुंदर राग बिहाग में। शुभा जी, आज हम यहीं रुकते हैं, श्रोता मित्रों से भी आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया।

एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के ठीक 7 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम नमस्कार अलवर। नमस्कार अलवर सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आजकल मानसून का मौसम चल रहा है। हरियाली, मानसून और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं। यह मौसम केवल प्रकृति की सुंदरता ही नहीं बढ़ाता, बल्कि पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मानसून का मौसम प्रकृति का सबसे मनमोहक उपहार है। पहली बारिश की बूंदें जब सूखी धरती को छूती हैं तो मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध मन को आनंद से भर देती है। मानसून हमें प्रकृति के साथ जुड़ने का अवसर देता है। यह संदेश देता है कि जल, हरियाली और पर्यावरण का संरक्षण हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है।

श्रोताओं, सचमुच मानसून का मौसम केवल वर्षा का नहीं बल्कि जीवन में नई ऊर्जा, हरियाली, प्रेम और आनंद का मौसम है जो हर हृदय में खुशियों को भर देता है। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, उपजाऊ भूमि, वन और वन्य जीव सभी हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। लेकिन बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण पर्यावरण को गंभीर संकट में डाल दिया है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।

श्रोताओं, हम छोटे छोटे प्रयासों से भी पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाना, जल और बिजली की बचत करना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, कचरे का उचित निपटारा करना तथा सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही हमें वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के प्रति भी जागरूक रहना पड़ेगा।

0: प्रकृति हमें बिना किसी भेदभाव के जीवनदायी संसाधन प्रदान करती है, इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम इसका सम्मान करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, हरित और संतुलित पर्यावरण छोड़कर जाएं। आइए हम सब मिलकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लें, क्योंकि स्वस्थ पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

श्रोताओं, आइए इस मानसून में हम सभी एक एक पौधा लगाएं, उसकी देखभाल करने और अपने आसपास हरियाली बढ़ाने का संकल्प लें। यही स्वस्थ पर्यावरण, स्वस्थ जीवन और आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यदि हम ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे तो हमारे बाग बगीचे और उद्यान खुशबू व स्वच्छ वातावरण से महकते रहेंगे। और इन्हीं बातों के साथ आज का नमस्कार अलवर कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार अलवर, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:30 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ थी। राजेंद्र किशन का लिखा गीत था। कल्याण जी, आनंद जी का संगीत, और आप सुन रहे थे फिल्म फरार में।

0: पाकीजा इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। कमाल अमरोही का लिखा गीत था, गुलाम मोहम्मद का संगीत। इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं।
1: जब जब आप करेंगे हमें याद, हम मिलेंगे आपको अपने ही पास। अगर आप हैं दुनिया के किसी भी कोने में और सुनना चाहते हैं आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल, तो आप हमें सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी। हमें सुनने के लिए आप जाइए अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर पर, वहां से कीजिए डाउनलोड न्यूज ऑन AIR ऐप। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद जब आप लाइव रेडियो के ऑप्शंस पर जाएंगे, तो वहां आपको मिलेंगे रेडियो के ढेरों चैनल्स। इनमें से आप सर्च कीजिए अपना फेवरेट ऑल इंडिया रेडियो अलवर, जहां आप हमें पाएंगे अपने साथ, ओनली एट न्यूज ऑन AIR।
0: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित, भारत ने हमले की कड़ी निंदा की। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजीसी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को नवीं वरीयता मिली। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को 5वीं वरीयता। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे औलैया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 13 भारतीय थे।
3: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया जाना बंद होना चाहिए और क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध नौवहन और व्यापार शीघ्र बहाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
2: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है।
4: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
2: श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि अगले महीने 12 और 13 तारीख को भारत की मेजबानी में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को आमंत्रित किया गया है। भारत इस साल ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह बैठक आज और कल भोपाल में आयोजित होगी।
5: भोपाल में आज से ब्रिक्स देशों की बड़ी सांस्कृतिक बैठक शुरू हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ये आयोजन 8 अगस्त तक चलेगा। इसमें ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठकें होंगी। इसके चलते भोपाल को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तरह सजाया गया है। इस आयोजन से सांस्कृतिक संवाद बढ़ेगा और सदस्य देशों के बीच सहयोग मजबूत होगा। पहले 2 दिन अधिकारी स्तर पर चर्चा होगी जबकि आखिरी 2 दिन मंत्री स्तर पर घोषणा पत्र को अंतिम रूप।

0: दिया जाएगा। भारत ने इस बैठक में दो अहम प्रस्ताव रखे हैं। पहला, कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी के लिए साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना और दूसरा, यूनेस्को में सदस्य देशों के साथ मिलकर साझा नामांकन भेजने की पहल करना। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषणा करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। यह आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान प्रणाली मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है।
2: झारखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस समय युवाओं के आक्रोश और आंसुओं का गवाह बना हुआ है। जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन विडंबना देखिए, व्यवस्था का रुख इतना कड़ा है कि कड़ाके की धूप और खुले आसमान के नीचे बैठे इन प्रदर्शनकारियों को पीने का पानी, खाना और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पा रही हैं। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने इस मुद्दे पर विपक्ष के मौन रहने पर तीखा हमला बोला है। आंदोलन पर बुनियादी संकट गहराने के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
3: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को एमसीसी पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।

0: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं।
1: वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट में इस विशेष पहल को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वायदा किया था। इस निर्णय से राज्य भर में लाखों वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने महिला कल्याण विभाग को 1,094 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किए हैं, जिससे निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा कर रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। केरलम में आज भी तेज वर्षा जारी रहेगी, हालांकि कल की तुलना में आज बारिश में कुछ कमी का अनुमान है। असम में लगातार तेज बारिश जारी है और इससे राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने असम के लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 24 घंटों में पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पीवी सिंधु को BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में नवी वरीयता दी गई है। ये चैंपियनशिप 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप में सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में 14वीं और ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में 15वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। चैंपियनशिप की पांचों स्पर्धाओं में भारत के दो दो खिलाड़ी भाग लेंगे। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमरीका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्यों वाली भारतीय टीम हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। अमृत उद्यान का 15 सितंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर साइबर ठगी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश और एयर इंडिया की फ्लाइट 2379 के अचानक हवा के दबाव में फंसने से यात्रियों की हुई कठिनाई के समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। जनसत्ता का शीर्ष समाचार है, साइबर ठगी वाले खातों से निपटने के लिए 4 हफ्ते में बने मानक संचालन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट। दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, 4 सप्ताह के भीतर म्यूल खातों से निपटने को SOP बनाए RBI। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाथों पर नियम बनेंगे। पंजाब केसरी ने एयर इंडिया विमान की उड़ान संख्या 2379 के समाचार को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। शीर्षक दिया है, एयर इंडिया विमान टर्बुलेंस में फंसा, पत्र ने इस घटना में घायल यात्रियों की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को शीर्षक दिया है, थाईलैंड से दिल्ली आ रहा विमान टर्बुलेंस में फंसा, DGCA ने जांच के आदेश दिए। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, जन्म मृत्यु पंजीकरण सुरक्षा उपाय नागरिकों की मुश्किल ना बने।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। NEET UG काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। और मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 8:15 हुए हैं। लीजिए पेश है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आ सुनिए जगजीत सिंह की गाई गजलें।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: सबदंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। उमंग कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर विचार भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर जी ने। लिखते हैं,
2: बदलना है अगर कल को तो आज को बदलना सीखो, किस्मत की राह न देखो, खुद आगे बढ़ना सीखो।
1: बहुत सुंदर और प्रेरणादायी विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ श्रोताओं, परिवर्तन आज को बदलने से ही आता है, क्योंकि कल कभी नहीं आता
2: जी।
1: आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी का।
2: नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी। स्वामी विवेकानंद जी पर केंद्रित कार्यक्रम उमंग सुना एवं पसंद आया, कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है।
2: आपने आगे लिखा है, कार्यक्रम इस तरह से प्रस्तुत किया गया जैसे स्वामी विवेकानंद जी साक्षात हमारी आंखों के सामने हैं एवं मन लगाकर हम इनका प्रवचन सुन रहे हैं। शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: और राजा जी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: गुजरात गांधी ग्राउंड से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
1: तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम के साथ। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज की चर्चा में।
2: श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस दोस्त की जो हर समय हमारे साथ रहता है। जरा सोचिए कौन है वो जो इस आधुनिक युग में हमेशा लगभग हम सबके साथ रहता है, कोई रहे न रहे और उसके बिना अब रहा ही नहीं जाता।
1: विमलेश जी, मुझे लगता है आप बात कर रही हैं मोबाइल फोन की।
2: बिल्कुल सही कहा जी जी। अब तो लोग क्या विद्यार्थी भी मोबाइल के बिना ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे मछली पानी के बिना।
1: जी बहुत हद तक आपका कहना बिल्कुल ठीक है। विमलेश जी, सच्चाई तो ये है कि कुछ तो रात को भी मोबाइल देखते देखते सोते हैं और सुबह भी मोबाइल देख कर ही उठते हैं।
2: लेकिन अजीत जी, सच्चाई तो ये भी है कि अब मोबाइल के बिना काम भी नहीं चल सकता।
1: जी वो तो है,
2: हम किसी न किसी प्रकार से उस पर आश्रित हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हमें एक बात अच्छी तरह से समझना होगा कि मोबाइल तो मात्र एक साधन है
2: जी।
1: महत्वपूर्ण ये है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसका सही उपयोग हमें आगे ले जाएगा और गलत उपयोग बिल्कुल पीछे
2: जी।
1: लेकिन प्रश्न है कि मोबाइल का सही उपयोग करें तो कैसे करें।
2: जी अजीत जी, चलिए मान लीजिए परीक्षा 1 महीने बाद है, विद्यार्थी मोबाइल उठाता है पढ़ने के लिए, वो पढ़ाई के लिए गंभीर भी है, मोबाइल में परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन कक्षा चल रही है कि तभी एक नोटिफिकेशन आया, नई रील देखिए। अब बताइए जी जी क्या होगा।
1: फिर एक और रील या स्टोरी और आ जाएगी।
2: बिल्कुल, या सोशल मीडिया पर और कई संदेश आ जाएंगे, पता चला कि उसकी फोटो को बहुत से लाइक्स मिल गए हैं
1: और एक मैसेज ये भी आ गया कि आपकी फोटो तो साहब बिल्कुल कमाल कर रही है, कुछ और फोटो डालिए। अब क्या होगा हम समझ सकते हैं।
2: देखते देखते 1 घंटा क्या कई घंटे गायब हो गए
1: और शायद पूरा दिन पानी में गया। तो अब सवाल ये है विमलेश जी कि क्या किया जाए।
2: देखिए, यही वो समय है जब पढ़ने वाले को संयम और दृढ़ संकल्प की जरूरत पड़ती है। एक नियम बनाना होगा, पढ़ाई के समय सोशल मीडिया बंद
1: और नोटिफिकेशन भी बंद।
2: बिल्कुल,

0: नहीं तो हर 5 मिनट में मोबाइल बोलेगा,
1: क्या बोलेगा?
0: मुझे भी देख लो।
1: लेकिन सवाल ये है कि यदि मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ तो विमलेश जी इंटरनेट तो ऑन है, ऐसे में सोशल मीडिया भी तो चलता रहेगा।
0: नहीं अजीत जी, आप मोबाइल छोड़े बिना इसे नियंत्रित भी कर सकते हैं, इसका भी उपाय है।
1: वो कैसे?
0: हर मोबाइल की सेटिंग में DND या डू नॉट डिस्टर्ब या फोकस मोड का विकल्प होता है, इस विकल्प को चालू कर दें। वहां आप अपनी इच्छा से फोन या सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन खोल या बंद कर सकते हैं। इससे इंटरनेट चालू रहेगा और आप पढ़ाई बिना बाधा के कर पाएंगे।
1: जी मित्रों, आप अलग से भी सोशल मीडिया के एप्स को उनकी सेटिंग में जाकर म्यूट कर सकते हैं।
0: जी
1: आप एक काम और कर सकते हैं कि सारे एप्स के आइकन मुख्य स्क्रीन से हटाकर दूसरी स्क्रीन पर डाल दें, ताकि यदि संदेश आए भी तो आपको दिखाई ना पड़े।
0: तो श्रोता मित्रों, हम कहना चाहेंगे कि मोबाइल से मनोरंजन जरूर कीजिए, लेकिन इससे अधिक मोबाइल को सीखने का साथी बनाइए। और याद रखिए,
1: मोबाइल पढ़ाई का साधन बने, समय बर्बाद करने का नहीं।
0: पढ़ते समय, परिवार के साथ समय बिताते समय नोटिफिकेशन अवश्य बंद रखें।
1: रोज मोबाइल के उपयोग का समय तय करें और रात में देर तक मोबाइल न चलाएं, और इंटरनेट का सुरक्षित और जिम्मेदारी से उपयोग करें।
0: मत भूलिए, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं।
1: क्या बात है, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं। जिसने मोबाइल को नियंत्रित कर लिया,
0: समझिए उसने अपने भविष्य को भी नियंत्रित कर लिया।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओ, मिलेंगे फिर एक
0: नई जानकारी के साथ।
1: श्रोताओ, आज हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आपको एक काम करना है।
0: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर एक या दो पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको करना क्या है।
1: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर एक या दो पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। और भेज दीजिए अपना स्लोगन हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के कई विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
0: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो श्रोता, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है परीक्षा।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कहानी पर आधारित है, जिसे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। कहानी के द्वारा ईमानदारी, परिश्रम, कर्तव्य निर्वहन और कार्यनिष्ठा के मूल्यों पर प्रकाश डाला गया है।
2: परीक्षा। बात उन दिनों की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। उन दिनों देश में बहुत सारी रियासतें हुआ करती थीं। रियासतें यानी छोटे छोटे राज्य जो अंग्रेजों की अधीनता तो मानते थे लेकिन स्वतंत्र थे। ऐसी ही एक रियासत थी देवगढ़। राजस्थान की देवगढ़ रियासत बहुत ही मनोरम स्थान में बसी हुई थी। रियासत की जनता बहुत प्रसन्न थी। रियासत की खुशहाली के पीछे सबसे बड़ा योगदान था वहाँ के दीवान यानी मुख्य प्रशासक सरदार सुजान सिंह का। वे दयालु, नीति कुशल और बहुत अच्छे प्रशासक थे, लेकिन अब वे बूढ़े हो चले थे। एक दिन की बात है।
3: महाराज की जय हो। दीवान श्रीमत सरदार सुजान सिंह जी आपसे मिलना चाहते हैं।
4: मिलना चाहते हैं इस समय? उन्हें आदर सहित कक्ष में ले आओ।
3: जी महाराज।
5: महाराज,
4: आइए आइए दीवान साहब, बैठिए बैठिए। जी कहिए।
5: राजन, पिछले 40 वर्षों से आपके दास ने इस रियासत की सेवा की है। अब विचारा है कि इस सेवा से अवकाश ग्रहण करूं।
4: दीवान साहब,

0: राज,
1: हम आपका अनुरोध स्वीकार तब करेंगे जब आप हमारी एक शर्त मानेंगे।
0: आज्ञा दीजिए महाराज। कैसी शर्त?
1: शर्त यह है कि अवकाश ग्रहण करने से पहले आपको राज्य के लिए एक ऐसा दीवान ढूंढ कर देना होगा जो आपकी तरह सुयोग्य हो।
0: जी महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा।
2: दूसरे ही दिन देश के सभी प्रसिद्ध समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर विज्ञापन छपा कि देवगढ़ रियासत के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। इस विज्ञापन का वही असर हुआ जो जंगल में आग का होता है। सैकड़ों लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए देश के अलग अलग प्रांतों से देवगढ़ चल पड़े। आइए अब आपका परिचय कराएं कुछ उम्मीदवारों से। आप हैं श्रीमान अ। आप सोकर उठते थे सवेरे 10 बजे, लेकिन जब से यहाँ आए हैं बेचारे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और बगीचे में टहलते हुए सूर्य देवता के दर्शन करते हैं। और आप हैं श्रीमान ब, स और ज। इनकी तो पूछिए मत, अपने घर में इन्होंने नौकरों की नाक में दम कर रखा था। ये वहाँ अशिष्टता के जीते जागते उदाहरण थे, लेकिन यहाँ तो ये बेचारे नौकरों को भी संबोधित करते समय आप, श्रीमन, महामना, मान्यवर और जनाब जैसे संबोधनों और उपाधियों का उपयोग किए बिना बात ही नहीं करते। और इनसे मिलिए, आप हैं श्रीमान क। आप फैशन के मारे हैं, लेकिन यहाँ सादगी की प्रतिमूर्ति बने घूम रहे हैं। अक्सर राजमहल के पुस्तकालय में आप बड़े बड़े ग्रंथों को उलटते पलटते देखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर पाखंडोत्सव चल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी अयोग्य हैं। उन्हें क्या पता था कि कुशल और अनुभवी दीवान सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रही हैं और अनुभवी कान सब कुछ सुन रहे हैं। समय समय पर उम्मीदवारों को समूह वाद विवाद के लिए भी बुलाया जाता था। एक दिन की बात है, सभी उम्मीदवारों को लगा कि विद्वता तो दिखा ही रहे हैं, क्यों ना शारीरिक क्षमता भी दिखाई जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि आज हॉकी खेली जाएगी।
3: ये मैंने दिया पास। अरे दौड़ो दौड़ो और तेज दौड़ो।
4: वो तो गेंद लिए खुद ही दौड़ा चला जा रहा, उसे पास देना चाहिए।
3: लगता है खुद ही गोल करके मानेगा। अभी छीनता हूँ गेंद उससे।
2: सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें कहीं दूर से इस मैच को भी देख रही थीं। खेल खत्म हुआ, सभी खिलाड़ी थके हुए थे, शाम होने वाली थी। अब सबने फैसला किया कि राजमहल लौटा जाए। मैदान से थोड़ी ही दूरी पर एक नाला था जिस पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को नाले में से चलकर आना होता था। खिलाड़ी लोग उसी नाले के पास बैठे सुस्ता रहे थे।
5: आज खेल में बड़ा मजा,
6: बहुत मजा आ गया। क्या गोल मारा था भाई, मजा आ गया उसमें तो।
7: हां, गोल हो गया किसी का,
2: दिल खुश हो गया। तभी एक किसान अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। नाले में कीचड़ था और चढ़ाई ऊंची थी, उसकी गाड़ी वहीं फंस गई।
8: ए, इधर क्या देख रहे हो?
0: साहब, गाड़ी फंस गई है, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो।
9: अच्छा, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो बड़े आए।
10: चलो साथियों, देर हो रही है, दीवान साहब समय का भी बहुत ध्यान रखते हैं।
6: चलो
0: अरे भाई निकलो। लेकिन
9: अरे छोड़ो इन्हें, चलो।
2: लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा था जो वहीं रुक गया। आज हॉकी के खेल में उसे चोट भी लग गई थी और वह लंगड़ा रहा था। वह दृढ़ निश्चय के साथ किसान की ओर बढ़ा और बोला,

0: बाबा तुम गाड़ी में बैठकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, बस थोड़ी देर में गाड़ी बाहर निकल जाएगी।
1: हाँ ठीक है,
0: कोशिश करते हैं।
1: हाँ
2: और हुआ भी यही, युवक ने पूरा जोर लगाया, किसान ने बैलों को साधा और थोड़ी ही देर में गाड़ी नाले के

0: तो क्या इनाम देते हो?
1: नारायण ने चाहा तो दीवानी आपको ही मिलेगी।
2: और आखिर वो दिन आ ही गया। सबके दिल जोर से धड़क रहे थे। पता नहीं किसके भाग्य में राजयोग है। राज दरबार सजाया गया।
0: पूरा एक महीना हो गया है। आज फैसला।
3: तुम्हें क्या लगता है? महाराज आ रहे हैं।
0: अरे अरे,
3: सुजान सिंह जी भी आ गए।
2: महाराज सिंहासन पर आसीन हुए। रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा,
4: मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशयो, इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा सुयोग्य पुरुष मिल गया है। मैं पंडित जानकी नाथ सा को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। जब आप हॉकी खेल रहे थे, आप लोगों को ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो व्यक्ति जख्मी होने पर भी एक गरीब किसान की गाड़ी को दलदल से निकाल कर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसमें धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता सभी गुण हैं। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा।
0: सही बात है।
4: उसका संकल्प दृढ़ है। वो स्वयं चाहे धोखा खा जाए,
0: बिल्कुल सही कहा,
4: लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य कर्म से कभी भी पीछे न हटेगा।
2: सभी सरदार सुजान सिंह के चुनाव की प्रशंसा कर रहे थे।
0: अच्छा इंसान है, हमेशा सही काम करेगा।
2: बिल्कुल। और देवगढ़ रियासत के नए दीवान पंडित जानकी नाथ सा को बधाई दे रहे थे।
5: बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो पंडित जी, बहुत खूब चुनाव किया।
6: महाराज की
7: जय हो।
6: महाराज की
7: जय हो।
6: महाराज की
7: जय हो।
6: महाराज की
7: जय हो।
2: सबकी समझ में आ गया था कि धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता जैसे सद्गुण ही व्यक्ति के सच्चे आभूषण होते हैं।
8: अभी आपने सुना कार्यक्रम परीक्षा, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मित्र की सहायता।
9: सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो समय पर काम आए और हर परिस्थिति में वो आपके साथ खड़ा रहे।
10: एक जंगल था। उस जंगल में एक ऊंचा पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा रहता था। कौवा बहुत दयालु था। वो सभी पक्षियों की सहायता करता था। जब दूसरे पक्षी दाना चुगने बाहर जाते थे तो कौवा उनके बच्चों की देखभाल करता था। वो पक्षियों के बच्चों को गीत सुनाता था।

करे जाता।

0: शिकारी अवश्य कुछ पक्षियों को पकड़कर ले जाएगा। शिकारी से पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए।
1: उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, किंतु फिर भी पक्षियों को बचाने के लिए वो वापस लौट आया। जंगल में पहुंचते ही कौवे ने काव काव कर सब पक्षियों को इकट्ठा किया और बोला,
0: सुनो भाइयों, सुनो, एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा, मार मार कर खाएगा। सुनो भाइयों, सुनो।
1: सब पक्षियों ने कौवे की बात मान ली। अब कौवा बहुत थक गया था, उसे भूख भी लग रही थी। वो खाने की खोज में जाने लगा। तभी उसने कुछ कबूतरों को देखा। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
0: भाइयों, आप कहां से आए हैं? मैंने आपको पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा।
2: मैं कबूतरों का मुखिया हूँ। हम सब पास के जंगल से आए हैं और दाना चुगने जा रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा, लेकिन सुनो भाइयों, सुनो, एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा, मार मार कर खाएगा। सुनो भाइयों, सुनो, सुनो भाइयों, सुनो।
2: कौवे भाई, हम उसके जाल में नहीं फंस सकते। हम उसके जाल पर बैठेंगे ही नहीं।
0: मुखिया जी, वो शिकारी बहुत चालाक है। वो चावल के दाने डालकर जाल लगाएगा।
2: कौवे भाई, हम सब तुम्हारी बात समझ गए हैं। तुम हमारी चिंता न करो।
1: मुखिया कबूतर की बात सुनकर कौवे की चिंता दूर हुई और अब वो खाने की खोज में उड़ गया। थोड़ी देर में जब वो वापस आया तो उसने देखा, जंगल में एक स्थान पर सारे कबूतर जाल में फंसे हुए हैं। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
0: अरे मैं तो तुम सबको बता गया था, फिर भी तुम सब इस जाल में कैसे फंस गए?
2: एक जगह चावल के दाने बिखरे देखकर हमें लोभ हुआ। हम चावल खाने नीचे उतरे तो इस जाल में फंस गए।
0: ये तो बहुत बुरा हुआ।

एक दिन कौवे को भूख लगी। वो खाने की खोज में निकला। उसने उड़ते हुए देखा कि एक शिकारी आ रहा है। शिकारी के कंधे पर जाल रखा हुआ था। वो जंगल की ओर ही आ रहा था। कौवे ने शिकारी को देखकर सोचा,

0: देखो शिकारी आ ही रहा होगा, लेकिन तुम सब साहस से काम लो। साहस और एकता से बड़ी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। तुम सब मिलकर इस चाल को लेकर उड़ सकते हो।
1: हाँ ठीक कहते हो कौवे भाई, ठीक कहते हो, ऐसा ही करेंगे।
2: कबूतरों ने ऐसा ही किया, सब मिलकर उस जाल को लेकर उड़ चले। कौवा भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगा। कौवा चूहे के पास पहुंचा और बोला,
0: चूहे भाई, चूहे भाई,
3: क्या
0: तुम्हारा मित्र कबूतर एक शिकारी के जाल में फंस गया है?
3: कहाँ है मेरा मित्र? मुझे अभी उसके पास ले चलो।
0: चूहे भाई, वो देखो, वहाँ सामने वो एक जाल में फंसा हुआ है। उसके साथी कबूतर भी जाल में फंसे हुए हैं।
3: तो चलो कौवे भाई, उनके पास चले। मैं अभी उनके जाल को काट देता हूँ।
0: हाँ हाँ, चलो
3: चलो चलो कौवे भाई, चलो चलो, चलो, चलो, चलो।
2: चूहा और कौवा जल्दी से उस जाल के पास पहुँचे।
1: चूहे भाई जल्दी से इस जाल को काट कर हमें मुक्त करो। शिकारी हमें ढूंढता हुआ यहाँ आ सकता है।
3: तुम चिंता मत करो मित्र, मैं अभी जाल काट कर तुम्हें मुक्त कर देता हूँ।
1: ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी करो जल्दी जल्दी।
2: थोड़ी देर में चूहे ने जाल काट दिया, सब कबूतर मुक्त हो गए। मुखिया ने चूहे और कौवे का धन्यवाद किया। फिर सब कबूतर उड़कर अपने जंगल की ओर चल दिए। चूहा अपने बिल में चला गया, कौवा भी अपने पेड़ की ओर उड़ गया। वो आज बहुत खुश था, क्योंकि आज उसने देखा था कि मिलजुल कर काम करने में कितनी शक्ति है।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम मित्र की सहायता, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में नॉन पैचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाएंगे। आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता जांच के लिए प्रदेश की पहली अत्याधुनिक ड्रग टेस्टिंग लैब जोधपुर में शुरू। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से, और राज्य के पांचों विद्युत निगमों में 2005 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू।

0: समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नॉन पैचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए से अधिक के 3500 कार्यों को मंजूरी दी गई है। इन कार्यों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क को मजबूत किया जाएगा। बजट 2026-27 की घोषणा के तहत स्वीकृत इन परियोजनाओं से आवागमन अधिक सुगम होगा और दूर दराज के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार आएगा। बेहतर सड़क नेटवर्क से किसानों, युवाओं, उद्यमियों और आमजन को सुविधा मिलेगी। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ ही आधारभूत ढांचे को नई मजबूती मिलेगी। राज्य के 84 शहरों में नगरीय आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर करीब 9500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना RUIDP के पांचवें चरण के तहत होने वाले इन निर्माण कार्यों की जानकारी देने के लिए आज से संवाद कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। ये संवाद कार्यक्रम 11 अगस्त तक चलेंगे। इस दौरान प्रतिभागियों से सुझाव और फीडबैक भी लिया जाएगा। गौरतलब है कि पांचवें चरण में अपशिष्ट जल और ठोस प्रबंधन के लिए शहरी यातायात सुधार और विरासत संरक्षण सहित अन्य कामों के जरिए इन शहरों को स्मार्ट और सस्टेनेबल बनाया जाएगा। 67 शहरों में एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से अपशिष्ट जल प्रबंधन किया जाएगा। आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता की जांच के लिए प्रदेश की पहली अत्याधुनिक ड्रग टेस्टिंग लैब जोधपुर में शुरू हो गई है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित इस प्रयोगशाला में आयुर्वेदिक दवाओं की वैज्ञानिक जांच की जाएगी। इससे नकली और मिलावटी दवाओं की पहचान आसान होगी और जांच के लिए दूसरे राज्यों की प्रयोगशालाओं पर निर्भरता समाप्त होगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रयोगशाला को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है। यहाँ यूवी स्पेक्ट्रो फोटोमीटर सहित 6 अत्याधुनिक मशीनें स्थापित है। आयुर्वेदिक दवाओं में एलोपैथिक दवाओं की मिलावट का भी पता चलेगा। शुरुआत में किडनी, लीवर, हड्डियों व पाचन तंत्र से जुड़ी दवाओं की जांच होगी। भारी वस्तुओं जैसे शीशा, पारा, आर्सेनिक और कैडमियम के अवशेषों का विशेष परीक्षण किया जाएगा। कुछ महीनों में विश्वविद्यालय की अपनी प्रयोगशाला को भी इससे जोड़ा जाएगा। आगे चलकर कैंसर, आर्थराइटिस और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी दवाओं की भी जांच होगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रदेश में आमजन को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए बाजार से दवा नमूनों की नियमित जांच की जा रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने बताया कि जुलाई माह में 587 दवा नमूनों की जाँच की गई। जाँच में 579 नमूने मानक गुणवत्ता के अनुरूप मिले, जबकि 8 नमूने अमानक पाए गए। इनमें एंटीबायोटिक, दर्द निवारक और अन्य दवाएं शामिल हैं। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत जयपुर से रामेश्वरम के लिए दूसरी विशेष ट्रेन कल रवाना की गई। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने डहर के बालाजी रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस विशेष ट्रेन से जयपुर संभाग के 970 वरिष्ठ नागरिक रामेश्वरम और मदुरई की यात्रा पर गए हैं। यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 30 अधिकारियों और कर्मचारियों का दल भी उनके साथ गया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के माध्यम से प्रदेश के बुजुर्गों को सुरक्षित और सुविधाजनक तीर्थ यात्रा कराई जा रही है।
2: ये मैं मानती हूँ बहुत बड़ा काम हुआ है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और ये वरिष्ठ जन है, इनके बारे में आजकल कोई नहीं सोचता, परिवार जन भी नहीं सोच पाते, सब इतने व्यस्त रहते हैं के बारे में सरकार ये कर रही है। तो ऐसी बहुत सारी हमारी जो तीर्थ स्थल है जो वो कभी सोच भी नहीं सकते कि हम कैसे जाएंगे, उसके लिए पूरी व्यवस्था। और अगर आप देखेंगे इस ट्रेन में भोजन की व्यवस्था है, फिर बीच में अगर कहीं पर स्टॉपेज होगा तो वहाँ रहने की भी व्यवस्था सरकार कर रही है, बाकी सारी व्यवस्थाएं ताकि वो सुरक्षित अपने स्थान पे, अपनी अपने तीर्थ पे पहुंचे, वहाँ दर्शन करें और वापिस सुरक्षित पहुंच जाए।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा घोषित करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा सुबह 10 बजे नई रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। संभावना जताई जा रही है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए

0: इसे 5.25% पर ही रखेगा। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मेडिकल परामर्श समिति की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान 12 अगस्त तक होगा। उम्मीदवार कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किया जाएगा। जो उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं उन्हें 18 से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को एमसीसी पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में मदद करने के लिए चरण दर चरण ट्यूटोरियल वीडियो जारी किए हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान सहायता के लिए उम्मीदवार टोल फ्री नंबर 1800-102-7637 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य की पांचों विद्युत निगमों में 2005 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके लिए अभ्यर्थी 25 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के तहत कनिष्ठ अभियंता के 869, कनिष्ठ लेखाकार के 371 और कनिष्ठ सहायक तथा वाणिज्यिक सहायक द्वितीय के 765 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। चयन के लिए ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी वेबसाइट और हेल्पलाइन पर उपलब्ध कराई गई है। जैसलमेर में युवाओं को स्टार्टअप और नवाचार से जोड़ने के लिए उद्यमिता और स्टार्टअप संवर्धन कार्यशाला आज आयोजित की जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से स्टार्टअप इंडिया के तहत आयोजित इस कार्यशाला में युवाओं, विद्यार्थियों, नवाचारकर्ताओं और संभावित उद्यमियों को स्टार्टअप से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कार्यशाला के माध्यम से जिले में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने तथा स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर के अवसरों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। कार्यशाला के दौरान स्टार्टअप इंडिया एवं आईआईटी मान्यता प्राप्त प्रक्रिया, राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं, वित्तीय सहायता, निवेश के अवसर, व्यवसाय मॉडल तैयार करने की प्रक्रिया, नवाचार प्रबंधन, बौद्धिक संपदा अधिकार, डिजिटल तकनीकों के उपयोग तथा व्यवसाय विस्तार की रणनीतियों पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तार से जानकारी दी जाएगी। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने उद्योगों के लिए रेड, ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू श्रेणियों का संशोधित वर्गीकरण लागू कर दिया है। मंडल के सदस्य सचिव कपिल चंद्रवाल ने बताया कि ये वर्गीकरण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य उद्योगों को पर्यावरणीय स्वीकृतियों और सहमति प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और स्पष्टता प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि संशोधित सूची में सीमेंट, डेयरी, अस्पताल, होटल, ई वेस्ट रिसाइकलिंग, निर्माण परियोजनाओं और औद्योगिक पार्क सहित कई नए क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नॉन पैचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाएंगे। आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता जांच के लिए प्रदेश की पहली अत्याधुनिक ड्रग टेस्टिंग लैब जोधपुर में शुरू की गई है। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से और राज्य के पांचों विद्युत निगमों में 2005 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम।

अतरंगी फिल्म से, अतरंगी रे फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना हरिचरण शेषाद्री, श्रेया घोषाल, सूर्यांश, स्वागत राठौर और सार्थक कल्याणी की आवाजों में इरशाद कामिल के बोल, एआर रहमान का संगीत। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। अभय जोधपुरकर की आवाज में जीरो फिल्म से गाना इरशाद कामिल के बोल, अजय अतुल का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गाना मेट्रो इन दिनों फिल्म से। पैपॉन की आवाज में गालिब और संदीप श्रीवास्तव के बोल, प्रीतम का म्यूजिक।

0: चला सकता था।
1: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
0: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: अभिनय उनकी खूबसूरती पर भंवरे भी गुनगुनाने लगते हैं।
1: आवारा भंवरे जो हौले हौले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए।
0: फिल्मी पर्दे पर इनकी अदाएं और अभिनय की तारीफ के लिए चांद सितारों के उपमान भी फीके पड़ जाते हैं।

5 अगस्त 1974 को जन्मी काजोल हिंदी सिनेमा की सफलतम अभिनेत्रियों में से एक हैं। उनके कुशल अभिनय के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था।

काजोल को अभिनय की तालीम तो विरासत में मिली। काजोल की नानी शोभना समर्थ मूक फिल्मों के जमाने से समर्थ अभिनेत्री थीं। बाद के दिनों में उन्होंने कई सशक्त फिल्मों में उत्कृष्ट भूमिका निभाई। शोभना समर्थ की दोनों बेटियां तनुजा और नूतन अपने अभिनय कौशल में माहिर थीं और उन्होंने अपने अभिनय कौशल से लोगों को मोहित किया। माँ तनुजा और मौसी नूतन से काजोल को अभिनय की बारीकियां खुद ब खुद सीखने को मिल गईं।

काजोल की नानी, उनकी माँ और मौसी तो फिल्मी दुनिया की विशिष्ट अदाकारा तो थी ही, उनके चाचा जॉय मुखर्जी और देव मुखर्जी गजब के कलाकार थे। उनके खानदान में और भी एक्टर्स थे, रानी मुखर्जी, मुनीश बहल, ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्म बनाने वाले अयान मुखर्जी। परिवार में इतने सारे फिल्मी कलाकारों का जमावड़ा, फिल्मी परिवार के बीच बड़ी चुलबुली और शरारती सी काजोल पढ़ाई में अपना मन लगा रही थी। दोस्तों, काजोल के माता पिता ने पहाड़ों के गोद में बसी जगह पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉलेज में उन्हें दाखिला दिलवा दिया, जहां उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। लेकिन कॉलेज के दिनों में ही उन्हें अभिनय का चस्का लग गया। पढ़ाई के दिनों में ही काजोल को साहित्य में गहरी दिलचस्पी थी। वे साहित्य किताबें पढ़ती थीं और बहुत सारी कहानियां पढ़ती थीं। एक बार वे कॉलेज से, पंचगनी से मुंबई आई। वहां राहुल रवेल की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। वहां उन्होंने कैमरे के सामने कुछ परफॉर्म किया। बस वहीं से उनके अभिनय की शुरुआत हुई। महज 17 साल की उम्र में उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। 1992 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म बेखुदी में उन्हें एक बड़ा ही सुंदर किरदार मिल गया निभाने के लिए।

और उनके साथ थे नवोदित अभिनेता कमल सदाना और उनकी माँ तनुजा भी इस फिल्म में साथ थीं। काजोल ने इस फिल्म में राधिका का किरदार निभाया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास साबित नहीं हुई, लेकिन काजोल के अभिनय की बहुत बहुत सराहना हुई। और उसके बाद अब्बास

अभिनय की बारीकियों के कारण काजल को बहुत जल्द बेहतरीन रोल मिलने लगे और काजोल ने अभिनय की चुनौतियों को स्वीकार करना शुरू कर दिया और खुद को साबित किया। काजोल ने यूं तो बहुत सारे कलाकारों के साथ काम करके अपने अभिनय का जलवा दिखाया, लेकिन शाहरुख खान के साथ उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी।

सन 1995 में शाहरुख खान के साथ एक बेमिसाल शानदार और जबरदस्त हिट फिल्म आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में इतिहास का एक खास पन्ना लिख दिया। एक सिनेमा घर में 1000 हफ्ते से भी ज्यादा चलने का रिकॉर्ड बनाया है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म।

मुंबई के एक सिनेमा घर में आप अभी भी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये फिल्म देख सकते हैं। सन 1998 में शाहरुख खान के साथ काजोल की एक और हिट फिल्म आई कुछ कुछ होता है।

शाहरुख खान और काजोल की एक और हिट फिल्म आई माय नेम इज खान। दोस्तों काजोल ने सिर्फ बेस्ट हीरोइन का ही रोल नहीं किया बल्कि नेगेटिव रोल में भी काजोल बेस्ट एक्ट्रेस कहलाई। उन्होंने फिल्म गुप्त में रोल किया नेगेटिव लेकिन रिजल्ट रहा पॉजिटिव। इस तरह काजोल ने साबित कर दिया कि काजोल हीरोइन का रोल करें या खलनायिका का रोल करें रहेंगी वे उत्कृष्ट अदाकारा।

0: लड़की के जीवन में एक रोज एक राजकुमार आता है। वो राजकुमार उसके सपनों में नए रंग भरता है। काजोल के फिल्मी करियर और निजी जिंदगी के हीरो बने अजय देवगन।
1: देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए, सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए तेरे लिए आए।
0: अजय देवगन के साथ काजोल ने कुछ बेमिसाल फिल्में दी। ये फिल्म है इश्क।

दिल क्या करे। इस फिल्म में उनके साथ थे अजय देवगन। 1994 में आई फिल्म हलचल में काजोल ने शर्मिली सिन्हा की भूमिका निभाई थी। सन 1998 में फिल्म आई थी प्यार तो होना ही था, जिसमें काजोल ने संजना पटेल का किरदार अदा किया था।

राजू चाचा, गुंडा राज और यू मी और हम अजय देवगन के साथ ये हिट फिल्में काजोल ने दी। फिल्म यू मी और हम में काजोल अल्जाइमर्स नाम की बीमारी से ग्रसित होती हैं। अजय देवगन के साथ ये एक मार्मिक

2006 में काजोल की फिल्म आमिर खान के साथ आई थी। फिल्म थी फना, जिसमें उन्होंने एक नेत्रहीन कश्मीरी लड़की की भूमिका निभाई थी। खास बात यह है कि इस फिल्म में ऋषि कपूर पर्दे पर नजर आए थे।

काजोल बनी थी मेघा वर्मा। सन 2000 में आई फिल्म राजू चाचा। सन 2001 में फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी। मुझ में

आमिर खान के साथ कुछ फिल्में और की थी काजोल ने, जैसे फिल्म इश्क। हालांकि फिल्म इश्क में आमिर खान के साथ थी जूही चावला। काजोल की बेहद कमर्शियल फिल्म आई थी हम आपके दिल में रहते हैं। इस फिल्म में काजोल के साथ पर्दे पर नजर आए थे अनिल कपूर।

0: कुछ कुछ मीठी।
1: दोस्तों, काजोल को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। सन 1996 में काजोल को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

सन 1999 में फिल्म कुछ कुछ होता है के लिए मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड। सन 2002 में कभी खुशी कभी गम फिल्म के लिए मिला काजोल को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर। अभिनेता थे शाहरुख खान। सन 2007 में आमिर खान के साथ काजोल की फिल्म आई फना, जिसके लिए मिला उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 2011 में फिल्म माय नेम इज़ खान के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इस फिल्म में अभिनेता थे शाहरुख खान।

काजोल के फिल्मी करियर की एक बड़ी बेहतरीन फिल्म आई थी तानाजी, जिसमें अजय देवगन बने थे तानाजी मालूसरे, काजोल बनी थी सावित्री बाई और सैफ अली बने थे उदय भानु सिंह राठौड़। बहुत सारे फिल्मी समीक्षकों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी।

सैफ अली खान के साथ काजोल की एक और फिल्म आई थी ये दिल लगी, जिसमें साथ में अक्षय कुमार भी थे। एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म आई थी काजोल के फिल्मी करियर की सन 1998 में दुश्मन, जो बदला लेने वाले की भूमिका निभाने के लिए उनकी बड़ी प्रशंसा हुई थी।

काजोल की अभिनय यात्रा आज भी जारी है। सन 2015 में उनकी एक कॉमेडी फिल्म आई थी दिलवाले। फिल्म खूब चली थी।

सन 2021 में आई फिल्म त्रिभंगा, इसके बाद सन 2022 में आई फिल्म सलाम वेंकी। काजोल ने कुछ वेब सीरीज भी की, जैसे कि द ट्रायल। काजोल ने अपनी फिल्मी करियर में हर तरह के किरदार निभाए। वे कहीं चुलबुली लड़की के रूप में पर्दे पर नजर आईं, कहीं गंभीर स्त्री, तो कहीं बेहद रूमानी प्रेमिका या पत्नी।

अभिनय के अलावा काजोल एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और विधवाओं और बच्चों के साथ अपने काम के लिए वे काफी चर्चित हैं। काजोल ने सन 2008 में कुछ रियलिटी शोज भी किए जिसमें एक टैलेंट जज के रूप में भी उन्होंने

0: काजोल का फिल्मी करियर काफी विराट है। उनके पूरे करियर को समेटकर सारी फिल्मों का जिक्र करना एक कार्यक्रम में संभव नहीं है। आज बस इतना ही।
1: जाती हूँ मैं,
2: जल्दी है क्या,
1: धड़के जिया
2: वो क्यों भला।
0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी अभिनेत्री काजोल पर।
1: जाती हूँ मैं,
2: जल्दी है क्या,
1: धड़के जिया
2: वो क्यों भला।
0: शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: आज के फनकार।

0: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। लीजिए सुनिए ये संदेश।
1: युवाणी कार्यक्रम में हर बुधवार अब आप सुन सकेंगे अपनी पसंद का कोई भी गाना हेलो फरमाइश में। इसके लिए आपको डायल करनी होंगे हमारे स्टूडियो के नंबर और बताना होगा आपका मनपसंद गाना। हमारे फोन नंबर है 2940675। मोबाइल से कॉल करने पर एसटीडी कोड 0144 अवश्य लगाएं। हेलो फरमाइश के इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है बुधवार शाम 5:30 पर आपके अपने युवाणी में। सुनते रहें FM 103.1 MHz पर आपका अपना आकाशवाणी अलवर।
0: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम
2: में। हमारे साथ तनिष्ठा

0: चैटर्जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका
1: जी। थैंक यू माय प्लेजर।
0: तनिषा, कैसा लग रहा है विविध भारती में आके, और ऑल इंडिया रेडियो से आपका किस तरह का कनेक्शन है यादों का, ये भी बताइए सबसे पहले तो।
1: अभी तो मैं फिलहाल जो रीसेंट कनेक्शन मेरा बना कुछ घंटों पहले या कुछ एक्चुअली मिनट्स पहले, उसके बारे में बात करना चाहूंगी कि यूनुस जी, आपने जो यहाँ के लाइब्रेरी का टूर दिया, जहाँ जो LPs और CDs जो आप स्टोर करते हैं, मतलब वो देख के तो मैं हैरान हो गई हूँ और बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हूँ कि इस खूबसूरत ढंग से इनको आर्काइवल जो चीजें हैं आप स्टोर करके रखते हैं। मुझे अगर पहले पता होता तो मेरी एक बेटी है जो 10 साल की है, उसने जिंदगी में कभी ये सब चीजें देखी नहीं है, तो मैं लेकर आती और मैं दोबारा यहाँ आऊंगी उसको लेकर।
0: कितनी मजेदार बात है कि जब आप देख रही थीं तो बड़ी पुरानी पुरानी फिल्में नजर आईं, जैसे कि आपने चोरी चोरी का रिकॉर्ड देखा।
1: हाँ जी,
0: है ना। फिर 78 आरपीएम का एक रिकॉर्ड देखा, फिल्म थी यास्मीन।
1: वाओ,
0: 1955।
1: मुझे पता भी नहीं है, वो तो मैंने ब्लाइंड निकाल दिया और आप मतलब आप एनसाइक्लोपीडिया है, इसलिए आपने मुझे समझाया कि ये यास्मीन है, तो इसका जो ये गाना है हम सुन सकते हैं।
0: बिल्कुल, आज के इस प्रोग्राम में वो गाना भी हम जरूर बजाएंगे, लेकिन पहले अभी जरा यादों की तरफ चलते हैं। आप कहाँ पैदा हुई थी और बचपन कहाँ बीता आपका?
1: मैं एक्चुअली पुणे में पैदा हुई थी
0: जी,
1: और मैंने कुछ साल पहले एक मराठी फिल्म की, डॉक्टर रखमाबाई, जो इंडिया की फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर हैं
0: जी,
1: उनकी जीवन पर, और मैंने डॉक्टर रखमाबाई का किरदार निभाया, तो लोगों को ऐसा लगा कि मैं शायद, मतलब है मेरा नाम चैटर्जी लेकिन मैं महाराष्ट्रीयन नहीं हूँ।
0: वाह वाह वाह।
1: क्योंकि वो मराठी में फिल्म थी और पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। लेकिन मेरी पैदाइश पुणे की हुई, उसके बाद हम लोग बाहर चले गए जब मैं 6-7 महीने की थी।
0: जी जी।
1: हम लोग, मेरे पिताजी जो है उनको सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम मिला, तो हम जापान में थे, केन्या में थे, इंग्लैंड में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, अलग अलग बाहर देशों में, उसके बाद हम दिल्ली आए। और तो मैं अपने आप को दिल्ली वाली मानती हूँ, क्योंकि जो मेजर मेरा जो चंक है ना, जो आपका एजुकेशन है, टीनेज इयर्स है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये सब जो है मैंने दिल्ली में किया,
0: तो दिल्ली जो है वहां दिल बसता है आपका। एक मजेदार बात ये है कि ये जो हमारे बनने के दिन होते हैं, जब टीनेज के बाद इंटरेस्ट शुरू होते हैं और जिंदगी की एक थोड़ी सी राह कहीं दिखती है या ख्वाब बनने शुरू होते हैं, जाहिर है आप दिल्ली में थी और ये बहुत मजेदार जमाना था 80s 90s का। मैं जानना चाहता हूं उन सुहाने दिनों की यादें आपसे।
1: तो ऑब्वियसली दिल्ली मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल है, क्योंकि वहां से मुझे हर चीज जो शिक्षा है वो सिर्फ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं, उससे पहले मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में मैंने हाफिज अहमद खान साहब से, शांति हिरानंद जी से तालीम ली, उससे पहले बचपन से मम्मी ने मुझे गंधर्व महाविद्यालय मुझे भेजते थे हिंदुस्तानी क्लासिकल का जो बेस है वो सीखने के लिए, और म्यूजिक से जो है इंडियन कल्चर का एक जो वास्ट मतलब समुंदर है, वो जो पोएट्री है उसका पूरा इंट्रोडक्शन मेरे लिए म्यूजिक के साथ शुरू हुआ। और जब मैं कॉलेज में थी, स्कूल में थी, तो उस समय क्या होता था, स्पिक मके करके एक प्रोग्राम होती थी जहां बड़े बड़े आर्टिस्ट, मतलब चाहे वो आप अली अकबर खान साहब को ले लीजिए, अमजद अली खान साहब, जाकिर हुसैन, सब आते थे और फ्री,
0: बिल्कुल
1: फ्री में वो स्टूडेंट्स को मतलब परफॉर्म करते थे और सिखाते भी थे।
0: वो तो मकसद ही सोसाइटी ऑफ
1: बिल्कुल कि
0: वो युवाओं
1: एजुकेशन, हाँ एजुकेशन जो है, आप उनको कॉनोसियर्स बनाए, हर कोई जो है वो ऐसा नहीं है कि वो म्यूजिशियन ही बन जाए
0: जी,
1: लेकिन श्रोता हो और हमारे कल्चर को वो आगे बढ़ाए। तो उसमें मतलब फैंटास्टिक केलुचरण महापात्रा से लेकर यामिनी कृष्णामूर्ति, डांस भी जो है सोनल मानसिंह, सबको मैंने लाइव परफॉर्मेंसेस भर भर के देखा है।
0: क्या बात है।
1: वो एजुकेशन जो है मैं अपने बेटी को इस ढंग से नहीं दे पाती हूँ यहाँ पे, और मैं वो बहुत मिस करती हूँ। दिल्ली में उस माहौल में मैं पली बड़ी, जहाँ मंडी हाउस और जो विंटर्स, बिल्कुल विंटर्स में, और बाद में वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इंडिया हैबिटेट सेंटर, ये सब त्रिवेणी कला संगम, सब जगह जो

0: कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ होल विंटर चलता रहता था। और हमारे बीच में मतलब मम्मी को कभी कभी ये होता था कि क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, मार्च में जाके आपके एग्जाम्स होते थे, हम लोग सब सीबीएसई के पढ़े हैं, और ये नवंबर दिसंबर जैन, लेकिन हमको ये सब कुछ देखना ही है और पढ़ाई की भी तैयारी करनी है,
1: बिल्कुल
0: ये कॉन्फ्लिक्ट चलता था हमेशा।
1: बिल्कुल
0: लेकिन हमने अपने आप को कल्चरली जो है, क्योंकि दिल्ली में एम्बेसीज भी सारे हैं, तो फिल्मों के रेट्रोस्पेक्टिव्स जब कॉलेज में मैं गई तो वो सब भी शुरू हो गया कि वहां आप जितना फ्रेंच न्यू वेव है, इटालियन सिनेमा है, जितना डे सिका से लेकर ब्रेसॉन, सब एलन डेलों की फिल्में, सब मैंने इस रिपोर्ट या फ्रेंच एम्बेसी या इटालियन एम्बेसी में रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है, रशियन सिनेमा का रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है, पोलिश सिनेमा मतलब आंद्रे वायदा, किसलोवस्की, सब कुछ, मतलब कॉलेज तक ना सब देख लिया मैंने। मैं बम्बई जब आई मुझे ऐसा लगा कि अब आगे मैं क्या
1: क्या बात
0: करूं।
1: है, बिल्कुल सही है। मैं समझ सकता हूं कि ये जब एक बहुत ही कल्चरल माहौल आपने दिखाया
0: हाँ
1: तो एक दूसरे शहर में जाने का बहुत फर्क पड़ता है। आपने बताया कि बचपन से आपको क्लासिकल म्यूजिक की तरफ जोड़ दिया गया है, तो क्या घर पर उस तरह का माहौल था? घर में भी कोई गाता था?
0: नहीं, एक्चुअली मेरे मम्मी और पापा दोनों ही, उन्होंने वेस्ट बंगाल 70s में अलग अलग, मतलब वो मिले थे दिल्ली में, बट इन द 70s वो मूव आउट कर चुके थे वेस्ट बंगाल से। तो मम्मी पढ़ने के लिए गई थी पॉलिटिकल साइंस, वो पढ़ने के लिए दिल्ली गई, और पापा इंजीनियरिंग के बाद नौकरी के लिए चले गए वहां। तो मेरे पिताजी वेरी अनलाइक मोस्ट अदर बंगालीज, वो बिल्कुल हार्डकोर कॉर्पोरेट गए थे और इंजीनियर और कॉर्पोरेट बस। और क्योंकि मम्मी का डिस्प्लेस्ड था, तो वो इवन दो शी लव्ड कल्चर एंड म्यूजिक एंड आर्ट और ये सब, लेकिन वो खुद कभी ज्यादा कर नहीं पाई थी, तो इसलिए उन्होंने हमको एक्सपोजर दिया। और गाने का ये था कि मैं जब 4-5 साल की थी तब हम लोग नैरोबी में रहते थे, और किसी के घर मतलब जहां कोई गा रही थी उनके घर पे, वो गाना सुन के मैं गुनगुना रही थी, और उन्होंने मेरी मम्मी को कहा कि अरे इसमें तो बहुत धुन है, इसको सिखाओ। तो तब से मम्मी ने सोचा कि चलो इसको गाना सिखाते हैं।
1: क्या बात है, क्या बात है। देखिए, आपको म्यूजिक की तरफ मोड़ दिया गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। और अब इस प्रोग्राम को म्यूजिक की तरफ मोड़ा जाए तो मुझे लगता है कि आज पहला गाना जो है वो कौन सा सुनाएंगी आप, ये गा के ही बताएं।
0: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता
1: आहा,
0: चला गया। सुनते हैं।
1: क्या बात है। ये हम दोनों फिल्म का गाना, और साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा था और
0: लिखा
1: जयदेव की तर्ज थी। सुनते
0: जी
1: हैं ये
0: जी
1: गाना।

0: बहुत ही मजेदार बातें चल रही हैं। आपने बताया कि पहले तो आपको जो बुनियादी शास्त्रीय संगीत है वो सिखाने के लिए गंधर्व भेजा गया और उसके बाद आपने अपने गुरु के साथ तालीम ली। वो कैसे दिन थे और कितनी दिलचस्पी बढ़ रही थी म्यूजिक में आपकी?
1: हाँ, म्यूजिक में तो बढ़ ही रही थी। इसके साथ साथ मेरे मतलब हफीज अहमद खान साहब, उन्होंने हिस्ट्री में एमए किया हुआ था, तो वो हमेशा बहुत सारे किस्से भी सुनाते थे।
0: हिस्ट्री में एमए क्लासिकल म्यूजिक सिखाने वाले, वाह
1: या, तो वो मतलब क्लासिकल म्यूजिक की हिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंट्स की हिस्ट्री, लैंग्वेज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, फिर जो हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में जो मिश्रण होता है लैंग्वेजेस का, कि ब्रज में शुरू होके उर्दू के कपलेट्स थाई में जाती है, ये सब जो चीजें हैं, इन सब चीजों को लेकर जो चर्चा बातें होती थी, तो बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। फिर मैं शांति हीरानंद जी के पास सीखने गई ठुमरी दादरा में स्पेशलाइज करने के लिए, और शांति जी बेगम अख्तर की शागिर्द रह चुकी थी। और शांति जी ने एक बार मुझे बहुत कमाल की चीज कही, उस समय मैं मतलब स्कूल और कॉलेज में ही थी, तो गाना मैं बहुत अच्छे से गाती थी और वो मुझे समझाने की कोशिश करते थे कि भाव क्या है, और वो उस समय नहीं समझ में आता था इतना
0: मजेदार है ये।
1: बहुत साल बाद मुझे एक बात उनकी समझ में आई कि उन्होंने ये कहा कि क्योंकि तब उनकी उम्र हो चुकी थी, जब गाती थी मैं तो तब पिया नहीं था, क्योंकि ठुमरी दादरा में हर मतलब बंदिश में यही बात होती है कि द एकिंग पेन ऑफ सेपरेशन, कि पिया जो है वो छोड़ के चला गया। तो वो कहते थे कि जब पिया था तो गाना मतलब सीख रहे थे, और अब गाना आता है तो पिया के बारे में मतलब कि उम्र हो चुकी है, तो अब वो पेन रहा नहीं है। तो दोनों साथ में हुआ नहीं कभी। शी यूज्ड टू यू नो सी दैट
0: उस समय,
1: या वी आई नेवर अंडरस्टूड दैट, मच लेटर आई अंडरस्टूड कि भाव जो है वो मतलब कहाँ से आती है, कि आप जिंदगी में कुछ चीजें सहन करते हो, दर्द आता है, तभी आप कुछ क्रिएट कर पाते हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो, चाहे वो फिल्म हो, आप का क्रिएशन जो है। कल एक्चुअली मैं कैफी आजमी साहब के एक इवेंट पे गई थी जहां उनके सेंटेनरी पे पोस्टल स्टैंप रिलीज हुआ, और जावेद साहब यही कह रहे थे कि हम ट्रेजेडीज के बारे में बात कर रहे थे, और मैंने कहा सैराट इतनी बड़ी ट्रेजेडी फिल्म है लेकिन फिर भी हिट हुई है, एंड ही सेड कि नहीं, ट्रेजेडीज हमेशा होती है क्योंकि पेन से लोग रिलेट करते हैं ना, एंड वही चीज हम बात करते हैं, जब तक आपको जिंदगी में पेन नहीं मिलेगा आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, ये क्रिएशन की ट्रेजेडी है।
0: क्या बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मैं वापस दिल्ली वाले दिनों की तरफ जा रहा हूं। शांति हीरानंद से जब आप सीख रही थी तो वो तो हिंदुस्तानी बंदिशें सीख रही होंगी, तो कोई बंदिश याद है?
1: बिल्कुल तो मुझे जैसे मांड सिखाती थी, तो मुझे
0: वाह वाह वाह,
1: तो मैं एक सावन की ही

0: क्या बात है, मैं तो यही कहूंगा कि सचमुच सावन की बदरिया घिर घिर आए और खूब घिर घिर आए।
1: बिल्कुल, ये हमारी
0: बिल्कुल,
1: ख्वाहिश है।
0: यहां एक गाने की जगह बनाई जाए,
1: हाँ
0: सुनते हैं।

0: संगीत चल रहा था तो अभिनय की तरफ रुझान कैसे हुआ था?
1: एक्चुअली संगीत के वजह से हुआ
0: जी,
1: क्योंकि स्कूल में फिर कॉलेज में जहाँ भी हम लोगों के म्यूजिकल प्लेज होते थे वो मुझे इसलिए कास्ट कर लिया जाता था कि मैं गा सकती हूँ।
0: वाह, और अलग से गाने की परफॉर्मेंसेज नहीं करती थी?
1: नहीं, वो तो कॉलेज में एक्चुअली मैं गाना ही मतलब रेंडेवू IIT के जो फेस्टिवल्स थे, फिर बिट्स पिलानी में, सब में मैं मतलब कॉलेज को रिप्रेजेंट करती थी गाने में। और स्कूल में जब थी तो मैं वेस्टर्न म्यूजिक भी बहुत गाती थी, विटनी ह्यूस्टन। मुझे कहा था, मेरे इतने छोटे छोटे ऐसे कर्ली ऐसे बाल थे और सब मुझे कहते थे कि यू नो इंडियन विटनी ह्यूस्टन।
0: क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो वेस्टर्न से भी कनेक्शन रहा?
1: मराया कैरी, विटनी ह्यूस्टन, ये सब गाती थी मैं।
0: वाह वाह वाह। पहली बार अभिनय कब किया था?
1: स्कूल में। स्कूल के जो हाउस कंपटीशन के प्लेज नहीं होते थे और दुर्गा पूजा।
0: वाह वाह, ये तो बहुत महत्व।
1: बंगाली जो क्या होता है कि मतलब वो पूरा महीना जो हम लोग रिहर्सल करके फिर दुर्गा पूजा में परफॉर्मेंस। तो मेरा एक्चुअली पहला नाटक जिसमें मैंने मेन रोल मतलब सोलो रोल किया फुल प्ले में, वो दुर्गा पूजा का एक नाटक था, वो बंगाली में था।
0: अरे वाह वाह, तब क्या उम्र रही होगी आपकी?
1: 10 साल।
0: क्या बात है, इतना सारा
1: म्यूजिक उससे पहले से चल रहा था जिंदगी में। बट दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई मतलब हाँ एक्टिंग का इंट्रोडक्शन हुआ।
0: और कब ये लगा कि इसे करियर चॉइस के रूप में रखा जा सकता है?
1: ये बाय एक्सीडेंट हुआ ऑनेस्टली, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी।
0: और आप तो केमिस्ट्री पढ़ रही थी?
1: जी। तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को प्रोफेशन बनाऊंगी, क्योंकि क्या होता है इंडियन मिडिल क्लास

0: होम्स में कि आप ये सब हॉबीज रखो, लेकिन प्रोफेशन, क्योंकि मेरे फादर भी इंजीनियर और कॉरपोरेट वर्ल्ड में थे और माय मदर यूज टू टीच, तो वो उनका यही था कि हाँ मतलब आप कल्चरली एक वेल राउंडेड एजुकेशन आपका होना चाहिए और ये हॉबीज हो सकती है, लेकिन प्रोफेशन तो आपकी साइंस या इंजीनियरिंग यही कुछ होगा। तो ये ना बाय एक्सीडेंट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं म्यूजिक को या एक्टिंग को प्रोफेशनली करूं कुछ। लेकिन जब मैं कॉलेज में थी तो एक बहुत बड़ा जर्मन प्रोडक्शन यहाँ पे मतलब आया था इंडिया में, और उन लोगों ने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जो उनके प्रोडक्शन का पार्ट, और मैं सिलेक्ट हुई थी। और उस समय मतलब बहुत नामी नामी एक्टर्स जो एनएसडी के ग्रेजुएट्स हैं एंड ऑल, वो पार्ट थे उस प्रोडक्शन का।
1: वाह,
0: तो दैट एक्चुअली चेंज्ड माय मतलब दिमाग
1: विजन
0: दिमाग खराब हो
1: अच्छी खासी लड़की
0: गया
1: जो एकेडमिक्स
0: अच्छी
1: में जा रही
0: खासी
1: थी
0: मतलब साइंस की जो है बैंड बज गई
1: क्योंकि आप तो केमिस्ट्री पढ़ रही थी।
0: बिल्कुल। और वो उस वर्कशॉप के बाद फिर मैंने बैरी जॉन के साथ और एक वर्कशॉप और कांड हो गया, मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में समर वेकेशंस में और एक वर्कशॉप किया, और उसमें और इतना ज्यादा मजा आया, मतलब ठंड, एक तो मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है,
1: अच्छा
0: ठंड में किसी कोल्ड यूनिवर्सिटी में यूएस में जाके मैं लैब में बैठ के रिसर्च करूंगी, और ये देखो मतलब स्टेज पे हम गाना गा रहे हैं और एक्टिंग, क्या मजा है।
1: वाह वाह, जब ये बात घर वालों को पता चली तो क्या रिएक्शन थे टीचर मम्मी जी और कॉरपोरेट पापा
0: उनको मतलब हार्ट अटैक आया और उसका पूरा, लेकिन मैं बिगड़ चुकी थी तब तक
1: तब तक तो काम पूरा।
0: और द थिंग वाज कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो 100% स्कॉलरशिप, तो इसीलिए मेरे पिताजी और मम्मी ये नहीं कह सकते थे कि तुम्हारे एजुकेशन के लिए हम तुमको पैसे नहीं देंगे
1: पैसे तो वहां ऑलरेडी आ रहे
0: तो वो फुल स्कॉलरशिप मुझे मिल रहा है, लेकिन मेरी बहन की जिंदगी बंद हो गई कहती एक बिगड़ गई है दूसरे को नहीं बिगड़ने देंगे
1: तो वो सीधी राह पे चली गई।
0: अरे वो अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है।
1: क्या बात है,
0: हाँ,
1: क्या बात है।
0: हाँ वो मतलब शी इज एक्सट्रीमली ब्राइट एंड वो कमाल की है, बट वो भरतनाट्यम सीख रही थी, उसने रंगेतरम किया, लीला सैमसन जो बहुत ही नामी और
1: गुरु है।
0: कला क्षेत्र के हेड भी रह चुके हैं, उस समय वो दिल्ली में थे और उनसे सीख रही थी, और बहुत सीरियसली डांसर बनना चाहती थी, और लेकिन वो अभी भी कहती है कि अरे तुमने
1: तुम्हारी
0: दीदी
1: वजह से
0: दीदी को करने दिया लेकिन मुझे
1: क्या बात है, क्या कितनी सुनहरी यादें हैं लेकिन इन तमाम चीजों की कि आप जिंदगी में पढ़ते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और फिर होता कुछ और है।
0: और फिर एनएसडी के बाद मेरे पिताजी हर 2 साल में ये कहते थे कि अच्छा चलो ये हो गया, अभी तुम एमबीए कर लो, ये बहुत इंटरेस्टिंग मिक्सचर है कि केमिस्ट्री के बाद तुमने यू नो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इन सब में तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और मैं एक्चुअली जीमैट के लिए पढ़ती भी थी,
1: अच्छा।
0: जैसे मैं सीरियसली कोई एग्जाम देने बैठूंगी ऐसा लगता था कि अभी बैठ जाऊं, एक बहुत अच्छी फिल्म मिल जाती थी फिर पापा को मैं कहती थी अरे मां पापा अभी देखो ये मिल गया है अब ये करते हैं। फिर मैं लंदन शिफ्ट हो गई थी बीच में 5 साल के लिए, ब्रिक लेन करके एक फिल्म की मैंने, और उसमें मुझे ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला, जूडी डेंच एन हैथवे इन सबके साथ मेरा भी सेम प्लेटफॉर्म में नॉमिनेशन था। तो उस समय मैं इंग्लैंड शिफ्ट हो गई कुछ सालों के लिए, वहाँ वेस्ट एंड में एक म्यूजिकल प्ले भी किया था इंग्लैंड करके। तो उस समय मैं गई थी लंदन बिजनेस स्कूल में ये पता करने के लिए कि चलिए अभी एमबीए किया जाए,
1: मजा आ रहा है
0: क्योंकि
1: मुझे
0: पापा, हाँ पापा ने ऐसा। तो मैं वहां जब गई और
1: हाँ,
0: उनके काउंसलर से मिली
1: हाँ,
0: तो मेरा करियर ग्राफ और ये सब देख के और मुझसे बात करने के बाद उन्होंने कहा कि आप मेरे स्टूडेंट्स को आकर एक इंस्पिरेशनल टॉक दे दो। तो मैंने कहा हाँ, मतलब मैं तो यहाँ पढ़ने के लिए, कहते नहीं नहीं नहीं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है
1: आप यहाँ पढ़ो मत
0: तो मैं लंदन में वेरियस बिजनेस स्कूल्स में इंस्पिरेशनल टॉक दे के अपने पॉकेट मनी कमा रही थी।
1: वाह वाह वाह, वहां भी पढ़ने वाला मामला तो बना ही नहीं।
0: नहीं, और मेरे पास एक वर्क परमिट था, सो आई वॉज लाइक, मैंने पापा को कहा कि पापा मुझे एमबीए करने की जरूरत नहीं है, वो 20 स्कूल्स तो मुझे बुला रहे कि आप यहाँ आके इंस्पिरेशनल टॉक्स दो
1: फिर मामला टल गया
0: फिर हाँ परमानेंटली मामला टल गया
1: मतलब ये है कि ये माना जा सकता है कि डेस्टिनी आपको दूसरी तरफ खींच रही थी।
0: हाँ, एज

0: that is the thing that wo I really believe that life is what happens to you while you keep making plans. तो मैंने कोई प्लान नहीं बनाई. अभी तो मैंने एक फिल्म भी बनाई है जो इस वक्त हम लोग फेस्टिवल्स वगैरह में टूर कर रहे हैं. बट
1: उस फिल्म का
0: अगेन
1: नाम है फुल प्लेट.
0: फुल प्लेट. अब उसको लेकर भी मैंने कोई प्लान नहीं बनाई थी, वो भी अचानक ही बन गई. इनफैक्ट जो फिल्म मैं 3 साल से लिख के बैठी हुई हूँ, जिसको मुझे बनाना है, वो अब तक मुझे उसका फंडिंग नहीं मिला है. और
1: लेकिन ये बन गई.
0: ये अचानक से किसी ने मुझे कहा कि हमारे पास इतने पैसे हैं, बना दो. और मैंने कुछ लिखा भी नहीं था उस समय.
1: ओहो, वाह वाह.
0: हाँ, तो तब मैंने लिखना शुरू किया और विद इन अ पीरियड ऑफ 3.5 मंथ्स हम लोग फ्लोर पे थे.
1: क्या बात है. तो ये होता है फ्लो ऑफ एनर्जी, कैसे
0: हाँ,
1: क्या काम करता
0: एक
1: है.
0: चीज है कि ये शायद मुझे ट्रेनिंग ऑफ एक्टिंग ने दी है. नसीर सर के क्लासेस जो है, नसीरुद्दीन शाह, जिनको मैं बहुत बहुत अपना गुरु मानती हूँ एक्टिंग में. मतलब मेरे बहुत गुरुज हैं जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. रॉबिंदा है, बज्जू भाई है, अनामिका अक्सर है, अनुराधा कपूर है. और थर्ड ईयर में जाके एक जो कल्मिनेशन होता है ना, उसमें टुवर्ड्स द एंड नसीर सर आए और उन्होंने उन सब चीजों को एक बहुत साइंटिफिक वे से स्टूडेंट्स को समझाने की. और एक्टर ना बहुत अच्छे हैं हमारे देश में, लेकिन टीचर जो इतने कमाल के एक्टर हैं और इतने कमाल के टीचर है, वो सिर्फ नसीरुद्दीन शाह है.
1: वाह, क्या प्यारी बात.
0: तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा. और एक वो चीज जो कहते हैं ना कि हियर एंड नाउ और डोंट थिंक, जस्ट रिस्पॉन्ड टू द मोमेंट एंड लिसन टू योर को एक्टर एंड रिस्पॉन्ड. उसके प्रैक्टिस करते करते करते करते जिंदगी में भी ये हो जाता है कि आप कुछ भी आगे का प्लान मत करो, जो हो रहा है उसी के फ्लो में आप करते रहो, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते. मैं पंडित रविशंकर से एक बार मिली थी, क्योंकि अनुष्का मेरी दोस्त भी है, उनकी एक्स हस्बैंड है जो राइट, उनके साथ मैंने एक फिल्म किया था एना कारेनिना, उसमें अनुष्का ने एक गाना कंपोज किया था जो मैंने गाया था. उसी दौरान मैं पंडित जी से एक बार मिली थी, तो उन्होंने कहा था कि जा हार ता हवे.
1: वाह,
0: ये उन्होंने टैटू में लिख दिया था.
1: क्या बात है, क्या बात है. और वो तो कितनी मीठी बांग्ला बोल.
0: जा हार ता हवे.
1: वाह, कितना सुंदर ये वाक्य है. यहाँ एक गाने की जगह बनाई जाए. अब जब पंडित रविशंकर का जिक्र है,
0: हाँ जी,
1: तो एक सजेशन करता
0: आप. हाँ, बिल्कुल वही सजेशन जो आप मुझसे कह रहे थे.
1: हाँ,
0: अलाउद्दीन खान साहब का
1: वो बजा सकते हैं.
0: या
1: माता सरस्वती शारदा, जिसका कनेक्शन उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब से है, और वहां से वो रचना उनके शिष्यों से होते हुए जयदेव जी के पास जाती है और फिर वो फिल्म आलाप में आती है.
0: बिल्कुल,
1: ये सुनते हैं. ये समर्पित है उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब को, मैहर घराने के संस्थापक, और पंडित रविशंकर
0: जी को.
1: सुनते हैं माता सरस्वती शारदा.

0: एक बार फिर वापस एनएसडी की तरफ चलते हैं। आपका एनएसडी में एडमिशन हो गया है और आप अपने ड्रीम को परस्यू करने निकली हैं। पीछे की तरफ केमिस्ट्री है।
1: हाँ, तब तक भी ड्रीम नहीं, मतलब तब तक मैंने फिर भी मतलब जब एनएसडी में भी मैं गई तब भी मुझे ये पता नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है या डिजाइनिंग करनी है या
0: डायरेक्शन करना है।
1: हाँ, डिजाइन और डायरेक्शन। और एक्चुअली फर्स्ट ईयर के बाद मैंने सोचा था मैं डिजाइन और डायरेक्शन ही करूंगी क्योंकि आई वॉज सो इंस्पायर्ड बाय जस्ट सिनेमा दैट आई वॉज वॉचिंग। और मतलब चाहे वो इंडियन सिनेमा हो कि संत तुकाराम हो या राजा हरिश्चंद्र जो हमारे पुराने जैसे इंडिया में सिनेमा की जो बिगिनिंग थी, या फिर वो फ्रेंच न्यू वेव हो, पोलिश सिनेमा हो, ये सब देख के दिमाग एकदम
0: हिल गया।
1: हाँ, सत्यजीत रे और मृणाल सेन और मतलब और इंडियन कमर्शियल फिल्म्स भी। और हमारी जो टीचर हुआ करती थी जो फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स करवा रही थी हमें, गायत्री चैटर्जी, वो FTII में भी पढ़ाती थी, वो इतने अच्छे से मतलब समझाती थी और एनालिसिस मतलब करती थी। सो आई वॉज सो मच इन लव विथ। और हमको इंटरनेशनल प्रोडक्शंस देखने को मिलते थे थिएटर में। फिलिप जॉते, मतलब उनका प्रोडक्शन देख के मेरा दिमाग हिल गया था।
0: बिल्कुल।
1: पीना बाउश, ये सब जो थिएटर प्रोडक्शंस हैं। और हमारे एनएसडी में एक रशियन डायरेक्टर आए थे, एक पोलिश डायरेक्टर आए थे हमारे साथ काम करने के लिए। तो जो इंट्रोडक्शन हमें वर्ल्ड थिएटर से भी मिला और इंडियन क्लासिकल फॉर्म से, डांस से, कथकली, ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि यार डिजाइन डायरेक्शन में बहुत इंस्पायर हो गई थी। लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद जब हमें चूज करना होता है तो हमें बच्चू भाई और सब मेरे जो जितने टीचर्स थे उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, तुम एक्टिंग करो। डिजाइन डायरेक्शन कभी भी कर सकते हो बाद में, अगर तुम्हें मन किया तो कर लोगे, पर अभी एक्टिंग लो। तो मैंने अपने गुरु जो है सब उनकी बात मानी
0: और एक्टिंग की तरफ आगे बढ़ती गई। एनएसडी की आपके बैच में कौन कौन लोग थे? आपके बैच में
1: बहुत लोग थे और वो लोग सब मतलब थिएटर कर रहे हैं अपने रीजन्स में। अभी मैं फुल प्लेट लेकर केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई थी।
0: जी जी।
1: और वहाँ बहुत बढ़िया रिस्पांस था और मेरे दो बैचमेट्स जो थे उन्होंने मुझे बताया नहीं और वो ऑडियंस में बैठे हुए थे।
0: वाह वाह।
1: और बहुत साल बाद उनसे मुलाकात हुई और स्क्रीनिंग के बाद वो आए और मैंने कहा ओह माय गॉड, एंड दे फेल्ट सो गुड कि मैंने एक फिल्म बना दी।
0: बिल्कुल।
1: और एक्चुअली ये फिल्म बनाना बहुत मुश्किल भी रहा है फॉर एवरी विच वे, क्योंकि जब मैं इनिशियली मतलब इंडिपेंडेंट फिल्म बनाना तो हमेशा ही मुश्किल होता है। शूटिंग के दौरान भी दिक्कतें आई, फाइनेंशियल दिक्कतें आई। जब बड़े मुश्किल से हम लोगों ने फाइनली फिनिशिंग फंड्स लेकर, एक और को प्रोड्यूसर लेकर हम फिनिश करने वाले थे, एडिट खत्म हुआ, देन आई गॉट डायग्नोस्ड ऑफ अ टर्मिनल इलनेस। और उसके दौरान मैंने पिक्चर खत्म की, पोस्ट प्रोडक्शन किया उसका। So it was a very difficult process, but then like I said ki I think no pain no gain.
0: और इन तमाम मुश्किलों को, उतार चढ़ावों को सहत कर और उनसे पार होते हुए ये फिल्म पूरी। क्या ये आपका पहला डायरेक्शन था?
1: नहीं, मैंने रोम रोम में करके एक फिल्म बनाई थी।
0: इससे पहले बना चुकी थी?
1: इससे पहले। हाँ।

0: और
1: नवाज थे उसमें।
0: नवाज नवाज था उसमें, और नवाज और मैं एक फिल्म शूट कर रहे थे लायन करके, एक बहुत अच्छे ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर हैं गार्थ डेविस, एंड लायन ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म है। तो हम दोनों कलकत्ते में साथ में शूट कर रहे थे उसको एक्टर्स। तो फ्री टाइम पे बात हो रही थी, मैंने कहानी ऐसे उसको सुनाई कि यार ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ वेनिस में। उसको बहुत इंट्रीगिंग लगी, उसने कहा यार तनिष्ठा ये इसको लिखो यार, बहुत कमाल की कहानी है। तो मैंने लिखना शुरू किया और फिर हम लोग मिलते रहे। नवाज और मैंने एस्को एक्टर्स पहले भी काम किया है और वो मेरे सीनियर भी हैं नेशनल स्कूल ऑफ
1: एनएसडी में।
0: ड्रामा से। हाँ तो हम मिलते रहे और मैं लिखती गई और फिर उसको मतलब ही रियली लाइक्ड इट।
1: क्या हुआ था आपके साथ
0: फिर
1: रोम में
0: मतलब सुपर
1: वेनिस
0: नेचुरल
1: में,
0: स्टोरी थी।
1: सुपर नेचुरल?
0: हाँ मतलब वो एक्सपीरियंस। खैर देन मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इसको मैं बनाऊंगी।
1: राइट।
0: मैंने सोचा था हम लिखते हैं, हम दोनों एक्टिंग करेंगे और किसी को देते हैं मतलब। बट ये नवाज ने मुझे कहा कि यार तूने जैसे लिखा है ना, ये तेरे दिमाग से आया है, ये कोई नहीं और नहीं बना सकता। मैंने कहा बट मैंने कभी फिल्म बनाई नहीं है। उसी ने मुझ में ये कीड़ा
1: डाल दिया।
0: इंसर्ट किया।
1: पहले एक्टिंग का कीड़ा ऑलरेडी था, उसके बाद ये एक और आ गया।
0: फिर बनाई ये पिक्चर हम लोगों ने।
1: शुरुआती दिक्कतें क्या थीं?
0: कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि इरोस तब बहुत बड़ा स्टूडियो था, वो ऑन बोर्ड आ गया था। दिक्कत बाद में हुई क्योंकि उसके बाद जब हमने फिल्म बना ली, फिल्म बनाने के बाद अगेन बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ। लेकिन उसके बाद इरोस वेंट थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। तो उनका दे हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन द फिल्म बट दे वर मतलब सबसे बड़ा स्टूडियो आप सोचो, फिर दे वेंट थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। उसके बाद पैंडेमिक आ गई तो सब कुछ बंद हो गया। लोगों की वो स्ट्रगल होती है कि फिल्म बनाने में, ये बनने में इतनी मुश्किल नहीं हुई बट आई कुडंट डू एनीथिंग विद द फिल्म लेटर। मतलब दो तीन फेस्टिवल्स में गई, उसके बाद रिलीज नहीं कर पाए हम,
1: अभी
0: पता नहीं। उसके बाद मैंने एक शॉर्ट फिल्म जो है, एक एंथोलॉजी सीरीज अमेजोन के लिए है, अनपॉज्ड करके उसका एक सेगमेंट रैटाटैट, वो डायरेक्ट किया मैंने। और फुल प्लेट मेरी सेकंड फीचर फिल्म है जिसको हमने बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अगेन वर्ल्ड प्रीमियर किया। वहां मुझे विजनरी डायरेक्टर अवार्ड मिला। फिर
1: बाबा
0: फ्रांस में वसूल में हमें पीपल्स चॉइस अवार्ड और क्रिटिक्स स्पेशल मेंशन मिला। केरला मैंने बताया, केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल धर्मशाला, इसमें हमने स्क्रीनिंग की। अभी शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा रही है और सेंट जॉन्स मिनियापोलिस में हमने यूएस प्रीमियर की उस फिल्म की।
1: इतना सारा नाम आपकी फिल्म कमा रही है, कैसा लगता है?
0: बहुत ही बढ़िया क्योंकि बहुत ही मुश्किल थी ये फिल्म बनाना।
1: इसका आइडिया कहां से आया था? वो तो एक वेनिस की सुपरनेचुरल कहानी आपने बताया,
0: हाँ
1: बस इतना ही एक क्लू छोड़ा आपने। इसका मामला क्या था?
0: ये एक लूजली एक रियल पर्सन पे ही है, जो मतलब मैं क्लियरली उतना नहीं बता पाऊंगी क्योंकि उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम हो जाएगी। पर मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया इनको, और लेकिन मैंने कुछ लिखा नहीं था। मेरे दिमाग में था कि यार ये बहुत कमाल है और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, इस कहानी में। पर जब मुझे मेरे जो फर्स्ट प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, उन्होंने मुझे ये ऑफर दिया अचानक कि छोटी बजट की कुछ भी, किसी को भी लेना है ले लो, जो भी बनाना है बना लो। तब मैंने लिखना शुरू किया। मुझे लगा कि यार ये तो कभी हो नहीं सकता आज की तारीख में, क्योंकि आज आप किसी भी स्टूडियो के पास जाओगे तो उनके मैंडेट्स हैं कि वो किस तरह की फिल्में देखना चाहते हैं, आपको वो लिखना पड़ता है।
1: यहां तो पूरी आजादी है।
0: और कल हम लोग एक्चुअली इस इवेंट में भी यही बातें कर रहे थे कि पहले ना कमर्शियल सिनेमा भी जब बनती थी, वो उस समय सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है या सोसाइटी जिस चीजों से गुजर रही है, राइटर्स उनका रिफ्लेक्शन ऑडियंस तक लेकर आते थे। मार्केट प्रेशर की मार्केट ये चाह रही है इसलिए हम ये लिख रहे हैं, ये नहीं होता था। पर अब वो नहीं है क्योंकि स्टूडियो सिस्टम जो अमेरिका में बहुत सालों से है वो यहां फुल्ली आ गया है।
1: और कुछ अलग ही रूप में आया है।
0: हाँ वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, तो वो एल्गोरिथम से हमें बताया जाता है कि यार जो है ना मतलब लोग ये चाह रहे हैं तो ये लिखो ये बनाओ। आजकल हम ये चाह रहे हैं, आजकल थ्रिल

0: एक्टर्स चल रहा है, आजकल रोम कॉम्स चल रहे हैं, आजकल यूथ पे ऐसे फिल्में चल रही है, आज ये सोशल ड्रामा नहीं चलेगा या म्यूजिकल्स नहीं वर्कआउट हो रहा है, ये सब एल्गोरिथम्स बता रही हैं आपको, और उस हिसाब से आप, तो जो फ्रीडम होती है आर्टिस्ट के एक्सप्रेशन की, वो कहीं पे यही बात हो रही थी, हम अपने आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी कैसे इसमें बरकरार रखें, क्योंकि अगर हम आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें एक पैसा भी नहीं मिलेगा,
1: बिल्कुल
0: बिकॉज इट इज सो डिफिकल्ट। और मुझे लगता है कि इन फिल्मों के लिए ऑडियंस है, बहुत है, क्योंकि हमारे देश के जो डाइवर्सिटी है उसमें इन फिल्मों के लिए बहुत बड़ा ऑडियंस है, लेकिन जो गेट कीपर्स हैं, जो हमें मदद करते हैं उन तक पहुंचने में, वो पहुंचने नहीं देते हैं।
1: बिल्कुल सही है। यहां एक गाना सुनते हैं।
0: बिल्कुल
1: गाना कौन सा होगा?

0: करते हैं उन तक पहुंचने में, वो पहुंचने नहीं देते हैं।
1: बिल्कुल सही है। यहां एक गाना सुनते हैं।
0: बिल्कुल।
1: गाना कौन सा होगा?

0: फिर से एनएसडी की तरफ चलता हूँ, इसलिए क्योंकि एनएसडी में आपने एक्टिंग का डिप्लोमा लिया, हालांकि आपने डायरेक्शन की तरफ घूमने की कोशिश जरूर की लेकिन वो कामयाब नहीं होने दी गई है ना। अब बात यह है कि एक्टिंग के ऑफर्स तो आने लगे थे और पहली फिल्म जो है वो बड़ी इंटरनेशनल टाइप की फिल्म आपने की थी, वहां से आगे की बातें करते हैं।
1: मेरी एक्चुअली पहली फिल्म थी अनवर जमाल की एक फिल्म स्वराज।
0: अच्छा, अनवर साहब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो
1: जी
0: है।
1: जी जी, और उन्होंने एनएसडी में रहते हुए ही जब एक प्ले देखने आए थे वो अपने पत्नी के साथ, सहजोजी के साथ, वहां उन्होंने मुझे देख के मुझे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। और सारे एनएसडी के मेरे सीनियर्स थे एक्टर्स, चार औरतों की कहानी थी वो।
0: ओके।
1: और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट की और हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक करते थे गाना, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं थी।
0: अरे अरे।
1: और हम गांव में मतलब रह रहे थे, इतना मजा आया था ना राजस्थान के एक गांव में। और शाम में मतलब 6:30 के बाद अपने हट में जाओ रजाई के अंदर, और पूरी रात हम गाना गाते थे और सुबह 4 उठ के नहा के शूटिंग, क्योंकि 6:30-7 से हम लोगों की शूटिंग शुरू हो जाती थी, उनको तैयार होना पड़ता था। बहुत मजा आया, वो मेरी पहली फिल्म थी स्वराज। एंड स्वराज को नेशनल अवार्ड भी मिली थी सोशल ड्रामा के लिए, बेस्ट सोशल ड्रामा। फिर उसके बाद मैंने एक छोटी सी फिल्म की बम्बई में बस यूं ही करके, और फिर मुझे बस यूं के बाद राजा मेनन की फिल्म, जो अभी बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, उन्होंने एयरलिफ्ट बनाई, उनके साथ मैंने 2 पिक्चर की, बस यूं ही और 12 आना। उसके बाद मुझे मिली शैडोज ऑफ टाइम, जो एक जर्मन प्रोडक्शन थी और एक ऑस्कर विनिंग जर्मन डायरेक्टर फ्लोरियन गैलनबर्गर, उनकी फिल्म
0: ऑडिशन से मिली थी।
1: ऑडिशन से, बहुत राउंड्स ऑफ ऑडिशन थी। हाँ, और उस समय बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो कंसिडरेशन में थे उस रोल के लिए,
0: जिनके नाम हम नहीं लेना चाहेंगे।
1: मुझे लगा था कि यार मतलब वो बड़े, बहुत बड़े स्टार्स थे, मैंने कहा मैं क्यों दे रही हूँ ऑडिशन। बट अगेन मुझे इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि वेस्ट में ना वो लोग लिपसिंग नहीं करते हैं, और रोल था एक कोठे में जो गाना गाती है और नाचती है उस औरत का। एंड फ्लोरियन वांटेड कि ऑब्वियसली जो एक्टर है वो लाइव गाएंगे, ही वांटेड अ सिंगर।

0: वहीं पे स्कोर किया।
1: क्या बात है।
0: की और मतलब हमको डांस भी करना था वहाँ पे और गाना भी था एंड वो जो गाना है बंगाली ठुमरी थी जो आई हैड टू सिंग फॉर दैट फिल्म।
1: यू हैव टू सिंग।
0: ओके।

0: তোমার নই, তোমার নই, তোমার নই।
1: क्या सुंदर तो बोल है, मतलब अद्भुत, क्या लाइन है वो, कामना के फूल।
0: हाँ।
1: क्या बात है, क्या बात है, सुंदर।
2: अभी आप सुन रहे थे तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन किया मनीषा सिंह ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। लीजिए सुनिए ये संदेश।
1: आकाशवाणी के 9 दशक, जी हाँ पूरे 90 साल। आकाशवाणी आपके भरोसे का साथी, आपकी आवाज, आपके दिलों की धड़कन, निरंतर सेवा में समर्पित। ज्ञान, सूचना, मनोरंजन और संस्कृति का ये है अथाह सागर। पीढ़ियों से सदा है हमारा मार्गदर्शक, गांव से शहर तक है हर घर में इसकी गूंज। आकाशवाणी के 90 वर्ष, ये सिर्फ एक संख्या नहीं, ये है हमारी विरासत, हमारा गौरव। सुनते रहिए आकाशवाणी, सदाबहार, सदा आपके साथ।
0: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम।

0: बहादुर शाह जफर का कलाम अभी आपने सुना। गायिका थी रूना लैला और संगीत पंडित गुलाम कादिर का था।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और आइए अब सुनते हैं यूसुफ आजाद कव्वाल और उनके हमनवा की गाई ये कव्वाली। इसे तविश महमूद ने लिखा और धुन बनाई निसार ने।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं किशोरी अमोनकर की आवाज में उनकी गाई ये ठुमरी भैरवी।

0: किशोरी अमोनकर की आवाज में अभी आपने उनकी गाई ये ठुमरी भैरवी सुनी।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
0: शोभा गुर्टू की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं ये कजरी।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना

0: खयालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।

0: अभी आप सुन रहे थे शंकर, शंभू और खव्वाल की आवाजों में हजरत आमिर खुसरो का ये कलाम। ये एक सूफी कव्वाली थी जो हजरत आमिर खुसरो ने अपने मुर्शीद यानी अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के लिए लिखी, और इस कव्वाली में वे अपने पीर, अपने संत को पाने की खुशी और उनके प्रेम के रंग का वर्णन कर रहे थे। संगीत दिया था मुरली मनोहर स्वरूप ने।
1: आएगी जरूर चिट्ठी।
2: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे।

0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मन चाहे गीत कार्यक्रम, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मन चाहे गीत, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: रंग तरंग कार्यक्रम में अब सुनिए जयदेव के संगीत निर्देशन में रामानंद शर्मा का लिखा ये भक्ति पद। इसे गाया है शर्मा बंधु ने।

0: की फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मन चाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मन चाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: खत लिख दे।
2: रंग तरंग कार्यक्रम में अब सुनिए जयदेव के संगीत निर्देशन में रामानंद शर्मा का लिखा ये भक्ति पद। इसे गाया है शर्मा बंधु ने।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो दर को 5.25% पर बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति के फैसले की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments as well as the outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%.
0: श्री मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा, जिसके चलते केंद्रीय बैंक ने वर्ष 2026-27 के लिए अपने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अनुमान को संशोधित करके 6.7% कर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष प्रमुख व्यापार मार्गों को बाधित करके वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां पेश कर रहा है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि बैंक ने वित्त वर्ष 2027 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अपने अनुमान को पहले के 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। रिजर्व बैंक ने घरेलू अर्थव्यवस्था पर आशावादी रुख अपनाते हुए वर्ष 2026-27 के लिए अपने विकास अनुमान को बढ़ाया और मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को घटाया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग करने लगे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करकर प्रदर्शन करकर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: उधर राज्यसभा में भी इसी

0: पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। जम्मू कश्मीर से भाजपा सांसद सतपाल शर्मा ने कहा कि 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। श्री शर्मा ने कहा कि आज का दिन न केवल जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने जम्मू कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। श्री शर्मा ने कहा कि दशकों तक अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को अलग थलग रखा। श्री शर्मा ने यह भी बताया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भारत की एकता और अखंडता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
1: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था। Honoring the spirit of the Constitution of India, Article 370 was abrogated. Article 370 started with the word temporary, but nobody had the will to abrogate it.
0: झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 225 अंक बढ़कर 78,654 पर, जबकि निफ्टी 25 अंक गिरकर 24,590 पर पहुंच गया। भारत की शरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वेलिशेट्टी ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर पुरुष सिंगल्स में शीर्ष खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रोहनक चौहान, सानीत दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज अभिनेत्री काजोल और जेनेलिया डिसूजा का जन्मदिन है और विविध भारती परिवार की ओर से हम इन दोनों अभिनेत्रियों को देते हैं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने वो गीत चुने हैं जो काजोल और अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा की फिल्मों के हैं। तो आइए सुनते हैं कुछ ऐसे ही चुनिंदा गीत।
1: तुझे देखा तो ये जाना सनम।
0: लता मंगेशकर और कुमार सानू फिल्म का नाम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार जतिन।

0: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए ये संदेश।
1: आप जाइए अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर, वहाँ से कीजिए डाउनलोड न्यूज ऑन AIR ऐप। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद जब आप लाइव रेडियो के ऑप्शंस पर जाएंगे तो वहाँ आपको मिलेंगे रेडियो के ढेरों चैनल्स। इनमें से आप सर्च कीजिए अपना फेवरेट ऑल इंडिया रेडियो अलवर, जहाँ आप हमें पाएंगे अपने साथ। Only at News on AIR.
0: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। लीजिए सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम।

अनु मलिक की संगीत निर्देशन में अभी आपने देव कोहली का लिखा ये गीत सुना। आवाजें कुमार सानू, अनु मलिक और साथियों की। फिल्म का नाम था बाजीगर।

0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये गीत है अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है। इसे समीर ने लिखा है और तर्ज जतिन ललित की है।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर

0: सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आए हाय
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, अमित कुमार और उदित नारायण की आवाजों में। फिल्म का नाम है कभी खुशी कभी गम। बोल समीर के हैं और धुन जतिन ललित की है।

अभी आपने सुना फिल्म कभी खुशी कभी गम का ये गीत। अगला गीत जतिन ललित की संगीत निर्देशन में प्रसून जोशी का लिखा हुआ, युगल स्वर सोनू निगम और सुनिधि चौहान के, फिल्म का नाम है फना।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर। हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम् वंदे मातरम्।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है।
3: जी हाँ, अब आप सुनने वाले हैं आशा भोसले और उदित नारायण को। फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था। गीतकार समीर हैं और संगीतकार जतिन ललित हैं।
4: अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

आशा भोसले और उदित नारायणको अभि आपने सुना फिल्मका नाम था प्यार तो होना ही था। आइए सुनते हैं कार्यक्रमका अगला गीत। फिल्मका नाम है जाने तू या जाने ना। आवाज रूना की, संगीत दिया है ए

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। फिल्म का नाम है मस्ती, आवाजी शान और स्नेहा पंत की। इसे समीर ने लिखा है और धुन बनाई है आनंद राज आनंद ने।

0: मस्ती फिल्म का दो गाना अभी आपने शान और स्नेहा पंत की आवाजों में सुना।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
0: और अब आज

0: ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। आरबीआई ने रेपो दर में बदलाव नहीं करते हुए 5.25% पर ही बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति के फैसले की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा, जिसके चलते केंद्रीय बैंक ने वर्ष 2026-27 के लिए अपने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की बढ़ोतरी अनुमान को संशोधित करके 6.7% कर दिया है। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह भी किया। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की आज 7वीं सालगिरह है। वर्ष 2019 में आज ही के दिन संसद ने अनुच्छेद 370 के उन प्रावधानों को खत्म कर दिया था जिनके तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा मिला हुआ था। इससे पहले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के अनुसार जम्मू कश्मीर देश का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका अपना अलग संविधान था। ये एक अस्थायी प्रावधान था जिसने राज्य को विशेष स्वायत्त दर्जा दिया था। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CQM ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में 500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले निर्माण और तोड़फोड़ स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई के लिए संशोधित निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने NCR में अतिरिक्त नगर निगमों, विकास प्राधिकरणों, नगर परिषदों, नगर बोर्डों और शहरी स्थानीय निकाय को गंभीर उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन शुरू करने की शक्तियां प्रदान की हैं। इनमें अलवर, भरतपुर, भिवाड़ी और नीमराणा सहित NCR के विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। आयोग ने कहा है कि इसका उद्देश्य धूल नियंत्रण उपायों का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है ताकि निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से होने वाले कण प्रदूषण को कम किया जा सके। नागौर जिले के डेगाना उपखंड में हरी

चालू राजस्थान अभियान के तहत एक ही दिन में 1,00,000 पौधे लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया गया है। भैरुंदा और डेगाना पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों ने जन सहभागिता से ये लक्ष्य पूरा किया है। अभियान के तहत हर ग्राम पंचायत में 4,000 पौधे लगाए गए। मुख्य कार्यक्रम सुरपुरा, निम्बुला बिस्वा और पिरामिड वैली स्थित तेजाजी हरसोर परिसर में आयोजित हुआ। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर बरसात हुई। मौसम विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार डीग जिले के रारहे में सबसे अधिक 66 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, सीकर, झुंझुनू और जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हुई। इस बीच मौसम विभाग ने आज 17 जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से उत्तर पूर्वी हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं 7 और 8 अगस्त को भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। राज्य सरकार ने प्रस्तावित राजस्थान समान सिविल संहिता यूसीसी पर आमजन से ऑनलाइन सुझाव और विचार आमंत्रित किए हैं। राजस्थान के मूल निवासी निर्धारित पोर्टल या क्यूआर कोड के माध्यम से अपने सुझाव दर्ज करा सकते हैं। सरकार ने नागरिकों से अधिक संख्या में इस प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। प्राप्त सुझावों पर विचार कर प्रस्तावित विधेयक को और अधिक व्यापक, प्रभावी और जनहितकारी बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

जी हाँ, सावन आ गया है और ये गीत तो महेंद्र कपूर और साथियों ने फिल्म बंधन के लिए गाया था। इंदिवर के बोल थे और कल्याण जी आनंद जी की धुन। भाई सावन आ गया है और हम इससे बेखबर कैसे हो सकते हैं? देखिए ना, हमारे श्रोता भी कितने सावन की बौछारों से भीग गए हैं। कुछ श्रोता तो लिख रहे हैं कि हालांकि उनके शहर में अभी बरसात नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो कार्यक्रमों के जरिए महसूस करेंगे कि सावन की कुछ फुहारें उनके भीतर महसूस हो। तो एक श्रोता ने लिखा है कि आज गद्यांश में फिर एक बार सावन के भीगे मौसम की बात है तो गानों से जरूर तरबतर हो जाएंगे। सावन केवल एक ऋतु नहीं बल्कि धरती और आकाश के मिलन का महाउत्सव, ये चातक की प्रतीक्षा, कृषक की आशा और विरहियों की व्याकुलता का सघन मेघ है। जब ग्रीष्म की तपन से झुलसी वसुधा पर स्वाति की बूंदे गिरती है तब मिट्टी से सौंधी महक उठती है। ये महक प्रकृति के नव श्रृंगार की पहली घोषणा है, इसलिए ये हृदय का राग है, मिलन का बंधन है, मानवीय भावनाओं के चरमोत्कर्ष का काल है और सावन एक शाश्वत अनुभूति है। बहुत सुंदर भाव आपने अपनी इबारत में भेजा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन के इस महीने में सुरीले सफर की खूबसूरत इबारत का, सावन केवल एक ऋतु नहीं बल्कि हमारे मन का सबसे कोमल एहसास है। सावन की फुहारों में प्रेम का संदेश है, झूलों की पींगों में बचपन की हंसी है, मोर के नृत्य में प्रकृति का उल्लास है और पपीहे की पुकार में विरह की मधुर टीस भी है। फिल्मी गीतों में भी सावन कभी मिलन का बहाना बनकर आया तो कभी बिछड़ने वालों की आंखों में बरसता रहा। सुनेंगे इस संगीत में सावन में सुरीले सफर में उन सदाबहार गीतों को जिन्होंने बरसात की हर बूंद को सुरों का मोती बना दिया। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज इबारत आती थी मगर ऐसी न थी। चेतक पक्षी को जैसे सावन की एक बूंद का इंतजार रहता है, हमें भी सुरीला सफर की बागडोर कौन संभाल रहा है उस पोस्ट का इंतजार रहता है। क्या बात है, सावन आए और विविध भारती पर से जुड़े गीत न बजे ऐसा संभव ही नहीं। सावन केवल एक ऋतु नहीं, आशा, विश्वास, मिलन, विरह और प्रतीक्षा का प्रतीक है। हमारे लिए सावन आए न आए, जिया जब झूमे सावन है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी आवाज, मेरी आवाज सुरीला सफर को और सुरीला बना देती है। क्या बात है, सावन सिर्फ बारिश की बूंद नहीं लाता बल्कि मन में एक नई ताजगी भर देता है। जब सूखी धरती पर पहली बूंद पड़ती है तो सौंधी महक से हर कोना महक उठता है। पेड़ पर पड़े झूले, बादलों की गड़गड़ाहट और हरी भरी पत्तियां सब मिलकर जीवन में नए रंग भर देते हैं। आपने भी कुछ गीत चुने हैं जिनका जिक्र आपने किया है, तो देखना यह है कि आज जो गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या आपके गीत से मिलते हैं वो गीत। तो जब सुरीला सफर पर निकल ही चुके हैं, सावन आ ही गया है, तो चलिए फिर क्या करते हैं, झूला झूलते हैं। बताइए आपके आसपास कहीं झूला टंगा है किसी पेड़ की टहनी पर या घर में? बताइएगा क्या आपने झूला झूला इन दिनों? फटाफट लिखिएगा अपना एहसास, कितनी ऊंची पींगे बढ़ाई आपने ये भी बताइएगा।

लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था बहु बेगम। इसे साहिर लुधियानवी ने लिखा था और धुन रोशन की थी। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि धमाकेदार शुरुआत से लगता है आज सावन में ही भादो आ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। यानी आप भी आनंदित हो रहे हैं और सावन में भीग गए हैं, है ना। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज गीत बहुत ही प्यारे होने वाले हैं क्योंकि सावन जो आ गया है विविध भारती के आंगन में। भाई, आपके आंगन में भी तो सावन आ गया है और सब श्रोता मिलकर मंदाकिनी जी के साथ मस्ती से आनंद लेने वाले हैं। बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बंधन फिल्म के महेंद्र कपूर जी की ये जो आवाज थी शानदार गाने से सावन की शुरुआत सुरीला सफर कार्यक्रम में हुई, इसके लिए बहुत बहुत आभार। वही एक श्रोता लिखते हैं कि पहली बार ये गीत सुनने को मिला है, सुरीला सफर में बज रहा है या बहुत लंबे से समय के बाद इस गीत को बजाया गया है। धन्यवाद देते हैं आप। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर की सुरीली यात्रा अत्यंत सुखदायी लग रही है क्योंकि आज की विशेष कड़ी आपके द्वारा सावन में वर्षा की ठंडी ठंडी फुहार जैसे कर्णप्रिय गीतों से सजाई गई है। भाई, जब सावन का मौका है और सुरीला सफर है, हम और आप साथ हैं, मिलकर इस यात्रा पर निकले हैं, तो यकीनन जो सफर है वो सुरीला होना लाजिमी है, है ना। हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन का महीना आकाश का मन हुआ कि चलो धरती से मिले, हाथ बढ़ाकर उसके स्पर्श की पावन अनुभूति का आनंद मैं भी लूं, अपने लंबे लंबे हाथ पानी की धार के रूप में फैलाएं और अंततः स्पर्श कर ही लिया, बस फिर क्या था, माँ तो माँ ही होती है। खुश हो हरा भरा श्रृंगार करके, अच्छा श्रृंगार करके झूमने गाने लगी और तब से वे दोनों हर साल मिलते हैं और इस मिलन के उत्सव को उनके साथ हम सभी झूम झूम कर मनाते हैं। बहुत सुंदर इबारत आपने लिखी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज बारिश रूपी झड़ी लगने वाली है, गीतों की बूंदों के रस में डूबे हुए स्नेहिल मंदाकिनी जी और सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार करता हूं। ये सच है कि ऋतु में सावन खूब भाता है। बचपना हो, युवा हो या 50 से ऊपर, बारिश में भीगने का अपना आनंद होता है। हाँ, पर मन के भाव हर उम्र में अलग अलग हो सकते हैं, पर बारिश रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए, मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी अगन। बहुत अच्छे लगते हैं गीत सुनना। बिल्कुल आपने सही कहा, चाहे बचपना हो, चाहे युवावस्था हो या 50

ये पार का हमारा मन हो, ये जो बारिश है, ये जो सावन है, ये जो मौसम है, हमें हर उम्र में उतना ही उल्लासित रखता है जितना हम हर वक्त रहते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसी भी मौसम को किन अर्थों में लेते हैं। अच्छा, तो हमने आपसे पूछा था कि झूले पड़ गए हैं, आपके घर आंगन में भी झूले लग गए होंगे, किसी पेड़ की शाखा पर झूले टंग गए होंगे, कि आपने झूले झूले हैं। अभी ढूंढते हैं आपके जवाब क्या आए। ये बताइएगा कि आपके शहर में सावन बरसा के नहीं, फटाफट बताइए। तो आप बताएंगे कि आपके शहर में बरसात हुई कि नहीं, हुई तो कितनी हुई, कब से हुई, और आपने सावन का जो ये आनंद है लिया या नहीं। ये आपका मन सूखा रेगिस्तान है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सुरीला सफर में आज हमारी कोशिश यही है कि हम भीग जाएं तन मन से। यह आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम आशीर्वाद, गुलजार साहब के बोल, वसंत देसाई की धुन।

लता मंगेशकर की आवाज थी और फिल्म का नाम था आशीर्वाद। हमारे श्रोता ने लिखा है कि कहा जाता है कि सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ था। इस मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो ये दर्शाता है कि हर अच्छे काम की शुरुआत में मुश्किलें और नकारात्मकता आती ही हैं। भगवान शिव द्वारा इस विष को अपने गले में रोकना ये सिखाता है कि समाज की भलाई के लिए कभी कभी कड़वी बातें भी सहनी पड़ती हैं। जो इंसान अपमान और आलोचना को झेल कर भी शांत रहता है, वही असल में महान बनता है। बहुत सुंदर।

0: हमारे श्रोता ने हमारे एक सवाल का जवाब दिया है। हमने पूछा कि क्या आपके शहर में बरसा है पानी सावन बरसा कि नहीं। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ गुजरात में अभी सावन नहीं आया, उत्तर पूर्व भारत में गए सोमवार के आसपास सावन शुरू हो गया है, पर पश्चिम में सावन महीना देर से आता है। इन्होंने लिखा है, अरे आपने हमारा नाम बदल दिया, मीनाक्षी जी। बड़ा सुंदर नाम रख दिया आपने हमारा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन हमारे तीन तहसील में बारिश नहीं हुई है, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर और जामनगर में बारिश नहीं हुई। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे भोपाल और आसपास के क्षेत्र में पानी नहीं बरस रहा है, बहुत चिंता हो रही है। बाकी गर्मी तो कम है, मौसम बहुत सुहावना है, चारों ओर हरियाली, तालाब जंगल से घिरा हुआ शहर है हमारा। अगर अच्छा पानी गिरता है तो शिमला मसूरी का मजा आता है। क्या बात है, हम बिल्कुल गुजारिश करते हैं भगवान से, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के शहर में पानी बरसे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पिछले महीने से मैं बारिश की गीत सुनकर थक गई थी, पर हमारे शहर में बारिश नहीं हो रही ही, पर पिछले सोमवार से हमारे शहर में रिमझिम सावन बरस रहा है। आज भी सुबह से एकदम बिल्कुल फुहार हो रही है और बहुत बढ़िया हरियाला मौसम हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है ना आपको। आप लिखती हैं कि भाई विविध भारती स्टूडियो में भी सावन आ गया है। बिल्कुल, यहां तो सावन आ गया है स्टूडियो में, और सुरीला सफर में भी तो हम निकल पड़े हैं ना, जहां सावन की बौछारें हमें भीगो रही हैं। भीगे हैं ना आप, बताइए मुझे भीगे हैं कि नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन ने आज तो मुझको भिगो दिया है, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि कहा जाता है कि सावन मास में ही, अच्छा ही तो हमने आपका विचार पढ़ दिया था, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं सलील चौधरी का संगीत, शैलेंद्र के बोल, लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है 2 बीघा जमीन। अच्छा बताइएगा, हमारे श्रोता ने कहा आपके दो सवालों का क्या हुआ। नहीं नहीं, आज हम खूब सारी बातें करने वाले हैं, खूब सारे सवाल आपसे करने वाले हैं, सीधे साधे प्यारे से, जिनका जवाब आप इस सफर में चलते चलाते दे देंगे, है ना। बताइएगा आपके लिए सावन का सबसे रूमानी एहसास क्या है, बारिश, ठंडी हवा, चाय या किसी अपने का साथ।
1: जग जग जग जग जगन जगन गिन गिन रे।
0: हमारे बहुत सारे श्रोता खेत खलियान में बैठकर ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे, बताइएगा कैसा लग रहा है आपको वहाँ बैठकर।
1: जग जग, उर जग जगिन, उर जग जग।

हमारे श्रोता लगातार हमें लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हम आपसे थोड़े से नाराज हैं, आप आजकल बहुत दिनों बाद आती हैं। वैसे तो हमने सोचा आज हम सुरीला सफर नहीं सुनेंगे क्योंकि कुछ ऐसे काम है जो हम नहीं कर पा रहे, उसे करना बहुत जरूरी था, पर अब लगता है कि आपको हम सुनेंगे और जब सावन की बातें हैं तो हम क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा है। फिर दिल ने धीरे से कहा, हो जाओ शामिल, देखो न सबने कितने प्यारे प्यारे संदेश भेजे हैं, तुम भी लगी हो इन सब में, बस फिर क्या था हम लिखने लगे, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप इस तरह से इतना काम होते हुए भी हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं और हमारे साथ इस सुरीले सफर पर निकल पड़ते हैं। एक श्रोता ने कहा है, यह सावन हर साल आता है मगर हर बार कुछ नया छोड़ जाता है, कभी भीगी मिट्टी की खुशबू में कोई पुरानी याद, कभी झूले की पींग में बचपन, कभी पपीहे की पुकार में किसी का इंतजार, पेड़ों पर उतरती हरियाली जैसे धरती ने हरे रंग की चूड़ियां पहन ली हो और बादल आसमान की पेशानी पर ठहरी कोई खामोश दुआ बन गया हो। शायद इसलिए हमारे फिल्मी गीतों ने सावन को सिर्फ देखा नहीं, उसे जिया है। हर धुन में कहीं रिमझिम की बूंद है, कहीं मोर के पंखों की थिरकन, कहीं विरह की भीगी सांस तो कहीं मिलन की मुस्कान। सावन दरअसल मौसम नहीं, यादों का भीगा हुआ पन्ना है जिसे जिंदगी हर बरस फिर से खोलकर पढ़ती है। बहुत सुंदर, बहुत गहरी इबारत आपने लिखी है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि भारत ऋतुओं की विविधता का देश है लेकिन जो आत्मीयता, रसमयता और भावुकता सावन के महीने में छिपी है वो अद्वितीय है। सावन केवल वक्त का एक महीना नहीं है, ये भारतीय जनमानस के लिए प्रेम, विरह, हरियाली और आस्था का एक जीवंत उत्सव है। सावन आते ही प्रकृति अपना सबसे सुंदर रूप धारण कर लेती है। सावन रस का महीना है, चाहे वो पानी का रस हो, संगीत का रस हो, प्रेम का रस हो या फिर भक्ति का रस हो। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना उल्लास, उमंग, खुशी और प्रकृति को भी खुशनुमा बना देता है। मोर नाचने लगते हैं, कोयल की कूक गूंजने लगती है, पानी की बूंदे धरी पर पड़ती है, सारा वातावरण खुशनुमा हो जाता है और हरियाला सावन ढोल बजाता आता है। सावन का महीना और इस तरह से हम सावन के महीने को जीते हैं। तो हमारे श्रोता लगातार लिख रहे हैं लेकिन सवालों का जवाब भेज रहे हैं कि नहीं। भाई आज तो बिल्कुल सीधे साधे सवाल आपसे किए जा रहे हैं ताकि सुरीला सफर में कहीं रुक के हमें दिमाग पर ज्यादा जोर न देना पड़े कि आज जो हमने पूछा उसका जवाब क्या हो सकता है। तो हमने आपसे सीधा साधा सवाल किया था कि आपके शहर में सावन बरसा या नहीं, आपने इसका जवाब दिया है। और हमने आपसे ये भी पूछा था कि आपके आस पड़ोस में, आपके घर खेत खलिहान में या आपके आसपास झूले लगे कि नहीं, आपने झूला झूला कि नहीं, इसका जवाब शायद अभी तक नहीं मिला है। वहीं अब हम इस सुरीला सफर में आपसे जानना चाह रहे थे कि आपके लिए सावन का सबसे रूमानी एहसास क्या है। मतलब सावन बरसता है तो बारिश का मजा लेते हैं, ठंडी हवाओं का, या अदरक की चाय का, या किसी अपने के साथ उस सावन का मजा लिया जाता है, या कई लोग चाय की टपरी की ओर भी चले जाते हैं जहां हमें कुल्हड़ की चाय मिलती है। याद है आपको वो समय जब आप चाय की टपरी पर जाकर कुल्हड़ की चाय पिया करते थे? याद करिए उन दिनों को और लिख भेजिए कम से कम शब्दों में ये अपनी बात जो आपने अपनी जिंदगी में महसूस की है। ये आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है कौन है अपना। बीडी मिश्रा का लिखा गीत है और एस एन त्रिपाठी का संगीत है। बहुत कम बजता है गीत

हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन मास का आगमन हर दिल में एक नई उमंग जगाता है, इसलिए सभी को इसका बेसब्री से इंतजार रहता है। स्वयं भगवान शिव को भी ये महीना अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि इस समय प्रकृति का कण कण उनकी कृपा से जीवंत हो उठता है। इस पावन मास में बेटियां अपने मायके लौटती हैं, घर आंगन में झूले सजते हैं, सावन के मेले लगते हैं और चारों ओर मखमली हरियाली छा जाती है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने स्वयं को खुशियों के हरे रंग से सराबोर कर लिया है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि भारतीय लोक जीवन में सावन का बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। सावन केवल बाहरी वातावरण को ही शीतल नहीं करता, बल्कि इंसान की भीतर छिपी संवेदनाओं को भी जगा देता है। कवियों और साहित्यकारों ने सावन पर अनगिनत रचनाएं लिखी। फिल्मी गीतों से लेकर शास्त्रीय संगीत के राग मेघ मल्हार तक सावन हर कलाकार की प्रेरणा रहा है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपके द्वारा साझा किए गए शब्दों में सावन की भावना जीवंत हो उठी है। सचमुच ये बहुत अच्छा अनुभव होगा, ऐसा हम समझते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना आ गया, जीना नहीं आता था लेकिन सावन का महीना आया। बहुत सारे गीतों का जिक्र आपने किया है। और श्रोता लिखते हैं कि अदरक की चाय के साथ किसी अपने का साथ हो तो सावन का मजा दोगुना हो जाता है। आपने पूछा था कि आप सावन को किस तरह से बिता रहे हैं, उसका जवाब दिया है इन्होंने कि आपके लिए सावन का सबसे रोमानी एहसास क्या है। आपने लिखा है कि अदरक की चाय के साथ किसी अपने का साथ हो तो सावन का मजा दोगुना हो जाता है। मेरे शहर में सावन की झड़ी लगी हुई है और मौसम काफी रोमानी हो गया है, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी पुणे शहर में आषाढ़ की घनघोर बरसात के साथ अब सावन वाली धूप बारिश की आंख मिचोली दिखाई दे रही है। हरी भरी प्रसन्न सृष्टि के साथ हमारा तन मन भी प्रफुल्लित हो गया है। बहुत सुंदर। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अब तो बालपन वाले झूले कहाँ मिलते हैं मंदाकिनी जी, जो पेड़ों पर लगे रहते थे अब तो पार्क में झूले होते हैं। अच्छा आज भी जब आप गाँवों में जाते हैं ना तो वहां पर आपको पेड़ों पर झूले टंगे हुए मिलेंगे, है ना। गाँवों में ढाणियों में जाकर देखिए, वहां खेतों में खलिहानों में पेड़ों के आसपास झूले लगते हैं और छोटे छोटे बच्चे और स्त्रियां घूंघट अपने में, वो अपनी पूरे पारंपरिक पोशाक में होती हैं मतलब, और झूला झूलती भी आपको मिल सकती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चलिए आज का सुरीला सफर तो आपने सावन के नाम कर दिया है, सुन रहे हैं हम भी आपके साथ हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सावन का महीना भारतीय जनमानस के प्राणों में बसता है। तपती गर्मी से व्याकुल धरती जब वर्षा की पहली फुहार से तृप्त होती है तो चारों ओर मिट्टी की सौंधी महक फैल जाती है। ये समय केवल ऋतु परिवर्तन का नहीं बल्कि प्रकृति के पुनर्जन्म का उत्सव है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हर तरफ मखमली हरी चादर बिछ जाती है। बागों में सखियों के खिलखिलाते चेहरों के साथ पेड़ों पर झूले सजते हैं और आकाश में काले बादल को देख पपीहे कितान और मोरों का नृत्य तेज हो जाता है। सावन का हर दिन लोकगीतों, त्योहारों और महादेव की भक्ति के रंग में डूबा रहता है, जो मानवीय संवेदनाओं, विरह और मिलन के भावों को जीवंत कर देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज ये सुरीला सफर आपके साथ हम चल रहे हैं और सावन के गीतों का आनंद लेंगे। सावन का महीना ऐसा महीना होता है

जहाँ देखो हरियाली हरियाली होती है, इस महीने में अपने आप ही मन खुश रहता है। और उस सफर पर हम और हमारी कैप्टन मंदाकिनी जी हमारे साथ होंगी। नहीं भाई, हम सब मिलकर, हम सभी मित्रगण जो हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि हमारे दोस्त, सब मिलकर इस सुरीला सफर का आनंद आज उठा रहे हैं। और आप इस सुरीला सफर में हमारे साथ हैं, ये बहुत खुशी की बात है।

जी, तो जब बात चल रही है सावन की, तो जब बादल खुलकर बरसते हैं तो कैसा लगता है? तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद आनंद की वर्षा कर रही है ना? और कभी कभी सावन की इस भीड़ में मन अकेला भी तो हो जाता है, पर हम तो सुरीला सफर के इस मौके पर निकल पड़े हैं। हमारे अंदर कहीं अकेलापन नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, जो लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अपने अनकहे दर्द को कहना चाहते हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि सुरीला सफर के इस यात्रा में हमारे साथ आ जाइए और अपनी तन्हाई को दूर करिए इस गीत के साथ।

मनाया, बरखा ने प्यार बरसाया।

उषा खन्ना का संगीत था और गौहर कानपुरी की रचना, आवाज मोहम्मद रफी की थी। फिल्म का नाम था दो खिलाड़ी। लगता है हमारे श्रोताओं को जो है पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े और अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। इसीलिए तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कहा है हमारे सवाल के जवाब में कि आपके लिए सावन का सबसे रुमानी एहसास क्या है। आप लिखते हैं कि गर्मा गर्म पकौड़े और चाय। चलिए हम पढ़ते हैं आपके इन जज्बातों को। आप लिखते हैं, पहली बूंदों को अदरक वाली चाय, गर्म पकौड़े और सुरीले सावन गीतों के सुनते हुए अपने मनमीत के साथ मजा लेना ही बढ़िया एहसास लगता है। क्या खूब। एक श्रोता ने लिखा है कि आज बहुत कम सुनाई देने वाले मधुर सावन गीत आ रहे हैं, धन्यवाद। वहीं एक श्रोता ने कहा है, हमें तो सावन में बारिश हो रही हो तब गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मजा आता है। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन माह में हल्की रिमझिम वर्षा के साथ गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों का आनंद लेते हुए झूले पर, अच्छा टेरेस पर डाले गए झूलों पर बैठना अधिक सुहाता है। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना, झूले भी खेतों में पड़े हैं और शिव जी पर नियमित प्रातः जलाभिषेक सपत्नीक हम कर रहे हैं। सारे माह बेटियों बहुओं ने व्रत रखने का संकल्प लिया है। एक समय भोजन करेंगे, शिव नाम का जाप होगा और अभिषेक होगा। बहुत खूब। वहीं श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना, झूले भी पड़े हैं और व्रत भी किया है। एक श्रोता ने लिखा है कि चाय और पकौड़े को तो सावन की जान माना जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन की शुरुआत ने हमारे यहाँ बारिश का आनंद देना शुरू कर दिया। हम घर बैठे बारिश के साथ रेडियो पर आपके प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं और झांसी में 15 दिन बाद पानी बरसा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और क्या कहना चाहिए, बधाई, ये आपके शहर में पानी बरसा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने सावन का आनंद हमेशा ही लिया है, बचपन में कागज की नाव बनाकर तैराना, कॉलेज के दिनों में भीगते हुए सावन का आनंद लेना और रेडियो पर सावन के गीतों का मजा लेना, सर्विस पीरियड में अवकाश के दिन अपनी पत्नी के साथ खिड़की के फुहारों और हरियाली का आनंद लेना, अब सेवानिवृत्त होने के बाद अदरक, काली मिर्च और इलायची की शुद्ध दूध की चाय और गर्मा गर्म प्याज के पकौड़ों का, आहा हमारा भी मन कर गया है। मजा अपनी पत्नी के साथ लेता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ तो जब भी बारिश होती है तो पतिदेव पकौड़े की फरमाइश करते हैं और फिर हम दोनों बारिश का मजा लेते हुए साथ साथ पकौड़े का भी मजा लेते हैं। बहुत सुंदर, यही तो जीवन है। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन महीने की बरसात की फुहार, चाय की प्याली और पकौड़े के स्वाद कुछ अलग ही होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन की बारिश में चाय और पकौड़ों की जुगलबंदी इस रूमानी एहसास को दोगुना कर देती है। गर्मा गर्म पकौड़े, कटती हुई ठंडक और बारिश की रिमझिम के बीच प्याज, आलू और मिर्च के करारे पकौड़ों की बाइट, मन को तृप्त कर देती है। इलायची अदरक वाली चाय पकौड़ों के साथ खौलती हुई अदरक इलायची की चाय की चुस्की रूह तक सुकून पहुंचाती है। मौसम का असली मजा खिड़की के पास बैठकर बारिश को देखते हुए चाय पकौड़े का आनंद लेना है और सावन का सबसे खास और ये सुखद पल बन जाता है। भाई, आपकी चाय और पकौड़े की बात पढ़ते पढ़ते, आपकी फीलिंग्स को महसूस करते करते हमारी भी इच्छा हो गई है कि एक गर्मा गर्म चाय और कुछ गर्मा गर्म पकौड़ियाँ खाई जाए। अच्छा, तो हमने एक सवाल पूछना चाहा भी था आपसे कि क्या कभी आपने बारिश में कागज की नाव बनाई। हाँ, बचपन में तो जरूर बनाई होगी। हमारे एक श्रोता ने अभी जवाब भी दिया कि उन्होंने बरसात में खास तौर से कागज की नाव को तैराया है। कितना मजा आता था ना घर आंगन में, जब हम जो नाली है उसमें एक कपड़ा ठूंस देते थे ताकि पानी बाहर न जाए और कागज की नाव उस पे चलाए करते थे और हमें लगता था कि हमने जैसे असल में नाव बना ली है और हम उस पर तैर रहे हैं। अच्छा, बताइएगा कि सावन का नाम सुनते ही आपके दिल में सबसे पहली कौन सी याद ताजा हो जाती है, कम से कम शब्दों में बताना है। और हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत।

हमारी एक श्रोता लिखती है कि मेरे लिए सावन की रिमझिम फुहारें, खिड़की पर आती ठंडी हवा की लपटे अरे आपने तो एक अलग ही शब्द इस्तेमाल कर लिया, हाथों में अदरक इलायची वाली कड़क चाय का गर्म कप और बैकग्राउंड में बजते हुए सदाबहार रुमानी गाने, ये किसी जन्नत के एहसास से कम नहीं लगते हैं। जी बिल्कुल सही कहा, और जब कोई संगीत प्रेमी इस तरह की कल्पना करता है या इस रोमानियत से जीता है तो उसकी जिंदगी क्या कहने। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे नागपुर वाले अपार्टमेंट के टेरेस पर मैंने झूला रखा है और शाम को उस पर बैठकर झूलते हुए हरियाली देखता हूं और ठंडी हवा का आनंद उठाता हूं, बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन में दोस्ती यारों के साथ चाय की दुकान पर मिलाप बढ़ जाता है और वार्तालाप और हंसी मजाक से समय बिताना कुछ अलग ही मजा देता है। बिल्कुल, एक श्रोता ने कहा है कि सुबह से दीदी बनारस में बारिश हो रही है, मेरा फेवरेट आनंद लेने की जगह वही होती है बारिश में, बस कुल्हड़ वाली सौंधी सौंधी खुशबूदार चाय पीता हूँ। वही एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे शहर में बारिश काफी कम हुई है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। एक श्रोता कहते हैं कि फिलहाल तो हमारे जबलपुर में बारिश नहीं हो रही है, गर्मी तपन भी है, ना ही ऐसा कोई बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, सिर्फ विविध भारती का सहारा है जो हमें ठंडी ठंडी फुहार वाले गीत सुना रहा है, जब बारिश होगी तो पकौड़े और अदरक वाली चाय मिलेगी। वही एक श्रोता ने लिखा है कि सावन के महीने में अपनी व्यस्तता बढ़ जाती है क्योंकि भोले भंडारी को खुश भी करना है, घर के ही मंदिर में शिव जी को जलाभि अभिषेक करना, बेलपत्र और फूलों से पूजा करना दैनिक गतिविधियों का अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। साथ ही सोमवार को फलाहार वाला व्रत रखकर तन और मन को डिटॉक्स भी करना होता है। हाथों को हरी चूड़ियों और मेहंदी से सजाना भी सावन के महीने की विशेषता है। उस पर से बारिश की ठंडी फुहारें आसपास के वातावरण को और खुशनुमा बना देती है, बहुत सुंदर।

एक श्रोता ने लिखा है कि सावन के शानदार गीत, आज तो मैं और मेरा प्यार भरा नमस्कार आपको, शानदार सुरीला सफर का कार्यक्रम, बारिश और भी तेज हो रही है मेरे शहर में, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सभी को सावन का मौसम दुख और सुख दोनों का मिलन है। पहले सावन में मायके जाते थे, झूला झूलते थे, सखियों से मिलते थे, अब वो सब नहीं हो पाता है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली, मैंने उनको सिर्फ इस गाने की दो लाइनें लिखी थी कि तेरी दो टकिया नहीं नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए रे, क्या बात है। बस फिर क्या था, उनको पता चला और उन्होंने छुट्टी दे दी और मेरा ये सावन का अनुभव हर साल सावन में याद आता है। वाह, अब तो ना मायके से कोई आता है ना ही कोई बुलाता है, पुरानी यादों को याद करके ये सावन बीत जाता है। यही जिंदगी है ना, जिंदगी में हर पल एक से नहीं होते हैं, कभी खुशी कभी गम होते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन की पहली फुहार में आज काशी नगरी भीग गई है, मौसम बहुत सुहावना हो गया है, जहां बारिश अभी तक नहीं पहुंची थी वहां भी सावन की वर्षा पहुंच चुकी है। बाबा विश्वनाथ जी के से प्रार्थना करती हूँ कि अभी सावन की सुंदर छटा चलती रहे। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि अरे आपने तो मंदाकिनी शब्द के अलग अलग अक्षरों का अर्थ लिख दिया है, बहुत लंबा खत आपने लिखा है, बहुत लंबा संदेश, चलिए फिर कभी इसको पढ़ेंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के इबारत को पढ़कर मालूम हुआ कि सावन के महीने की क्या विशेषता है और सावन के ऊपर आज मधुर और कर्णप्रिय गीत सुनने को मिलने वाले हैं, तो हम इसके लिए आपके साथ सुरीला सफर में चलने को तैयार है। भाई अब तो हम अंतिम सोपान तक पहुंच चुके हैं, तो चलिए सुनते हैं प्रीति सागर की आवाज में, इनका साथ दे रहे हैं भूपेंद्र, फिल्म का नाम है भूमिका।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जो काम इंसान यूं ही नहीं करता वो काम बारिश करवा देती है। भवन की सफाई, पेड़ पौधों को साफ करना, पीने का पानी, पशुओं के चारे की व्यवस्था, ये बरसात ही तो करती है। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि कटक उड़ीसा में सावन आया, आकर भिगो भी गया, बारिश हुई, ऊपर छत्तीसगढ़ में बहुत बारिश हुई, हीराकुंड डैम से पानी भी निष्कासित हो रहा है, नदी नाले पानी से भरे हुए हैं। बहुत दिनों के बाद बारिश आई, लेकिन खुशी के साथ दुख भी दिया, कई जिलों में बाढ़ आने से बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम ऐसे प्रकृति को देखते हैं

तो बड़ा दुख होता है कि हमारे ही लोग इस अतिवृष्टि से कितने परेशान हैं और जानमाल को जब नुकसान होता है तो वाकई मन रो पड़ता है। जी अब तो मिलने मिलाने का वक्त खत्म हो गया है और अब आपको हमें यानी मंदाकिनी जोशी को इजाजत देनी होगी कार्यक्रम सुरीला सफर से। तो हम लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।

0: और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पिछले 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है।
1: आज के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था, वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हुई है और अब शासन राजनीतिक परिवारों के बजाय जनता द्वारा संचालित है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
2: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड। आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी बट नोबडी हैड द विल टू एब्रोगेट इट।
0: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। सड़क, रेल और अन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है, संपर्क व्यवस्था बेहतर हुई है, सरकारी सेवाएं मजबूत हुई हैं और पर्यटन, निवेश तथा सुरक्षा की स्थिति में भी सुधार आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं।
3: अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास हुआ है। नई सुरंगें और सड़कों के चौड़ीकरण से जुड़ी परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसमें चिनाब और अंजीखड रेल पुल शामिल है, के पूरा होने से कश्मीर घाटी तक रेल संपर्क सुनिश्चित हुआ है। जेड मोड टनल ने सोनमर्ग तक हर मौसम में पहुँच सुनिश्चित की है, जबकि जोजिला सुरंग का काम पूरा होने वाला है और ये नैतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर मौसम में पहुंच प्रदान करेगी। वर्ष 2024 में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2,35,00,000 से अधिक रही, जिसमें 65,000 से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 18,000 करोड़ का निवेश हुआ है। 2,200 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं और 26 नए औद्योगिक ढांचे विकसित किए गए हैं। 41,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और लगभग 9,81,000 स्वरोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। इन वर्षों में सुरक्षा की स्थिति में भी काफी सुधार देखने को मिला है। श्रीनगर से इशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है।
4: After a detailed assessment of the evolving
3: परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के विस्तार से समीक्षा करने के बाद मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 5.25 पर ही बरकरार रखने का निर्णय लिया है।
0: रेपो दर वो ब्याज दर है जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत मांग के कारण देश में आर्थिक वृद्धि बनी हुई है और

0: तीसरा दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि हाल में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि रही।
1: हेडलाइन इन्फ्लेशन हैज एज्ड अप।
2: उम्मीद के मुताबिक मुद्रास्फीति आधार से थोड़ी ऊपर चली गई है। हालांकि पहले तिमाही में वास्तविक महंगाई दर अनुमान से थोड़ी कम रही। इससे पता चलता है कि लागत का दबाव कीमतों पर पूरी तरह से नहीं पड़ा है। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह ईंधन और खाद्य वस्तुएं हैं। अब तक कीमतों के दबाव के हर तरफ फैलने के कोई खास संकेत नहीं मिले हैं। कीमती धातुओं को छोड़कर महंगाई दर पहले के अनुमान के मुताबिक ही नियंत्रण में है।
1: As projected earlier.
0: उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में बेहतर आर्थिक प्रदर्शन को देखते हुए आरबीआई ने वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है।
1: रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर दिस ईयर,
2: मौजूदा वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी का अनुमान अब 6.7% है। ये हमारे पिछले अनुमानों से 10 आधार अंक अधिक है। पहली तिमाही में 7%, दूसरी तिमाही में 6.4%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.8%।
1: Q4 at 6.8%।
0: श्री मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: सदन की कार्यवाही फिलहाल अभी जारी है। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की योजना की घोषणा की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विद्यार्थियों ने संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है।
4: राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। छात्रों का कहना है कि उन्हें किसी का इस्तीफा नहीं बल्कि संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द कर राज्य के बाहर से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों से न्यायिक जाँच चाहिए। छात्रों ने सीआईडी जाँच को नाकाफी बताया है। छात्रों के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद सीआईडी की कार्रवाई और तेज हो गई है। सीआईडी ने इस मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार के

0: 6.7% रहने का अनुमान। कहा मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की ईशारानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। हम इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं रवि का संगीत, साहिर लुधियानवी की बोल, मन्ना डे की आवाज, फिल्म का नाम वक्त।

0: क्यों करती हो, हम पे तुम भी मरती हो। बहाने क्यों करती हो, हम पे तुम भी मरती हो। अभी तो नया सांस है, आज हंसी तो कल भी हंसोगी।
1: किशोर कुमार की आवाज में आपने श्रीमान फंटूश का गीत सुना। गीतकार आनंद बख्शी थे और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे।
0: बहाने क्यों करती हो।
1: और ये स्वर है मोहम्मद रफी का, फिल्म का नाम है सहेली। गीत रचना इंदिवर की और धुन कल्याण जी आनंद जी की।

गुस्सा छोड़ो अभी से दिल ना तोड़ो, आज ये गुस्सा छोड़ो अभी से दिल ना तोड़ो, अभी तो नया आजाद है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में है। फिल्म का नाम है रिश्ते नाते। गीत रचना हसरत जयपुरी की है और धुन मदन मोहन की।

कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है दो बदन। शब्दकार शकील बदायूनी है और धुन रवि की है।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर की आवाज है, फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में। इसे कमर जलालाबादी ने लिखा और धुन कल्याण जी आनंद जी ने दी।

0: ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आए हाय
2: और ये है इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, आवाजी मोहम्मद रफी और शारदा की, फिल्म का नाम है गुमनाम।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली आपको भी नमस्कार और जरा माफ कीजिएगा।
2: ममता जी पहले तो आपको नमस्कार, सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भाई माफी किस बात की?
1: बस यही तो मैं इंतजार कर रही थी कि आपने पूछा ही नहीं माफी किस बात की। बस माफी मांग ली, अब कुछ भी गलती हुई हो तो आप माफ कर दीजिए।
2: नहीं भाई ऐसे तो हो नहीं सकता कि आपने कुछ गलती की है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कुछ कारण है इसलिए आप कह रही है।
1: दरअसल ये जो बात है ना इसलिए कह रही हूँ, माफी मांग लेने में कोई बुराई नहीं है।
2: ये तो बहुत
1: है ना, अब चाहे कोई छोटा हो उम्र में चाहे बड़ा हो, अगर आपने कोई गलती की है या आपको ऐसा लगता है कि आपने गलती की है तो माफी मांग लेनी चाहिए, भले ही आपकी गलती ना हो। लेकिन इतनी विनम्रता भी ना हो कि आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको अनायास माफी मांगने का खामियाजा भुगतना पड़े, वो भी नहीं होना चाहिए। तो हम अपने श्रोताओं से आज ये जानना चाहते हैं किन मौकों पर उनको माफी मांगनी पड़ी, क्षमा करना पड़ा, और किन मौकों पर उन्होंने अपने छोटों को क्षमा दी और किन मौकों पर उन्होंने क्षमा किया, तो वो अपने अनुभव साझा करें हमारे श्रोता।
2: बहुत छोटा सा शब्द है पर उसका बहुत गहरा अर्थ है। तो हमारे श्रोता लिख कर भेजे, उन्होंने ये तो बहुत लिख कर भेजा है कि क्षमा कर देना चाहिए क्षमा नहीं करना चाहिए, पर आपके जीवन से जुड़े कुछ अगर अनुभव है तो वो हमसे साझा।
1: अच्छा तो आप बताइए आप किन मौकों पर क्षमा करती
2: हैं? मैं तो बहुत बार मांग लेती हूँ, क्षमा मांग लेती हूँ और क्षमा कर भी देती हूँ, तभी हम जिंदगी को ना बड़े आनंद से गुजार सकते हैं जिंदगी। अगर हम दिल में किसी के प्रति ऐसा गांठ रख के चले ना तो उसमें क्या होता है हमारा भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है।
1: बिल्कुल सही कह रही है। और हम अपने घर में अपने बच्चों को तो रोजाना कुछ न कुछ किसी न किसी बात पे क्षमा करते हैं, अगर क्षमा नहीं करेंगे तो बच्चों के मन में गांठ पड़ जाएगी और वो फिर कैसे सीखेंगे। तो ये हम अपने श्रोताओं से

0: कह रहे हैं कि अपने अनुभव हमें बताएं कि उन्होंने कोई ऐसी यादगार घटना भी हमें संक्षेप में बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, और वो टिप्पणी हम श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। और बताइए और किन
1: किन बातों की। साथ ही एक बहुत ही एक ऐसा मुद्दा है ममता जी जो हर घर घर में होता है, जो माता पिता की लड़ाई में बच्चों पर बुरा असर, यानी इस बात में भी ये है कि पति पत्नी ने भी एक दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए समय समय पर, जब भी जरूरत पड़े सॉरी बोल दिया, क्षमा मांग ली, तो ये काम जो है बहुत अच्छी तरह सुलझ सकता है, क्योंकि माता पिता की लड़ाई से बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, उनका मानसिक जो है ना स्तर बहुत बहुत गिर जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चे,
0: उन पर इस विषय पर भी तनाव बहुत होता है
1: जी।
0: और अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे तो उनकी पढ़ाई पर असर होता है, सबसे ज्यादा उनकी शिक्षा बाधित होती है, क्योंकि वो माता पिता के झगड़ों को मन में कहीं उनके भीतर चलता रहता है, और माता पिता झगड़ के कई बार वो भूल भी जाते हैं, एक हो जाते हैं और कई बार अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं, जैसे दफ्तर में काम कर रहे हैं तो वो लोग अपने दफ्तर के कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन बच्चे के कोमल मन पर उस झगड़े का बहुत गलत असर पड़ता है।
1: स्कूल में भी उनका मन नहीं लगेगा कि देखिए हमारे मम्मी पापा के बीच कैसी लड़ाई हो गई, अंदर ही अंदर वे परेशान रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति किसी भी बच्चे पर ना आए, इस तरह से क्या किया जाए, यानी कि जब भी ऐसे कुछ हो तो बंद कमरे में बातचीत करके सुलह कर देना चाहिए। इस विषय पर भी आप लिखिए कि आप ऐसा करते हैं या फिर आप बिल्कुल इन बातों से दूर रहते हैं।
0: और इसमें भी अपने अनुभव हमारे श्रोता साझा कर सकते हैं, और जो भी टिप्पणी अभी आएगी उन टिप्पणियों को हम उन तक पहुंचाएंगे। और क्षमा के बारे में हमने बता दिया, और साड़ियों का संसार बृहद है, बहुत विराट है
1: जी।
0: और तरह तरह की साड़ियां होती हैं, और महिलाओं की तो खास शौक है पहनने की, लेकिन तोहफे में पाना भी महिलाओं को बड़ा अच्छा लगता है। साड़ी अगर आपने खरीदी तो ठीक है, लेकिन वही साड़ी अगर कोई आपके रिश्तेदार या कोई भाई बहन पिता और दोस्त मित्र पति दे दे खास मौके पर, तो वो जैसे लिख उठता है कि फला मौके पर फला ने ये साड़ी
1: दी थी। तो माहेश्वरी साड़ी जो मध्य प्रदेश की शान है उसके बारे में हम जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, हमारे सखियों ने भी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने शुरू कर दिए हैं, अपने मैसेजेस लिखना शुरू कर दिया है। और व्यंजन यानी हम शब्दों के माध्यम से तो चटनी बनाते ही हैं अगर हम
0: और ये जो मौसम है ना, बारिश का मौसम, इसमें जब भजिए पकौड़े बनते हैं तो उसके साथ चटनी जरूरी होती है। और चटनी ऐसी चीज है कि चाहे पकौड़े के साथ खाइए या पराठे के साथ, पूरी के साथ, दाल चावल के साथ, हर चीज के साथ फिट हो जाती है,
1: वो खाने का जायका बढ़ा देती है,
0: और गाना भी जायका बढ़ाता है हमारे प्रोग्राम का। सुनते हैं ये गाना।

0: हाँ तो सोनाली जी, हम बात कर रहे थे साड़ियों की, और माहेश्वर साड़ी के बारे में हम बताने वाले थे अपनी सखियों को। भारत की हस्तकरघा परंपरा विश्व भर में अपनी उत्कृष्ट और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं अनुपम धरोहरों में माहेश्वरी साड़ी का बहुत बड़ा योगदान है और इसका स्थान भी है। मध्य प्रदेश के नर्मदा तट पर बसे महेश्वर नगर में निर्मित ये साड़ी अपनी हल्की बनावट, आकर्षक किनारे, मनमोहक पल्लू और राजसी गरिमा के लिए जानी जाती है।
1: और ममता जी, ये केवल एक परिधान नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और बुनकरों की अद्भुत कला का जीवंत प्रतीक है। और माहेश्वरी साड़ी का इतिहास लगभग 250 वर्ष पुराना है। 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी महेश्वर में ये स्थापित की थी। उन्होंने गुजरात, मालवा और दक्षिण भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों से कुशल बुनकरों को महेश्वर बुलाकर उन्हें बसाया। उनके संरक्षण में ऐसी साड़ी तैयार की गई जो राज परिवार की गरिमा के अनुरूप होने के साथ साथ हल्की, सुंदर और उपयोगी भी थी।
0: बिल्कुल सही आप कह रही हैं, और तभी से माहेश्वरी साड़ी की परंपरा आगे बढ़ती रही। माहेश्वरी साड़ी हस्तकरघे पर बहुत सावधानी और धैर्य से बुनी जाती है। इसमें सूती और रेशमी धागों का सुंदर संयोजन भी किया जाता है। पहले धागों की रंगाई होती है, फिर उन्हें करघे पर चढ़ाकर पारंपरिक तकनीक से बुनाई की जाती है। एक उत्कृष्ट माहेश्वरी साड़ी तैयार करने में कई दिन और जटिल डिजाइन होने पर कई सप्ताह तक का भी समय लग जाता है।
1: और ममता जी, ये साड़ियां ना वजन में बहुत ज्यादा हल्की और पहनने में आरामदायक होती है। सूती और रेशमी धागों का संतुलित मिश्रण होता है। दोनों ओर से समान दिखाई देने वाली रिवर्सिबल बॉर्डर इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और पल्लू पर सामान्यतः 5 समानांतर धारियां बनाई जाती है और गर्मियों में भी सहजता से पहनी जाती है। सादगी और शाही गरिमा का ये साड़ियां सुंदर मेल है।
0: और ये भी बता दें कि माहेश्वरी साड़ियों के डिजाइन महेश्वर किले, नर्मदा नदी की लहरों, मंदिरों की नक्काशी और प्रकृति से प्रेरित होते हैं। इनमें चटाई, लहरिया, हीरा, ईंट, चमेली, रूपमती, नर्मदा लहर वगैरह वगैरह पारंपरिक पैटर्न बहुत लोकप्रिय हैं।
1: और रंगों की अगर बात की जाए, रंगों में लाल, हरा, बैंगनी, नीला, काला, गुलाबी, सुनहरा, फिरोजी, मैरून, दोहरे रंगों का भी आकर्षक संयोजन देखने को मिलता है। और इसके कई सारे प्रकार हैं, जैसे नीम सिल्क, शुद्ध सिल्क, सूती माहेश्वरी, टिशू माहेश्वरी और कतान माहेश्वरी ये प्रसिद्ध है।
0: और चेक्स और स्ट्रिप डिजाइन वाली साड़ियां भी होती हैं। हर तरह की साड़ी का अपना एक अलग सौंदर्य है और उपयोग भी है। और महेश्वर के हजारों बुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को जीवित रखे हुए हैं। और सोनाली जी, एक बात और है कि इस जो साड़ी की ये परंपरा है, इससे कितने लोगों को रोजगार मुहैया होता है। जो बुनकर होते हैं अपनी कुशलता से जब साड़ी तैयार करते हैं तो उनकी आय का जरिया भी यही होता है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर ये कार्य करते हैं और उनकी मेहनत, धैर्य और सृजनशीलता ही माहेश्वरी साड़ी की वास्तविक पहचान है। ये हस्तशिल्प न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराती बल्कि ये एक उद्योग के रूप में काम करती है। समाज और देश तक इसकी पहुंच है
1: जी। और माहेश्वरी साड़ी को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि इस साड़ी की विशिष्ट पहचान और गुणवत्ता माहेश्वर क्षेत्र से जुड़ी हुई है। GI टैग नकली उत्पादों पर रोक लगाने, बुनकरों के अधिकारों की रक्षा करने और इस पारंपरिक कला को वैश्विक पहचान दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये साड़ियां जो है देश ही नहीं विदेशों में बहुत लोकप्रिय है।

0: विवाह, फिर धार्मिक समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सरकारी आयोजन और औपचारिक अवसरों पर इसे विशेष पसंद किया जाता है। आधुनिक फैशन डिजाइनरों ने भी पारंपरिक डिजाइनों को नए रंगों और शैली के साथ प्रस्तुत कर इसकी लोकप्रियता को और भी बढ़ाया है।
1: महेश्वरी साड़ी केवल रेशम और सूत का ताना बाना नहीं, बल्कि नर्मदा की निर्मल धारा, महेश्वर के किले की भव्यता और बुनकरों के स्वप्नों से बुनी हुई भारतीय संस्कृति की अनुपम चादर है। इसे ओढ़ना, इसे पहनना मानो इतिहास, परंपरा और सौंदर्य को एक साथ आत्मसात करना है।
0: और माहेश्वरी साड़ी भारतीय हथकरघा परंपरा की एक अमूल्य धरोहर है। इसमें इतिहास की गरिमा है, संस्कृति की सुगंध है और बुनकरों के श्रम का अनुपम सौंदर्य समाहित है। और ये साड़ी हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के साथ साथ स्वदेशी हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने की प्रेरणा भी देती है।
1: और हम इस समय प्रेरणा पा रहे हैं ये गाना सुनवाने के लिए। सुनते हैं ये गाना, फिर और बातें करते हैं।

0: भाई सोनाली जी, एक बात बताइए कि लड़ाई झगड़े का असर तो मन पर होता है, पर आप बताइए कि जरा आप जब झगड़ कराती हैं, झगड़ लेती हैं अपने पतिदेव से, तो उसका असर कितनी देर तक रहता है?
1: उसका असर तो बहुत देर तक रहता है ममता जी, पर भूलने के सिवाय कोई चारा नहीं होता है। पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके साथ कैसे होता
0: मैं तो
1: है?
0: झगड़ती नहीं।
1: ऐसा नहीं हो सकता
0: नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे कोई पति पत्नी नहीं होते कि जिनके बीच लड़ाई नहीं होती
0: हम तो पति पत्नी के बीच तो झगड़ते ही हैं सोनाली जी। हमने भाई बहनों में बहुत झगड़े किए हैं, और परिवार में कौन ऐसा है जिससे हमारा झगड़ा नहीं हुआ है। लेकिन वो झगड़ा ना बहुत क्षण के लिए होता है, और थोड़ी देर बाद झगड़ा बिल्कुल खत्म हो जाता है, भूल जाते हैं। फिर सोचते हैं कि झगड़ा किस बात पे हुआ था। जैसे जब दो बहनें हम झगड़ा करते थे, तो बाद में सोचते थे कि आखिर झगड़े का मुद्दा क्या था। घर वाले पूछते थे बात किस बात, झगड़ा किससे शुरू कैसे हुआ। कभी बैठने की जगह को लेकर कि हम यहाँ बैठेंगे, कभी सोने को लेकर कि यहाँ हम सोएंगे और इस बिस्तर पे तुम, तो पहले हम जाएंगे या पहले हम ये कितना

0: आप पहले हम पढ़ेंगे, ये मैगजीन पहले हम पढ़ेंगे, इस पर हमारे भाई बहनों में ज्यादा झगड़ा हुआ। और तो और रेडियो सुनने के लिए कि कोई तेज आवाज में सुनना चाहता है, कोई धीमी आवाज में, तो उस पर बहुत जम के झगड़े हुए। तो ये जो छोटे छोटे झगड़े हैं ना, ये कभी कभी यादगार हो जाते हैं, ये प्रेमिल झगड़े हैं, स्नेहिल झगड़े।
1: यानी ये घर घर की कहानी होती है, पर भले ही झगड़े में मतभेद हो जाए पर मनभेद नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन हमारे श्रोताओं ने बहुत सफाई से, प्यार से इस बात को छुपा लिया है, अपनी बात उजागर नहीं की। अब हमने
1: डर गए होंगे ना
0: कि पत्नी से डांट खानी पड़ेगी,
1: क्यों ना आपने वहां लिख दिया, सबको पता चल गई घर की बात।
0: तो हमने तो इसलिए बता दिया और आपने भी बता दिया कि हम तो झगड़ते हैं बाकायदा।
1: ये तो बहुत ही तो सामान्य सी बात है।
0: हाँ, लेकिन झगड़े का असर जब घर पर होता है, बच्चों पर पड़ता है, तब फिर आपको सचेत हो जाना चाहिए। वहां पर झगड़े पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, लड़ाई झगड़ों का प्रभाव तो सभी पर पड़ता है, फिर बच्चों का हृदय तो बहुत कोमल होता है, ऐसे माहौल में वे हमेशा डरे और असुरक्षित महसूस करते हैं। घरेलू तनाव के कारण बच्चे डिप्रेशन, अत्यधिक चिंता और अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, उनका मानसिक विकास रुक जाता है। ऐसे बच्चे बड़े होकर हिंसक और दूसरों के साथ चिड़चिड़ा व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि वे अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते।
1: एक हमारे साथी ने यह भी लिखा है ममता जी, कि अभिभावकों की लड़ाई में बच्चों पर असर, मतभेद तो सभी परिवार में चलते ही रहते, लेकिन मन का भेद कभी नहीं होना चाहिए। 31 तारीख को मेरी सहेली के बेटे बहू ने तलाक लिया। नन्नी सी बेटी 4 साल की है, उसे माता पिता दोनों चाहिए, वीडियो कॉल करती है और पापा के पास जाने की जिद भी करती है। माता पिता तो अपने निजी कारण से अलग हो ही गए। सोचती हूँ कि अब उस बच्चे की जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आएंगे और वे उन सबको किस तरह लगी। इन्हीं बात कितनी, यानी कह लीजिए कि भावनात्मक रूप से वो बच्ची जो है थोड़ी सी परेशान भी होगी, कि वो पापा के पास भी जाना चाहती है और मम्मी के पास भी रहना चाहती है।
0: बिल्कुल।
1: पर किसी कारणवश दो अलग अलग हो गए हैं, पर ये विचार करके ही हमें तकलीफ हो रही है, तो उस बच्ची पर क्या गुजर रही होगी ये हम सोच भी नहीं सकते।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और ये हमारी जो श्रोता है इन्होंने बिल्कुल सटीक बात कही है। ऐसे अखबार में एक घटना हमने पढ़ी थी, जिसमें निचोड़ ये था उस घटना का, कि पति पत्नी ने तलाक लिया और कोर्ट से बाहर आ रहे हैं पति पत्नी, और छोटी बच्ची है वो जिद कर रही है अपने माता पिता के पास जाने के लिए। पिता उसे रखने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसका लालन पालन करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, उसकी मेरी नौकरी है। और माँ ये कह रही है कि इसका भरण पोषण मैं कैसे करूंगी, क्योंकि अभी तक उसको गुजारा भत्ता नहीं मिला है और वो कहां से इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्च वहन करेगी। तो दोनों अलग अलग दिशाओं में खड़े हैं और बच्ची जार जार आंसू रो रही है कि वो कहां जाए, उसे चाहिए माँ का साथ, पिता का साथ। तो ये जो स्थिति होती है और दयनीय स्थिति है, ऐसी नौबत आने नहीं देना चाहिए। कई बार माता पिता के बीच जो टकराव होता है, अब हम सभी ये भी कहते हैं कि जब घर में तनाव ज्यादा हो जाए, लड़ाई झगड़े इस हद तक पहुंच जाए, तो अलग होना बेहतर होता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं तो ये नहीं सोचते कि इस अलगाव का आने वाली पीढ़ी पर क्या असर होने वाला है। बच्चा कैसे एडजस्ट करेगा, बच्चा किसके पास जाना चाहेगा, क्यों वो माँ के पास अकेले रहना चाहेगा, क्यों वो पिता के पास अकेले रहना चाहेगा। उसे तो दोनों चाहिए ना, उसे माता पिता का घर भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, और माता पिता के घर मतलब नानी का घर भी चाहिए, दादी का घर भी चाहिए। तो दोनों जब छूटते हैं, दो में से कोई छूटता है, तो बच्चे के कोमल मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि बाल मन बहुत कोमल होता है, माता पिता क्या किसी भी लड़ाई का असर उनके मन पर बहुत ज्यादा होता है। वही एक साथी लिखते हैं कि माता पिता के बीच होने वाले लगातार झगड़ों और मन मुटाव से बच्चों के कोमल मन पर बहुत गहरा और नकारात्मक असर पड़ता है। इससे बच्चों में असुरक्षा की भावना, मानसिक तनाव और पढ़ाई में एकाग्रता की कमी जैसी समस्याएं पैदा होने लगती है, मानसिक और भावनात्मक असर डालती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों पर ही पड़ता है, माता पिता पर भी इसका असर पड़ता है। हमारे परिवार में ऐसा हुआ है। ये तो अच्छा है कि परिवार के लोगों को संभालने से बहुत कुछ अनहोनी नहीं हो सका, पर एक परिवार का टूटना तो दुखद ही रहा।
0: बिल्कुल सही है, और कभी भी टूटना या तोड़ना अच्छा नहीं होता है, तो चीजों को टूटने से बचाना चाहिए। चीजें भी टूटती हैं तो भी बुरा ही लगता है, लेकिन कई बार स्थिति बहुत बिगड़ जाती है, तब उस ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जब नियमित लगातार घर में हिंसा होने लगती है, शारीरिक हिंसा और पटक फोड़ होने लगता है, बर्तन पटकना, ये सब जब स्थिति जरूरत से आगे बढ़ जाती है, तब फिर ऐसे में अलगाव बेहतर होता है। लेकिन यहाँ एक चीज और है, अब जमाना बदल गया है, अब हमारे पास बहुत सारी

0: संस्थाएं इन चीजों के, लड़ाई झगड़ों के लिए काउंसलिंग होता है, पति पत्नी के अलग काउंसलिंग होती है, और काउंसलर्स मतलब दोनों के बातों को सीक्रेट रखते हैं, और इस मामले में आपके पास सर्च करने के लिए जरिया है बहुत सारा, लोगों से पूछ सकते हैं, अखबार है, गूगल है, जहां से आप सर्च कर सकते हैं। तो झगड़ों को अवॉइड करें, चाहे उसके लिए आपको जो करना हो, काउंसलिंग करना हो, सलाह लेना हो, दोस्तों मित्रों या परिवार वालों से सलाह लेनी चाहिए, उनको बीच में लाना चाहिए ताकि आपके झगड़े कम हो, क्योंकि उसका असर निश्चित रूप से बच्चों पर पड़ता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि माता पिता का घर बच्चों के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होती है, जब इस सुरक्षित जगह पर ही लगातार तनाव और कलह बनी रहे तो बच्चे का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि जिन घर में रोज झगड़े होते हैं वहां के बच्चों में डिप्रेशन, एंजाइटी की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अभिभावकों को यह समझना होगा कि बच्चों के सामने लड़ना उनके बचपन को छीनने जैसा है, यदि मतभेद हो भी तो उन्हें बच्चों के सामने लाकर बंद कमरे में शांति से सुलझाना चाहिए। और बच्चों की सिर्फ यही इतनी नहीं होती है खामियां, आगे चलकर बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, एकांतवासी हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते, अंतर्मुखी हो जाते हैं, या फिर जरूरत से ज्यादा हिंसक भी हो जाते हैं। और सोनाली जी, हम आपको बताएं कि एक कपल के बारे में उन्होंने हमें बताया कि उनके बीच झगड़े होते थे, तो जब झगड़े शुरू हो तो कमरा बंद कर लेते थे और म्यूजिक चला देते थे, रेडियो या कोई भी गाना, ताकि झगड़ने की आवाज बाहर ना जाए, और फिर जम के झगड़ा करके फिर बाहर आते थे। तो ये भी एक तरीका है झगड़ने का,
1: यानी बच्चों को पता ही नहीं चला कि अंदर क्या हुआ, अंदर तो डांस कर रहे थे या गाना गा रहे थे मम्मी पापा। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है ना, हम जो जैसा व्यवहार करते हैं बच्चे वैसे ही उसका अनुसरण करते हैं, तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि बच्चों के सामने बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े ना हो।
0: जब झगड़े की नौबत आए तो एक प्यारा सा गाना गुनगुना लेना चाहिए एक दूसरे के लिए, तो झगड़े टल तो जाते हैं। हाँ। सुनते हैं ये गाना।

0: विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली।
1: ममता जी, आपने कहा था ना कि रेडियो धीमा सुनना है या तेज आवाज में सुनना है, इस पर से आपके बीच में लड़ाई होती थी।
0: हमारी बहनों, दो बहनों की बहुत लड़ाई होती थी।
1: तो ऐसे ही इसी तरह का एक कमेंट हमारी सखी ने लिखा, ये कहती कि रेडियो तेज सुनना, इस पर हमारा आज भी झगड़ा होता है, पर वो तो मस्ती में फिर हम रेडियो लेकर दूसरी जगह चले जाते हैं और थोड़ी देर के लिए बात नहीं करते, फिर वही मस्ती वाली बात है। कितनी अच्छी बात है।
0: बिल्कुल। और ये भी होता था कि मतलब होता होगा हमारे श्रोताओं के बीच कि ये रेडियो तो तब उस समय एक ही रेडियो हुआ करता था।
1: हाँ।
0: अब तो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं जो कई कई सेट होते हैं घरों में, आप एक किचन में सुन लो, एक दूसरे कमरे में,
1: मोबाइल से भी सुनते हैं,
0: मोबाइल पे भी सुन लेते हैं, क्योंकि हमारे श्रोता बताते रहते हैं। हमारे तो एक श्रोता है जिन्होंने बताया था कि उनके पास 11 रेडियो सेट है और वो सब बड़े वाले रेडियो सेट। तो अभी शौक भी है, अगर रेडियो से इतना प्यार है तो लोग इस तरह से रेडियो रखते हैं। बहरहाल, बात लड़ाई झगड़े की चल रही थी और तकरार चल रही थी। तो एक श्रोता ने लिखा है कि लेखिका शिवानी जी के उपन्यास में पढ़ी थी मैंने, गृहस्थी में लड़ाई झगड़ा होता है उतना ही हमारे प्यार की दीवार मजबूत होती है, मतलब जितनी लड़ाई हो उतनी दीवार मजबूत होती है, इसलिए पति से खूब लड़िए थोड़ी देर के लिए। वो कहते हैं ना कि मियां बीबी के झगड़ा दूध में पड़ी मलाई के समान होना चाहिए और मलाई तुरंत हट जानी चाहिए।
1: तो यानी लड़ाई झगड़ा तब होगा

0: ना, जब हम आपस में बातचीत करेंगे, हम अगर हम किसी से हेल्प लेंगे, हम किसी की मदद करेंगे, तभी तो बातचीत करेंगे। यानी उस बातचीत के पीछे घर में जो है ना, पति पत्नी एक दूसरे की मदद भी करेंगे, तो फिर थोड़ी बहुत मनमुटाव होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। पर ये मनमुटाव बहुत बड़ी लड़ाई में परिवर्तित ना हो जाए और इससे बच्चों पर बहुत बुरा असर ना पड़े, इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। और एक साथी ने हमारे लिखा है कि लड़ाई किसी के भी बीच हो, चाहे वो बच्चे या अभिभावक हो या हमारे पड़ोसी हो, सभी पर बुरा असर पड़ता है। लगातार हो रहे झगड़े का मानसिक और भावनात्मक असर बच्चों पर ज्यादा पड़ता है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे जरूर होते हैं, लेकिन ऐसे माहौल में मन के कच्चे बनने में जरा देर नहीं लगती। घर के माहौल को देख स्कूल में या बाहर किसी के साथ भी आक्रामक बनने की संभावना बढ़ जाती है। इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ने लगता है, उनका ग्रेड कम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए।
1: अब एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे बड़ी बात पति पत्नी को झगड़ना ही क्यों है। अब ये तो सवाल बहुत बड़ा है, क्यों झगड़ना है, मुद्दा क्या होता है?
0: जानबूझ के कोई लड़ता नहीं
1: मुद्दे तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, घरेलू झगड़े तो बहुत ही छोटे छोटी बातों पर, कि तुमने ऐसा कहा, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, अरे तुमने मुझे इस बात के लिए याद नहीं दिलाया, देखो ये तौलिया यहाँ पर रख दी, चादर गीली तौलिया रख दी,
0: फिर सब्जी लाने के लिए बोला था तुमने एक ही तरह की सब्जियां लेके आ गए, सारी हरी वाली हरी पत्तेदार सब्जी लेके आ गए, अभी मुझे साफ करने के लिए टाइम नहीं है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, लड़ने के लिए कोई
1: खास बड़ा कारण नहीं होता, बहुत छोटे कारण होते हैं जिससे लड़ाई झगड़े होते हैं, और पति पत्नी के बीच, या फिर कई बार जब व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है तो बड़े झगड़े भी होते हैं, तो दीवार खड़ी हो जाती है। मान लीजिए कई बार संबंधों की बात आती है, संबंधों में दरार जब पैदा होती है, तो फिर उन झगड़ों को बचाना ही बेहतर होता है। और वो कहा भी जाता है ना कि बच्चों पर जो प्रभाव पड़ता है, बच्चे तो भावनात्मक रूप से इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि कई बच्चों का स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है और पढ़ाई ऐसी उनकी चौपट हो जाती है कि वो फिर आगे उनका करियर ही नहीं बन पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?
0: बस हमें सामंजस्य रखना चाहिए रिश्ते के बीच में, कि भाई बहुत ज्यादा उसे किसी भी चीज को ना बहुत अधिक हम महत्व देते हैं ना, कि वही बात ताने मारना, बार बार आलोचना करना।
1: वैसे एक बात बताइए सोनाली जी, जब आपके पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है तो आप क्या करती हैं, कैसे निपटारा करती हैं?
0: भाई मैं तो ऐसे करती हूँ, पैर में चप्पल पहनती हूँ, निकल जाती हूँ।
1: पति महोदय सुन रहे होंगे तो फिर मुझे लगता है कि ये भी एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़ी देर बाद एक दूसरे से जिसने जो भी सोचे कि हम समझौता कर ले, एक चाय का ऑफर, एक कॉफी का ऑफर, कुछ खाने के लिए, चाय पीनी है क्या,
0: मैं बना रहा हूँ तुम पियोगी क्या,
1: हाँ ये वाला, उसके बाद मुझे लगता है कि झगड़े खत्म हो जाते हैं। या कोई मीठी सी चीज रखी है घर में, तो मैं तो ये खाने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, दोनों को करना चाहिए, तो आपको भी खाना है, या फिर चलो यहाँ घूमना चाहते हैं, चलना है क्या तुम्हें मॉर्निंग, मतलब सुबह की सैर के लिए, शाम को घूमने, या चलो पिक्चर देखने चलते हैं।
0: अरे बहुत सारे हैं उसके, तो बहुत सारे की साड़ी ला दी, गिफ्ट ला दी, चलिए ये साड़ी खरीदना
1: तुम्हारे लिए ले आए,
0: या फिर क्षमा कर देना सबसे जरूरी बात।
1: लेकिन वहाँ पर ईगो आ जाता है ना, बीच में जो अहम अहम नाम की दीवार है,
0: बहुत मोटी दीवार होती है
1: वो ऐसा करने नहीं देती है। चाय बनाने तो जा रहे, मन कर रहा है कि पूछ लेते हैं, नहीं नहीं इसने तो मुझे बहुत बुरा बुरा बोला था, नहीं पूछते हैं, छोड़ो
0: आज तो पूछूंगा ही नहीं, आज तो पूछूंगी ही नहीं, आज तो कुछ भी हो जाए मैं तो बात करने ही नहीं वाली।
1: तो सबसे जरूरी है ये जो अहम की दीवार है इसे तोड़ देना। और हमारे लिए इस समय क्या जरूरी है,
0: गाना सुनना,
1: सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को।

0: माफ करिए सोनाली जी, जरा कमेंट्स जो पढ़ रही है ना, धीरे धीरे चुपके चुपके जरा जोर से पढ़ के सुनाइए।
1: एक हमारी सखी ने लिखा है कि भैया,
0: अरे मैंने आपसे माफी मांगी, आपने कुछ कहा ही नहीं।
1: ममता जी
0: ये होता है माफी का असर कि इतनी खिलखिलाहट खिल जाती है
1: और इतने प्यारे अंदाज में कोई बोलेगा ना तो
0: ये दिल आ जाता है क्या लिखा है
1: एक हमारे सखी ने कहा है कि जो है ना, ये क्षमा करने का यानी ये कहने का कि भाई मैं चाय बनाऊं क्या, नहीं आपने जो बोला था तो इसमें ना मन में होता है कि ऐसा बोल दे कि चलो मैं चाय पर मन, वो जो दिल की बात है ना, जुबा तक ही नहीं आती है।
0: हाँ भाई, अहम की दीवार जो होती है ना, तो उस अहम की दीवार को तोड़ना है और जब वो टूट जाएगा तो ये आसान हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आज हम लोगों की बातों से जितने झगड़े हुए होंगे सुलट के जाएंगे,
1: वो बिल्कुल सुलझने वाले हैं
0: शाम तक चाय के साथ।
1: कोई तो भी चाय बनाएगा, कोई पकोड़े बनाएगा, है ना।
0: हाँ बिल्कुल, और कोई चटनी भी बनाएगा। अभी चटनी की रेसिपी भी बता,
1: बहुत सारी रेसिपीज आई है हमारे, बहुत सारी सखियों ने अलग अलग तरह की रेसिपीज लिख कर भेजी, जो हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी अच्छी अच्छी चटनियां भी बन सकती है। शब्दों की चटनी बहुत बनी है आज।
0: लेकिन क्षमा के बारे में हमारे श्रोताओं ने जो लिखा वो भी हम एक एक करके पहुंचा देते हैं उन तक। एक हमारी सखी है जो नियमित रूप से लिखती है, इन्होंने लिखा है कि क्षमा के धरातल पर दो व्यक्तित्व उभरते हैं, एक आप और एक सामने वाला। अक्सर हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, गलती दूसरे पक्ष की ही मानते हैं, इसलिए क्षमा नहीं करना चाहते। हो सकता है हमें भी समय-समय पर ग्लानि की अनुभूति होती हो, लेकिन हमारा अहंकार इस तथ्य को उजागर होने से रोक देता है। हमारे घाव हरे के हरे रहते हैं और इसका दर्द भी हम यदाकदा महसूस करते हैं। सामने वाला भी कभी कभी सोचता होगा कि हम क्षमा मांगे, ये द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। क्षमा इस द्वंद्व का निराकरण कर देती है, रिश्ता बच जाता है और दोनों फिर से मित्र बन जाते हैं।
1: क्या बात है। एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी, क्षमा मांगने और क्षमा करने में दोनों में ही सुख है। कभी गलती हो भी जाए तो क्षमा याचना में अपनी नम्रता ही रहती है और रिश्ते मजबूत रहते हैं। उससे भी बढ़कर है क्षमा कर देना। कभी कभी क्षमा करने में ज्यादा जोर आता है, क्षमा मांगने से ज्यादा हिम्मत चाहिए क्षमा करने के लिए। पर यकीनन क्षमा करने में स्वयं को बहुत हल्कापन हो जाता है और बड़े भारी मानसिक बोझ से हम बरी हो जाते हैं। हमने इसको खुद आजमाया है। क्या बात है।
0: कई बार क्षमा मांगकर दुख भी होता है, अगर गलत बात के लिए क्षमा मांगनी पड़े, जैसे कई बार जबरदस्ती आपको माफी मांगनी पड़ जाती है दबाव के चलते, परिवार में, समाज में, दफ्तर में या कहीं ऐसी सार्वजनिक स्थल पर आपको जबरदस्ती सॉरी कहना पड़ता है, तो वहाँ आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, आत्मसम्मान वहाँ जा जाता है।

0: सोनाली जी, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि कभी कभी बात बहुत छोटी होती है और हम ये सोचते हैं कि वो माफी माफी मांगे, और वो सोचते हैं पहले हम बोले, पर किसी को बढ़कर बात कर तो लेनी चाहिए।
1: यही तो
0: और
1: बात आपने कही थी ममता जी, कि उसके बीच में अहंकार की मोटी सी दीवार होती है, पर बात कर वो दीवार को तोड़ देना चाहिए।
0: बिल्कुल। और एक पल आपका आत्मसम्मान चोटिल होता है, लेकिन जैसे ही झगड़े खत्म होते हैं एकदम नॉर्मल सा हो जाता है माहौल। तो इसलिए वो नॉर्मल कर लेने में ही भलाई है।
1: सभी
0: अगर
1: की और खासकर बच्चों की भलाई
0: हाँ
1: है।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता के कई श्रोता आज लिख रहे हैं कि आपका ये जो डिस्कशन है प्रोग्राम में वो बहुत अच्छा है, और जो विषय आपने चुना है बहुत अच्छा है, ऐसा लिखा है।
1: और एक
0: और
1: साथी ने लिखा है कि हमारी भी लड़ाई खत्म हो गई है और अब
0: अच्छा,
1: हम चाय पीने वाले
0: क्या बात है
1: हैं।
0: भाई, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। और सोनाली, हमारे हमारा तो उद्देश्य यही होता है कि हमारी बात दूर तक पहुंचे और देर तक असर करे। तो अगर किसी श्रोता ने ये लिखा है तो हम सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आप में से किसी से झगड़ा हुआ है, अनबन हुई है, तो बस एक प्याला चाय बनाइए एक दूसरे के लिए,
1: मिटा
0: और
1: दीजिए
0: हाँ
1: दूरी।
0: माफी मांगिए और
1: जी
0: खत्म कर दीजिए झगड़ा।
1: जी
0: और
1: एक अब चटनी की ओर बढ़े,
0: हाँ, चटनी भी बना सकते हैं।
1: अमरूद की चटनी। इसके लिए एक मध्यम आकार का अमरूद है पका हुआ, 1 कप धनिया, 2-3 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, स्वादानुसार सफेद नमक, 1 नींबू का रस और 2-3 चम्मच पानी। चटनी बनाने की विधि, अमरूद को अच्छे से धोकर पोंछ ले, इसके आगे पीछे का हिस्सा काट दे, अमरूद के छोटे छोटे टुकड़े करें और इसके कड़े बीज बाहर निकाल कर रख दे। मिक्सी के जार में कटे हुए अमरूद, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक डालें। अब इसमें जीरा पाउडर, काला नमक, सफेद नमक और नींबू का रस मिलाएं और जरूरत के अनुसार 2-3 चम्मच पानी डालकर इसे दरदरा या अपने पसंद अनुसार पीस लें, और आपकी स्वादिष्ट और चटपटी अमरूद की चटनी तैयार है। इसे पराठे या भोजन के साथ परोसे।
0: क्या बात है भाई, श्रोता हमारे ये आजमाएंगे। अब एक चटनी की रेसिपी बहुत लंबी सी लिखी है तो कहने को चटनी जो बहुत छोटे छोटी मात्रा में परोसी जाती है, लेकिन रेसिपी बहुत लंबी है। देखते हैं क्या लिखा है। तिल और सूखे धने की चटनी। ये चटनी मेरी नानी बनाया करती थी। सामग्री इस तरह से है कि सफेद तिल आधा कप, साबुत धनिया 2 बड़े चम्मच, सूखी लाल मिर्च 4 से 5, लहसुन की कलियां और जीरा 1 छोटा चम्मच, कड़ी पत्ता और हींग 1 चुटकी, नमक स्वाद के अनुसार। बनाने की विधि, एक भारी कढ़ाई में तिल को धीमी आंच पर हल्का चटकने तक भून ले, इसे एक प्लेट में निकाल लें। उसी कढ़ाई में साबुत धनिया, जीरा, सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता डालें। इन्हें धीमी आंच पर तब तक भूनें जब तक कि मसालों से अच्छी खुशबू ना आने लगे। इन्हें भी तिल वाली प्लेट में निकाल लें। अब लहसुन को सूखा भून लें, सारी सामग्री को ठंडा होने दें, फिर इसमें नमक हींग डालकर दरदरा पीस लें। स्वादिष्ट चटनी तैयार है। ये काफी समय तक खराब नहीं होती और इसे आप बाजरे या मक्के की रोटी, थेपला या गरम पराठे के साथ खा सकते हैं।
1: एक सखी ने करौंदे की चटनी लिखकर भेजी है कि करौंदे को काटकर उसके बीज निकाल दीजिए, उसमें लहसुन, हरी मिर्च डालकर पीस ले, ऊपर से थोड़ा सरसों का तेल मिला दे, स्वादिष्ट चटनी तैयार होती है। और कदम्ब को काटकर सूखी भुनी लाल मिर्च, भुना जीरा, धनिया, काला नमक और थोड़ा गुड़ के साथ पीस ले, इसमें लहसुन नहीं डालते, आपकी इच्छा हो तो आप डाल दे। ये खट्टी मीठी चटनी रोटी और पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। करौंदी की चटनी में आप धनिया की पत्ती डाल सकते हैं, पर बरसात के दिनों में हम पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग कम करते हैं। करौंदा लहसुन मिर्च के साथ थोड़ा मोटा मोटा पीसा जाता है। ज्यादातर लोग इसे पकाए हुए भुट्टे के साथ खाते हैं। और एक ने लिखा है कि चटनी बोलते ही मुंह में पानी आ जाता है। चटनी खाने में आजकल प्रमुख है। चटनी कई प्रकार की बनाई जाती है। टमाटर की, हरी मिर्च, लहसुन की चटनी बहुत स्वादिष्ट बनती है। वैसे चटनी पुदीने की बनती है। धनिया, हरी मिर्च, थोड़ी अदरक, टमाटर, लहसुन सबको मिलाकर बारीक काटकर मिक्सी में पीस लिए, चटनी तैयार होगी। गरम गरम पराठे या रोटी के साथ खाओ तो बहुत मजा आएगा। सब्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब जब भी सब्जी

0: से बोर हो जाओ, घर में चटनी बना लो, मजा आ जाएगा।
1: क्या बात है। तो आज सोनाली जी, जो आज ये तकरार वाली चाय बनेगी उसके साथ थोड़े पकौड़े और ये चटनी,
0: चटनी है ना, क्या बात जो है। तो ये ऐसी तकरार बार बार होनी चाहिए
1: कि उसके बाद चाय पकौड़े मिले
0: मिल जाए।
1: तो चलिए अब प्रोग्राम का आखिरी गाना सुनते हैं।
2: आपको हमारी पसंद लौट आई।

0: भाई इस प्रोग्राम से जाने का मन कभी नहीं करता है और लगता है कि प्रोग्राम का समय कम पड़ गया है।
1: मुझे लगता है
0: और
1: श्रोताओं का भी यही हाल होगा, है ना?
0: उन्हीं की बात पे कह रही हूँ क्योंकि वही लिख रहे हैं कि जल्दी से बीत जाता है ये एक घंटा। हमारे लिए भी ऐसा ही एहसास होता है, लेकिन अब बिल्कुल वक्त नहीं कि बोले बतियाएं या गाना सुनवाए। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं लेखक, निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत।
1: आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ आलोक शर्मा मौजूद हैं। आलोक, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद यूनुस भाई, यहाँ आना अपने आप में एक सम्मान की बात है। विविध भारती में, जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं, और बहुत कम लोगों को पता है कि मैंने विविध भारती में बतौर आपातकालीन उद्घोषक तीन रातें। असल में उन दिनों जब हम लोग वाणी कोर्स किया करते थे, तो शुरुआत में जो आपातकालीन उद्घोषक होते थे उनको रात की ड्यूटी मिलती थी।
1: बिल्कुल,
2: तो तीन रातें मैंने
1: ओवरनाइट स्टूडियो
2: में बिताई हैं।
1: सही है। लेकिन चूंकि बचपन को याद किया, तो बचपन जो है आलोक आपका, वो कॉमिक से जुड़ा हुआ है, ये चस्का कहां से लगा था?
2: बचपन बड़ा मजेदार है मेरा। बचपन असल में कॉमिक्स और रेडियो दोनों से जुड़ा हुआ था।
1: बिल्कुल।
2: तो क्योंकि हम एक संयुक्त परिवार में रहते थे, और मेरी जो माता जी हैं उनको रसोई संभालनी पड़ती थी, दुनिया भर के मेहमान होते थे घर में, तो सबको संभालना पड़ता था। और मेरे ख्याल से मैं शायद 5 या 6 महीने का रहा हूँगा, तो एक छोटा रेडियो था, वो मेरे बगल में वो चला दिया करती थी, और मैं वो रेडियो सुन के मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे आसपास है। तो मेरे ख्याल से रेडियो मेरे जीवन में पहले आया, फिर कॉमिक्स आई मेरे जीवन में। कॉमिक्स इस वजह से आई कि माता जी को कॉमिक्स भी बहुत पसंद थी।
1: अच्छा।
2: हाँ, वो इंद्रजाल कॉमिक्स बहुत पढ़ा करती थी, फैंटम की बहुत बड़ी फैन थी, तो उनको फैंटम पसंद था, उनके पास अपना कलेक्शन था, तो ये कलेक्शन के साथ ही मैं बड़ा हुआ। और इसके साथ घर में ननिहाल में बहुत कॉमिक्स थी, तो जब भी हम ननिहाल जाते थे, मैं जो भी 2-3 साल का रहा हूँगा, तो कॉमिक्स के जो किरदार थे वो मुझे तब से पता थे। चाचा चौधरी, बिल्लू पिंकी, फैंटम जिसको वेताल बोलते थे उस समय में,
1: बिल्कुल,
2: मैंड्रेक, फ्लैश गॉर्डन, बहादुर, तो इन सबके साथ मैं बड़ा हुआ एक तरीके से कह सकते हैं।
1: बिल्कुल, ये वो दौर था जब कॉमिक्स किराए पर भी मिल जाती थी और दोस्तों से अदला बदली करके पढ़ी जा सकती थी।
2: वो दौर मेरे जीवन में थोड़ा बाद में आया, क्योंकि मेरे ननिहाल में इतनी किताबें थी कि मुझे किराए पे
1: बाहर
2: से लेने जाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उस समय में बाल पत्रिकाएं भी बहुत होती थी, पराग, नंदन, चंदा मामा, गुड़िया,
1: बाल भारती,
2: राजा भैया, कई किताबें,
1: ढेर।
2: और पराग तो मैं अभी भी कहता हूँ कि पराग का बंद होना मेरे ख्याल से हमारी जो पीढ़ी के साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ है। पराग, धर्मयुग, जो वो सारी किताबें आ रही थी, तो ये सारी किताबें जो साप्ताहिक थी वो हफ्ते के हफ्ते ननिहाल आती थी। इंद्रजाल कॉमिक्स मेरे ख्याल से पाक्षिक, और पाक्षिक के बाद साप्ताहिक हो गई थी, मासिक किताबें आ रही थी, तो किताबों का एक पूरा पुलंदा था वहां पे, जब भी जाओ तो सब मिल जाता था। और मेरे नाना जी डॉक्टर थे, मगर वहां एक आजादी थी उस घर में, तो ऐसा नहीं कि फिल्मी पत्रिकाओं को नीची निगाह से देखा जाए, तो वहां मायापुरी भी थी, वहां माधुरी भी थी, वहां फिल्मफेयर भी थी, हर तरह की किताबें थी, और उन किताबों के बीच मेरा बचपन गुजरा। तो जो मुझे पसंद आती थी मैं वहां से उठा के ले आता था मेरे पास, और मैंने पढ़ना सीखना और कॉमिक्स पढ़ना सीखना दोनों मेरा एक साथ हो रहा था, तो शिक्षा और कॉमिक्स दोनों साथ में चल रही थी।
1: बिल्कुल। तो ये जो कॉमिक्स का चस्का है, इसका सबसे मजेदार बात यह है कि घर पर कोई विरोध नहीं था।
2: पूरा ये नहीं कहूंगा कि पूरा विरोध नहीं था,

0: क्योंकि थोड़ा होता है ना कि आप जुनूनी पाठक बन जाते हैं टाइम, फिर आप खाना पीना छोड़ के पढ़ने लगते हैं, सो बुक छोड़ के पढ़ने लगते हैं,
1: कोर्स की किताब के अंदर
0: कोर्स की किताब के अंदर कॉमिक्स रख के पढ़ने लगते हैं। तो ये तो हुआ और ये इस हद तक चला गया वो जुनून के, फिर तो घर पे थोड़ा विरोध होना स्वाभाविक था क्योंकि फिर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं लगे हैं। तो ये एक मैं कहूंगा कि बाकी दुनिया में अगर ये 100% हो रहा था तो मेरे साथ 30% हो रहा था, मगर हो रहा था
1: जरूरी तौर पे,
0: हाँ जरूरी तौर पे हो रहा था कि और कुछ कर ही नहीं रहा है, सिर्फ कॉमिक्स पढ़ रहा है पूरे समय। तो ये हुआ, मगर बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत ज्यादा विरोध नहीं था।
1: पापा जी को थोड़ा बहुत था। बच्चे जो कुछ पढ़ रहे थे आप उससे कुछ अलग पढ़ रहे थे या आप भी सेम चीजें पढ़ रहे थे?
0: नहीं, मैं मेरे ख्याल से उनसे काफी अलग चीजें पढ़ रहा था क्योंकि जो मेरी पीढ़ी के पाठक हैं वो आमतौर पे मनोज कॉमिक्स, राज कॉमिक्स, डायमंड कॉमिक्स वाले पाठक रहे हैं। मैं क्योंकि वो चीजें भी पढ़ रहा था जो मेरे मामा या मौसियां पढ़ रहे थे मेरे से एक पीढ़ी ऊपर, तो उसमें इंद्रजाल कॉमिक्स भी थी,
1: बिल्कुल
0: उसमें इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया थी, धर्मयुग में बच्चों का कोना था, कार्टून कोना डब्बू जी था, जो मेरी जनरेशन के मेरी पीढ़ी के लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पता था उसके बारे में, लेकिन मैं वो पढ़ रहा था। इसके अलावा भी क्योंकि मैं भिलाई में पला बढ़ा, औद्योगिक नगर है छत्तीसगढ़ का, पहले वो मध्य प्रदेश था, तो भिलाई में इंडो रशिया कोलैबोरेशन में ये स्टील प्लांट बना था, तो रूस और भारत के लोग वहां रहते थे शहर में,
1: बिल्कुल,
0: तो हमें बहुत सारी इंटरनेशनल कॉमिक्स भी मिल जाती थी, तो मार्वल, डीसी, एस्ट्रिक्स, ओबेलिक्स, टिनटिन, ये भी उपलब्ध थी हमें पढ़ने के लिए। बहुत लोग नहीं पढ़ते थे लेकिन मुझे इनका भी चस्का उसी समय से लग गया था।
1: बल्कि रशियन किताबें भी जो लोक कथाएं में हिंदी अनुवाद आया करते थे वो भी मौजूद रहे होंगे।
0: हाँ, यूक्रेनी लोक कथाएं,
1: बिल्कुल,
0: रूसी लोक कथाएं, गोरकी की कहानियां,
1: बल्कि मुल्ला नसरुद्दीन,
0: मुल्ला नसरुद्दीन था एक बहुत अच्छा
1: राधुका प्रकाशन,
0: हाँ राधुका प्रकाशन, और उसमें एक कैरेक्टर होता था नाजानू, हाँ नाजानू की कहानियां, और एक मैगजीन आती थी मीशा, तो मीशा में एक कैरेक्टर होता था उसका नाम मेरे दिमाग से उतर गया, वो दलिया खाता था और उसको ताकत आ जाती थी, तो ऑलमोस्ट पोपाई पोपाई के जैसा था, मगर काफी मजेदार कैरेक्टर्स थे ये, तो इनकी भी उपलब्धता थी और उस समय तो मेरे ख्याल से पूरे भारत में थी।
1: क्या बात
0: तो
1: है,
0: मतलब मीशा तो मेरे ख्याल से सबने पढ़ी है, मेरी
1: सबने पढ़ी, बिल्कुल जी, जी। तो इस दौर को याद करते हुए एक गाना सुनते हैं फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।
0: जी बिल्कुल,
1: तो कौन सा गाना होना चाहिए?
0: बचपन के दिन भी क्या दिन थे,
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: बचपन के दिनों की सैर कर रहे हैं और इतनी तरह की कॉमिक्स की हम बात करें, जब ये कॉमिक्स आप पढ़ते थे आलोक, तो कल्पनाओं की वो कौन सी दुनिया थी जिनमें आप सैर करते थे और क्या अपने लिए कुछ सोचते थे इन कॉमिक्स से जुड़ा हुआ?
1: तो इसकी एक बड़ी मजेदार कहानी है। हमारे घर में टीवी नहीं था। हमारे घर में पहला टीवी जब आया तो मैं 26 साल का था।
0: मतलब बहुत ही लेट आया।
1: तो ऐसा नहीं है कि टीवी पता नहीं था, टीवी पड़ोस में था, हम देख लेते थे वहां जाके। तो मेरे ख्याल से 1985 का साल था, टीवी पे संडे की फिल्म आ रही थी, कब क्यों और कहां। उसमें प्राण साहब का एक खतरनाक रोल था जिसमें वो मुर्दे का रोल करते हैं, उनकी आंखें बल्ज होके बाहर निकली हुई। तो वो देख के मैं बहुत बुरी तरह से डर गया।
0: अरे
1: हाँ, उसके बाद प्राण नाम से मुझे दहशत हो गई।
0: लेकिन ये प्राण नाम दो जगह चलता था।
1: हाँ, ये मैं वहीं आ रहा हूं। तो मेरे पिताजी को ये लगा कि अगर मुझे मेरे मन से प्राण नाम की दहशत हटानी है तो उनको ये बताना पड़ेगा कि जो चाचा चौधरी है, मेरा सबसे प्रिय किरदार, उसके सर्जक भी प्राण है, उनका नाम भी प्राण है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो PRA-01 लिखा होता है कॉमिक्स के ऊपर में, वो प्राण है।
0: हाँ।
1: और जो चाचा चौधरी बनाते हैं उनका नाम भी प्राण है। मैं 4 या 5 साल का रहूंगा उस समय, तो मेरे दिमाग में ऐसा एक खांचा बन गया कि वो जो प्राण है फिल्मों में वही चाचा चौधरी भी बनाते हैं। बहुत लंबे समय तक, करीब 1-1.5 साल तक। और बाद में वो फोटो भी, जो प्राण की फोटो आती थी कॉमिक्स के पीछे, प्राण का जन्म कसूर ब्रैकेट में अब पाकिस्तान में हाँ, में हुआ था। तो वो जो पूरा, तो मैं उस तरह से कॉमिक्स पढ़ता था, मैं वहां से पढ़ता था, प्रकाशक मुद्रक तक पढ़ता था मैं कॉमिक्स।
0: बिल्कुल।
1: तो वो उनका जो एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आता था 85 के आसपास, वो थोड़ा सा प्राण, जो अभिनेता प्राण है, उनके जैसा ही दिखता था वो।
0: नहीं,
1: मुझे ऐसा लगता
0: था। ये तो जैसा आप देख रहे हो वैसा,
1: जैसी जिसकी नजर, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये वही है। दूसरी चीज, मेरे पिताजी ने मेरे जन्म के पहले कार्टूनिंग के कोर्सेज किए थे, वो कार्टून्स बनाते थे।
0: ओके।
1: हाँ, पारिवारिक व्यापार के क्षेत्र में वो आ गए थे, लेकिन उनका दिल जो था वो कार्टूनिंग में था। तो मुझे ये जरूर पता था कि ये कार्टून्स हैं और इनको कोई बनाता है। और ये जो प्राण वाली कहानी हुई, उसके बाद एक आदत बैठ गई कि अगर मैं कोई कॉमिक्स पढ़ रहा हूं तो मैं जानना चाहता था इसको लिखा किसने है, इसको बनाया किसने है। कल्पना की उड़ान जरूर थी, लेकिन मुझे ये भी पता था कि इन्हें कोई बनाते हैं, लोग बनाते हैं।
0: तो उस दौर के कौन कौन से नामों से आप परिचित हुए?
1: अब बहुत सारे असल में। तो जैसे मुझे 5-6 साल की उम्र से पता था कि ली फॉक फैंटम लिखते हैं और साइबरी उसको ड्रॉ करते हैं, हालांकि उनसे पहले विल्सन मैकॉय और बहुत सारे लोग थे।
0: पहले ही बॉक्स में नाम आता था।
1: हाँ, पहले बॉक्स में नाम आता था ली फॉक साइबरी करके, फॉक एंड बेरी लिखा होता था। तो मुझे पता था ये फैंटम भी लिखते हैं, ये मैंड्रिक भी लिखते हैं, फ्लैश गॉर्डन जो है वो एलेक्स रेमंड बनाते हैं, रिप कर भी बहुत सारा एलेक्स रेमंड बनाते हैं, बहादुर जो है वो आबिद सुरती लिखते हैं, गोविंद ब्राह्मणिया ड्रॉ करते हैं। ये उस 5-6 साल की उम्र में मैंने ये नाम रख लिए थे, क्योंकि मेरे लिए ये भी जरूरी था, चाहे जितनी भी किताबें उस समय आ रही हों, एक सीमा रहती थी इन किताबों की ना, आपको 3 मिलेगी 4 मिलेगी 5 मिलेगी, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वो लोग हैं जिनका काम आपको बहुत पसंद है। तो बजाय एक किरदार को फॉलो करने के, आप उनके क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं कि उनके जो सर्जक हैं, कि अगर मुझे आबिद सुरती का काम पसंद है तो मैं आबिद सुरती का और काम ढूंढूंगा, अगर मुझे प्राण का काम पसंद है तो फिर शायद मैं चाचा चौधरी बिल्लू पिंकी खत्म करने के बाद जाब और दाबू भी पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पर्टिकुलर एक क्वालिटी आ रही है उनके काम की। तो ये उस समय की ट्रेनिंग है मेरे ख्याल से, जो अभी तक है। मैं अभी भी कोई कैरेक्टर को फॉलो नहीं करता, मैं जनरली क्रिएटर फॉलो करता हूं।
0: बहुत बढ़िया बात है। तो कॉमिक्स की ये दुनिया आपको क्या करियर की किसी दुनिया की तरफ ले जा रही थी, या तब कुछ और सोच रखा था जब मम्मी पापा पूछते थे कि बड़े होके क्या बनना है?
1: नहीं, अच्छी चीज ये थी कि हमसे कभी पूछा ही नहीं गया बड़े होके क्या बनना है, तो वो प्रेशर था नहीं सर पे। दूसरी चीज ये थी कि मैं कार्टून्स बनाने लग गया था बहुत बहुत यंग एज में, 4-5 साल का रहूंगा, तो मैंने जैसे सारे बच्चे करते हैं, तो ऐसा कुछ बहुत महान ड्राइंग्स नहीं कर रहा था मैं, लेकिन मुझे शेहाब की ड्राइंग्स बहुत पसंद आती थी। शेहाब साहब छोटू लंबू किया करते थे, और मुझे लगता है कि वो अपने समय की नहीं, अभी के

0: नायाब
1: सर्वश्रेष्ठ
0: व्यक्ति,
1: कलाकारों में
0: बिल्कुल।
1: एक हैं। तो शहाब साहब की जो कला थी वो मुझे बहुत पसंद थी, उनको मैं काफी कॉपी करता था। कार्टूनिस्ट प्राण को कॉपी करना बहुत मुश्किल था क्योंकि बहुत कम लाइंस में वो बहुत सारी चीजें निकाल लेते थे। तो मुझे ये था कि मैं कार्टून्स बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये प्रोफेशन बनेगा नहीं बनेगा उसकी कोई क्लैरिटी ऐसी थी नहीं मेरे मन में। कार्टून मैं स्वांता सुखाए अपने लिए बना रहा था। एक और चीज ये थी कि पिताजी का काम ऐसा था कि हमारे ट्रांसफर्स होते थे बहुत, एक शहर से दूसरे शहर, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता था कि हर बार नई स्कूल होगी, नई क्लासेस होंगी, नए सहपाठी होंगे, अब फिर से नए दोस्त बनाने हैं, फिर से नए दोस्त बनाने हैं, हर 2-3 साल में स्कूल बदल रहा है, फिर से नए दोस्त बनाने हैं। तो अपने आप में वो काफी प्रेशर वाला काम होता है उस उम्र में। और उस उम्र में अगर मैं अब वापस पलट के देखता हूं तो ये जो कॉमिक्स के किरदार थे ये मेरे परमानेंट दोस्त थे, ये शहर दर शहर मेरे साथ चलते आ रहे थे।
0: चलते आ रहे थे।
1: तो इनके साथ मेरा जो जुड़ाव था वो किसी असल दोस्त से ज्यादा हो चुका था जब तक मैं अपने टीनेज में या किशोर वय जिसको बोलते हैं वहां पहुंचा। तो ये एक चीज थी जिससे मेरा जो अटैचमेंट बोलते हैं वो कॉमिक से बढ़ा दिया। मेरे ख्याल से 10 या 11 साल का रहा होगा तब मुझे लगा कि मैं कार्टून्स बना सकता हूँ और मैं ये भेज सकता हूँ छपने के लिए। वो
0: अच्छा।
1: कॉन्फिडेंस रैंडमली आ गया था और घर में प्रेशर था पढ़ाई को लेकर और बाकी चीजों को लेकर भी, लेकिन ये मनाही नहीं थी कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो बस उसका फायदा मिला, मैंने कार्टून्स बना के भेजना शुरू किया, संपादक के खेत सहित सारे कार्टून्स वापस आने शुरू हुए।
0: लिफाफा भेजते थे आप।
1: लिफाफा भेजता था, वो तो भेजना पड़ता था, जवाबी लिफाफा टिकट लगा हुआ, वो तो नियम ही था।
0: जी।
1: तो शुरू में कार्टून्स नहीं बनाए थे, शुरू में मैंने सोचा कि मैं बहुत आलेख वगैरह लिखूंगा, मतलब वो उस उम्र में ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज्ञान है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हाँ, तो
0: कुछ भी कर
1: मेरे, आप
0: सकते
1: कुछ
0: हैं।
1: भी कर सकते हैं और वो रहना चाहिए। मुझे लगता है वो बाल सुलभ कॉन्फिडेंस सब में पूरी उम्र रहना चाहिए, ताउम्र रहना चाहिए। तो मुझे अभी भी याद है पहला जो मैंने लेख लिखा था वो था डोडो पर, और वो मैंने भेजा था सुमन सौरभ में, और
0: अच्छा।
1: सुमन सौरभ से वो रिजेक्ट होके आ गया था। लेकिन मुझे उसमें कोई ऐसे संकोच शर्म नहीं आई थी, मैंने ठीक है दूसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे, चौथा लिखेंगे, क्योंकि खोने के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास, तो आप लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं। फिर मुझे लगा कि शायद मैं ड्राइंग्स बेहतर करता हूँ लिखने से। तो हमारे शहर में एक कार्टून मैगजीन निकला करती थी, अभी भी निकलती है, 30 साल से निकल रही है वो मैगजीन, कार्टून वॉच नाम है उसका। तो कार्टून वॉच मेरे हाथ लगी किसी के दोस्त के घर पे और मैंने उसमें कार्टून्स देखे, तो वही मैं कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अलग तरीके का था, तो वो देख के लगा ये अगर ये छप रहे हैं तो मैं तो छप ही जाऊंगा। हाँ, और वो जो संपादक थे त्रिम्बक शर्मा, उनको मैं त्रिम्बक भैया बोलता हूँ अब, तो त्रिम्बक भैया असल में सबको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ना निहायत ही घटिया कार्टून हो तो छोड़ देंगे, नहीं तो छप जाते थे कार्टून। तो मुझे लगा ये तो मैं कर सकता हूँ, एंड बनाया मैंने कार्टून्स, 2-3 बनाए और दोनों तीनों छप गए पहली बार में। मतलब कार्टूनिंग में मेरा रिजेक्शन नहीं हुआ, कार्टूनिंग में मुझे लगा कि यहाँ तो
0: सही है।
1: चंडीगढ़ गए पहले ही दिन, पहले ही कार्टून गए और 15 दिन में छप के आ गए, किताब आ गई घर पे, उस किताब को लेके मैं घूमता रहा कई महीनों तक, लेकिन हर महीने उसके बाद मैं नियम से कार्टून बनाता रहा। तो इस तरीके से कार्टूनिंग के करियर की शुरुआत हुई मेरी जब मैं शायद 13 या 14 साल का था,
0: और वो भी भिलाई में।
1: भिलाई में। तो उसके थोड़े से पैसे मिलते थे, 100 रुपये, चाहे जितने भी कार्टून, तो ऐसा नहीं था कि पर कार्टून मिलेगा क्योंकि मैगजीन भी छोटी थी, तो 100 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट होती थी, 100 रुपये में आप क्या कुछ नहीं कर सकते थे।
0: यस।
1: हाँ, तो और कॉमिक्स तो खरीद ही सकते थे, अब मतलब कॉमिक्स के लिए घर में बोलना या यहाँ वहां भागना
0: ये
1: दौड़ना नहीं
0: हर्डल
1: करना
0: खत्म
1: पड़ता था।
0: थी।
1: हाँ, मुझे याद है 56 रुपये का सेट आता था, तो दो
0: हाँ,
1: सेट में
0: और वो
1: खरीद
0: बड़ा महंगा लगता था
1: सकता,
0: उस
1: छप्पन रुपये बहुत महंगा था लेकिन मुझे 100 रुपये मिल रहा था महीने का, तो मैं दो सेट खरीद सकता था महीने का।
0: वक्त।
1: तो इस तरीके से मेरी पहली लाइब्रेरी की शुरुआत हुई कॉमिक्स की।
0: क्या बात है। लाइब्रेरी एज इन दूसरों को किराए से
1: हाँ
0: देने
1: हाँ
0: लगे।
1: हाँ मैं हमेशा, मेरा कभी ये विचार था ही नहीं कि मैं किराए पे कॉमिक्स पढ़ूंगा, मुझे मेरी
0: हाँ,
1: कॉमिक्स मेरे पास चाहिए थी।
0: अच्छा।
1: तो इसलिए मैं मतलब एक समय था 2-3 साल जब किराए से पढ़ी किताबें, मगर मुझे लगता था इतनी बड़ी लाइब्रेरी तो मेरी होनी चाहिए, जितनी
0: अपनी
1: बड़ी,
0: होनी
1: हाँ,
0: चाहिए।
1: एक दशमेश लाइब्रेरी करके हमारे शहर में लाइब्रेरी हुआ करती थी भिलाई में गोल मार्केट में, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। और मेरा लाइफ का, मेरे मतलब जीवन का एक ही लक्ष्य था कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी तो चाहिए, इससे छोटी नहीं चलेगी।
0: हाँ।
1: तो फिर मैंने मतलब दशमेश तो बंद हो गई और हमने अपनी लाइब्रेरी शुरू की, और बहुत अच्छी तरह से रन की, मतलब वो हमारे

0: छत्तीसगढ़ में उसको बोलते हैं अंचल, हमारे अंचल की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में से एक थी जो हम लोग रन कर रहे थे।
1: कितने साल चलाई?
0: वो हमने चलाई करीब 4 साल।
1: अच्छा, और किताबें सब वापस आई सही सलामत?
0: हाँ, मतलब देखिए जब ये व्यवसाय बन जाता है ना तो थोड़ा नफा नुकसान तो होता है। तो नफा नुकसान होता था, लोग चुरा के ले जाते थे, फिर हमको ढूंढने जाते थे उनके मोहल्ले में, तो वो एक अपने आप में एक
1: अलग कहानी,
0: अलग कहानियां हैं। वो एक अलग, मेरे ख्याल से वो हमारा मालगुड़ी डेज है।
1: बहुत सही बात है, बहुत मजेदार बात। लेकिन क्या कार्टूनिंग की कोई बाकायदा ट्रेनिंग लेने की जरूरत महसूस हुई या ऐसा कोई मौका आया?
0: अब लगता है कि ले लेनी चाहिए थी। लेकिन तब कॉन्फिडेंस उस जगह पे था कि कुछ भी रिजेक्ट नहीं हो रहा था, जो बना रहे हैं सब छप रहा है। और फिर उन मैगजीन्स में भी छपने लगा जो मैगजीन्स में पढ़ रहा था, तो मेरा काम चंपक में आने लग गया, बाल भारती में आने लग गया, बाल हंस में आने लग गया। उस समय की करीब करीब हर मैगजीन में काम आने लग गया था और पैसे भी मिलते थे उसके। तो मजे की बात ये थी कि पैसे भी आ रहे हैं और वो ठीक ठाक पैसे थे। मतलब उस समय में एक 15-16 साल का लड़का अगर 500 रुपए भी महीने के बना ले रहा है,
1: बहुत ज्यादा रकम,
0: बहुत बड़ी रकम हो जाती है वो। तो वो पैसे भी आ रहे हैं, आपकी एक लाइब्रेरी भी चल रही है ठीक ठाक, और आप कार्टून्स भी बना रहे हैं, तो फिर पढ़ाई कौन करेगा?
1: मामला
0: पढ़ाई कौन करेगा?
1: अच्छा,
0: फिर मैं 9वीं में फेल हो गया।
1: अरे बाप रे बाप।
0: हाँ,
1: मतलब ये तो बम गिर गया,
0: तबाह हो गया मैं।
1: अच्छा,
0: तो 9वीं में मैं फेल हो गया, मुझे समझ नहीं
1: आगे की कहानी सुनिए। आप ब्रेक लगाते हैं, एक गाना सुनते हैं, कहां तक ये मन को अंधेरे चलेंगे।
0: चलिए कहां

0: ये इसकी उम्मीद थी कि नहीं थी?
1: उम्मीद तो कोई नहीं रखता है
0: हाँ, कि फेल हो जाऊंगा,
1: फेल हो जाऊंगा,
0: मतलब पढ़े नहीं थे कुछ...
1: नहीं मुझे समझ में नहीं आया पूरा नवी कैसे गया, मुझे नहीं पता है।
0: वैसे नवी होता भी फिसलदार मैदानी है,
1: नवी को थोड़ा सा टफ बनाया जाता है ताकि बच्चा दसवीं में अच्छे स्कोर करे और स्कूल का एक स्कोर बना रहे, तो उसको स्कूल का स्कोर बनाने के लिए मुझे लगता है नवी को टफ बना दिया।
0: नहीं और ये समझाना कि भाई मिडिल स्कूल पीछे छूट गया,
1: छूट गया,
0: होश में आ जाओ,
1: नहीं वो तो आप हाफ पेंट से फुल पेंट पे आ जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा था कि मिडिल स्कूल तक हाफ पेंट था, फिर फुल पेंट आया, तो फुल पेंट आई मतलब आप जिम्मेदार हो जाओ। मैं नहीं हो पाया मेरे ख्याल से। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत थी ना, मतलब आप एक तरफ लाइब्रेरी भी चल रही है, आप कार्टून्स भी बना रहे हो, स्कूल में टीचर्स भी आपको एक अलग निगाह से देखते हैं कि इसके तो कार्टून्स छप रहे हैं, तब तक मेरे लेख वगैरह भी छपने लग गए थे। तो मतलब क्लास नाइन्थ का एक लड़का है जिसका हर महीने
0: कहीं ना कहीं
1: वो छप रहा है, तो वो अपने आप में एक अंदर से तो अपने आप में एक रॉकस्टार वाली फीलिंग रहती है कि हम ही हमें
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: भले बाकी सारी चीजों में आप शून्य हो, लेकिन एक वो जगह है जहां आमतौर पर कोई पहुंचता नहीं है, वहां जाके आपने अपना आसन जमा रखा है। तो डांट पड़ती थी स्कूल में कि ये सब करते रहोगे, तुम्हारे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, ये है वो है। मुझे लगा था निकल जाएगा, नहीं निकला। अब नहीं निकला तो क्या कर सकते हैं। लेकिन मजेदार बात मैं बताऊंगा आपको कि जो नवी में मैं फेल हुआ उस दिन तो मौत थी मेरी। मतलब लाइफ का, जीवन का सबसे बड़ा फेलियर है वो, क्योंकि आपके सारे दोस्त आपसे एक साल आगे चले गए, अब आपके साथ बच्चे पढ़ेंगे। उस समय में तो ये लगता है एक साल छोटा तो बच्चा ही है, अभी तो 5 साल छोटे भी बराबर के लगते हैं, लेकिन वो था मोहल्ले वालों को आप क्या जवाब देंगे। सबको पता है आप नाइन्थ में थे, पूरे मोहल्ले को अगर पता चला कि आप दसवीं नहीं गए, आप वापस नाइन्थ रिपीट कर रहे हो, तो क्या होगा? एक तरीके से सामूहिक बहिष्कार हो जाता है जो बच्चा फेल होता है उसका, उसमें बच्चे की गलती है नहीं है।
0: हमारे यहाँ वो तो सोचा ही नहीं जाता, वो जो एक्सेप्टेंस वाली बात है
1: ना, तो स्टिग्मा आ जाता है वो। तो स्टिग्मा तो आ गया था और आप अपनी नजरों में तो गिर ही चुके हो। तो एक आप अपनी नजरों में गिरे हो, एक आप अपने पेरेंट्स की नजर में गिरे हो, फिर छोटे भाई बहन है उनकी नजरों में भी गिरे हो, क्योंकि अभी तक आप रोल मॉडल थे और आपने मतलब काफी कुछ अच्छा किया हुआ है, अभी तक आप उनकी नजर में भी गिर गए हैं। मोहल्ले वालों को किसको सच बताएं किसको ना बताएं पता तो सबको चलेगा, क्योंकि उसमें से कुछ बच्चे हमारे स्कूल में भी हैं। अब उनसे झूठ बोलेंगे आप या सच बोलेंगे, आप फेलियर को एक्सेप्ट कैसे करते हैं? फिर आपके जो दोस्त हैं वो एक क्लास आगे चले गए हैं, तो आप उनके साथ स्कूल भी नहीं
0: जाते, नजरें कैसे मिलाएंगे,
1: नजरें कैसे मिलाएंगे? उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि एक फेल होने वाले बच्चे के साथ उनके बच्चे खेलें। तो ये जो पूरा एक हमारे समाज ने इस पूरी चीज को जैसा स्टिग्मा बना दिया है, उससे मैं गुजरा पूरे एक साल।
0: पूरे एक साल
1: देखिए बाकी लोग तो बढ़ जाते हैं, लेकिन आप वो अपने अंदर लेके चल रहे होते हैं
0: बिल्कुल
1: फेलियर को, और वो फेलियर ताजा ही।
0: घर वालों का एटीट्यूड क्या था?
1: कुछ खास ऐसा, मतलब पिताजी ने बोला कि अब चलो मेरे साथ काम भी करना पड़ेगा शुरू तुमको, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई में तो लग नहीं रहा कि तुम्हारा कुछ होने वाला है, तो मैंने उनके साथ काम करना भी शुरू किया।
0: क्या काम था वो?
1: मेरे फादर चॉकलेट्स वगैरह ये करते थे, होलसेल में चॉकलेट्स किराने दुकान वालों को सप्लाई करते थे। तो फिर उन्होंने पूरा भिलाई शहर का जो सप्लाई है मुझे दे दिया। भिलाई शहर मतलब ऐसा बहुत शहर नहीं, कुछ 25-30 दुकानें जो हम रेगुलरली जहां सामान सप्लाई किया करते थे, तो वो मुझे दे दिया उन्होंने कि ये तुम करोगे अब। तो मैंने वो शुरू किया, लाइब्रेरी फिर भी चल रही थी, कार्टून फिर भी बन रहे थे।
0: अच्छा हाँ, ये सब चल रहा था।
1: और ये सब चल रहा था, उसके साथ में मैंने फादर को हेल्प करना भी शुरू किया, वो भी मेरे ख्याल से 48 साल के तो हो गए थे तब तक मेरे फादर, तो वो शुरू किया मैंने। मुझे ये लगा कि मुझे ये भी समझ में आया कि बिजनेस कैसे होता है। मैं आमतौर पर लोगों से बात करने में कतराता था, तो मेरी जो शर्म थी जो मोहल्ले में और लोगों के बीच थी वो खत्म होने लगी, वो झिझक हटने लगी मेरी। मुझे पता नहीं अगर इसको हम स्ट्रीट स्मार्ट बोल सकते हैं या नहीं, मगर थोड़ा सा एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस बूस्ट आया मेरे अंदर उससे। बहुत बाद में, करीब मेरे ख्याल से उसके 30 साल बाद, मैंने एक शो लिखा, और उस शो को लिखते समय मैंने जो लीड कैरेक्टर है उसका, शो का, उसको क्लास नाइन्थ में फेल करवाया। इसलिए नहीं कि ये रेवेंज था, इसलिए कि मुझे बहुत मन था कि मैं दुनिया को बताऊं कि
0: फेलियर
1: एक बच्चा फेल होता है
0: उस बच्चे तो के ऊपर
1: अपने अपने आप में वो एक मौत से गुजर रहा होता है।
0: Correct.
1: उसके ऊपर नई चीजें मत ला दो, क्योंकि वो खुद अपनी नजरों में गिरा हुआ है। तो उसकी जितनी हेल्प कर सको कर दो, हेल्प नहीं कर सकते तो नया गड्ढा मत खोदो उसके। तो ये बहुत जरूरी है लोगों के लिए।
0: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: किस शो में लिखा था ये आपने?
1: ये एक शो था Z5 पे जिसका नाम है फायरफ्लाइज, पार्थ और जुगनू। तो हम लोग बात कर रहे थे, शुरू से डिस्कशन ये था कि ये क्लास में टॉपर नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग टॉपर्स की कहानियां बहुत देखते हैं, हम उसकी कहानी नहीं देखते जो पीछे छूट जाता है। तो हमेशा से वो आइडिया था कि इसकी कहानी वो होगी कि ये पीछे छूट जाए। तो फिर मैंने अपने अनुभवों में वापस जाके उसको कुरेदा और मैंने कहा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि नाइन्थ में फेल हो गया है। तो सबसे पहले तो हमको जाके नया एजुकेशन सिस्टम चेक करना पड़ा कि नाइन्थ में फेल होते हैं या नहीं होते हैं। फिर पता चला कि होते हैं। हाँ, जहां वो कहानी बेस्ड है वहां तो होते हैं। तो फिर उस चीज को लेके बहुत सारी चीजें जो मैंने झेली थी, बहुत सारी चीजें जो लोगों ने मुझे बोली थी, वो सब कुछ वहां मैंने उस कहानी में कहा। और बहुत सारे लोग उसके बाद, बहुत सारे लोगों के मुझे कॉल्स आए, एक दो पॉडकास्ट में पॉडकास्टर्स ने मुझे बताया कि वो भी उस दौर से गुजरे हैं। एक एक दो दो बार फेल होना या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगातार फेल हो जाना 3 बार, वो सब उस स्टिग्मा से बहुत लोग गुजरे हैं। उसको सही वॉइस नहीं मिली है अभी तक, वो निकल के नहीं आया, कथार्सिस नहीं हुई लोगों की। तो मुझे लगा ठीक है, मेरी कथार्सिस के बहाने मतलब और बहुत सारे लोगों की कथार्सिस हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अनुभव हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कड़वे हैं, अगर अंदर रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक जगह पर आके निकल जाते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो इस पूरे दौर से निकले आप कैसे और फिर आगे चीजें कैसे बढ़ी?
1: ये बहुत मतलब फिक्शनल साउंड करेगा, लेकिन हम लोगों के वहां उसको सेकंड ईयर बोलते थे फेल होने के बाद।
0: अच्छा,
1: सेकंड ईयर।
0: ये एक तरह की राहत,
1: एक तरीके की राहत थी। तो मेरा जो सेकंड ईयर था उसमें पता नहीं कैसे मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बन के भी निकला, जबकि मैं पढ़ भी नहीं रहा था।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब अब खोने के लिए कुछ था ही नहीं ना।
0: हाँ बिल्कुल।
1: तो घबराहट नहीं थी।
0: हाँ।
1: तो अब मैं ज्यादा खुल के मजे कर रहा था क्लास में।
0: हाँ।
1: क्योंकि ये सब मेरे से छोटे थे, मेरे क्लासमेट्स, दिमाग में तो यही था। तो अब मुझे जो घबराहट थी, जो बेचैनी थी पिछले साल अपने साथ के लोगों के साथ में, वो बेचैनी पता नहीं कहीं गायब हो गई। तो जैसे मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ में सबसे कम मार्क्स आए थे मेरे सेकंड ईयर में, इन तीनों में मैंने टॉप किया। और हमारे यहाँ 7-8 सेक्शंस होते थे। तो केमिस्ट्री की टीचर का तो मैं मतलब बहुत ऐसा प्रिय छात्र बन गया था, क्योंकि मोल थ्योरी ये वो पता नहीं कैसे मुझे समझ में आने लगी चीजें। तो 9th और 10th यूं करके निकल गए, मतलब छुटकी बजाते 9th और 10th निकल गए। मैं रैंक्स अच्छे ला रहा था, मेरी लाइब्रेरी बहुत बड़ी हो गई थी इस बीच में।
0: अच्छा।
1: हाँ, मेरी लाइब्रेरी हमारे शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में से एक थी। मैं मतलब 14 साल के बाद जब मैं भिलाई एक बार गया था, मेरी लाइब्रेरी की सील लगी हुई किताबें मैंने रद्दी में खरीद के वापस लाए थे। इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी कि 14 साल तक वो किताबें सर्कुलेट हो रही थी उसी शहर में।
0: क्या बात।
1: हाँ, तो ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, मेरी लाइब्रेरी बड़ी हो गई। मेरे फादर का काम मैंने बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। तो वो एक और बेशर्मी भी आ गई थी, चमड़ी मोटी हो गई ना आपकी, आप जितना सुन सकते थे, जितना झेल सकते थे आपने झेल लिया था। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बहुत मददगार साबित हुआ मेरे लिए, कि वो फेलियर उस समय के लिए तो मौत थी, मगर अगले 1-8 साल के अंदर अंदर मुझे लगता है कि मेरे चरित्र निर्माण में बहुत बड़ा हाथ था उस चीज का।
0: तो एक नए सिरे से बनने की तैयारी थी
1: जी, वो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रतिशोध की ज्वाला भी थी।
0: बिल्कुल।

0: ये कॉमिक्स वाला वर्ड आ गया।
1: सुपर कमांडो ब्लू की पहली किताब, हाँ, प्रतिशोध की ज्वाला थी वो, और वो सब मेरे लिए काम कर गई बेसिकली।
0: तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यहाँ एक गाना सुनते हैं।
1: जी बिल्कुल।

0: मुंबई कैसे आ गए आप लोग?
1: हाँ, ये बहुत लंबी कहानी है।
0: अच्छा,
1: तो मैं कॉमिक्स में काम करना चाहता था, लेकिन जब तक मैं 20 का हुआ तब तक भारत

0: कॉमिक्स खत्म हो गई थी
1: धीरे धीरे धीरे धीरे करके।
0: और मेरी पीढ़ी मेरे ख्याल से कॉमिक्स पढ़ने वाली आखिरी पीढ़ी थी। अभी लोग आ रहे हैं वापस, लेकिन उस समय तो सब खत्म हो गया था। सो जब मैं 20 का हुआ और मैंने मेरा कॉलेज खत्म किया, कॉलेज भी मैंने मजबूरी में खत्म किया था, मेरा मन नहीं था कॉलेज करने का। मतलब 12वीं आते आते तक मुझे समझ में आ गया था कि ये शिक्षा प्रणाली मेरे लिए तो नहीं बनी है। बहुत लोगों के लिए बनी है, मैं शिक्षा प्रणाली के खिलाफ नहीं हूं, मगर मेरे लिए नहीं थी वो। क्योंकि अब मैं जब स्कूल के बारे में सोचता हूं तो मुझे उनकी कहानियां याद है, मुझे कुछ भी याद नहीं उन्होंने मुझे क्या पढ़ाया। तो वो शिक्षा प्रणाली से मेरा थोड़ा सा मैं उखड़ चुका था 12वीं करते करते तक, और मुझे लगा कि मैं खुद पढ़ सकता हूँ। मेरे लिए जब तक मैं कोई चीज को खुद करके ना देखूं, मेरे लिए सीखना बहुत मुश्किल है। तो मैं घर आके किताबों को पढ़ के खुद से अपनी थ्योरीज बना के किया करता था चीजें। कार्टून्स छप रहे थे लेकिन मुझे मजा आना बंद हो गया था कार्टून्स में। मुझे एक अवार्ड मिला था आर के लक्ष्मण से।
1: अच्छा,
0: तो हाँ, ये उसी स्कूल और कॉलेज के बीच में दो बार मिले थे नेशनल अवार्ड्स। तो उसमें एक बार आर के लक्ष्मण ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा प्लान बी क्या है। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा प्लान बी क्या होता है। तो उन्होंने बोला अगर कार्टूनिंग में नहीं हुआ तो क्या करोगे। तब तक मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या करना है, तब तक मुझे पता था मुझे यही करना है। तो ये बड़ा कठिन सवाल मेरे सामने आया, और वही आर के लक्ष्मण अगर फेंक रहे हैं वो सवाल आप पे, तो आपको उसको सीरियसली लेना पड़ेगा।
1: बिल्कुल।
0: तो बहुत गंभीरता से मैंने इस पे विचार किया। मुझे ये समझ में आया कि पॉलिटिकल कार्टून्स की उम्र नहीं होती, सुबह छपता है शाम तक बासी हो जाता है, खत्म हो जाता है। और मेरे बहुत सारे दोस्त ये कर रहे थे, मैं ये करना चाहता था। मैं अखबारों के ऑफिसेज जाता था, कार्टून्स देखे आता था, कभी छप जाते थे कभी नहीं छपते थे, कभी कोई अखबार वाला कॉल कर देता था कि इतना 3 कॉलम बचा हुआ है कुछ ड्रॉ करके दे दे जल्दी से।
1: अरे,
0: तो 3 कॉलम का फटाफट कुछ ड्रॉ करके दिया, उन्होंने 50-60 रुपए दे दिए। तो ये चल रहा था, इसको बहुत लोग संघर्ष बोलते हैं, हमारे लिए बहुत मजे का काम था। क्योंकि एक ही सड़क पे सारे अखबारों के ऑफिसेज होते थे, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, कहीं ना कहीं छप जाता था।
1: वाह।
0: और कुछ दोस्त थे जो परमानेंट जॉब में लग गए थे इन अखबारों में, वो अभी भी उन अखबारों के साथ काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे पत्रकारिता करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं, मेरा मन नहीं लगता था। मेरा मन उन शहरों में नहीं लग रहा था जहां मैं बड़ा हो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहां से निकलना होगा और मैं कार्टून नहीं बनाऊंगा। मैं बहुत क्लियर था इस मामले को लेकर कि मैं पॉलिटिकल कार्टून्स नहीं करूंगा। इसलिए नहीं कि मुझे उससे कोई दिक्कत है, इसलिए कि 1999 सन 2000 का साल था वो, और देश की हवा बड़ी विचित्र सी थी। दूसरी चीज ये थी कि मैंने देखा कार्टूनिस्ट प्रांत की एक लेगेसी है, अनुपम सिन्हा की एक लेगेसी है, ली फॉक की एक लेगेसी है, ये मेरे हीरोज हैं। तो अगर मैं लेगेसी नहीं क्रिएट कर रहा हूं तो मुझे आर के लक्ष्मण बनना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे 50 साल कार्टून बनाने पड़ेंगे। और

0: इसलिए नहीं कि मुझे उससे कोई दिक्कत है, इसलिए कि 1999 सन 2000 का साल था वो, और देश की हवा बड़ी विचित्र सी थी। दूसरी चीज़ ये थी कि मैंने देखा कार्टूनिस्ट प्रांड की एक लेगेसी है, अनुपम सिन्हा की एक लेगेसी है, ली फॉक की एक लेगेसी है, ये मेरे हीरोज़ हैं। तो अगर मैं लेगेसी नहीं क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे आर के लक्ष्मण बनना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे 50 साल कार्टून बनाने पड़ेंगे। और अटैच भी हूँ और डिटैच भी हूँ। अटैच हूँ जब तक मैं उसको बना रहा हूँ, डिटैच हूँ द मोमेंट ये मेरे हाथ से मैंने बाहर भेज दिया, उसके बाद मैं उसको पलट के भी नहीं देखूंगा। लेकिन जब तक मैं उसके साथ हूँ तब तक मैं उसके साथ पूरी तरह से हूँ। तो वो पॉलिटिकल कार्टूनिंग में पॉसिबल नहीं था,
1: बिल्कुल
0: वो सोशल कार्टूनिंग में पॉसिबल नहीं था, कॉमिक्स बंद हो चुकी थी। तो उस दौर में मुझे ऐसा लगा एनिमेशन मेरे लिए सबसे मुफीद करियर होगा, और एनिमेशन कुछ नहीं पता था मुझे उसके बारे में। तो मुझे ऐसा लगा कि एनिमेशन सीखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं घर से पैसे मांग नहीं सकता हूँ, तो अब मुझे कहीं जाके स्टूडियो में किसी जगह पे जाके नौकरी मांगनी पड़ेगी, और वहां जाके मैं एनिमेशन सीख भी लूंगा और मैं एक एनिमेटर बन भी जाऊंगा। तब तक तो मुझे नहीं पता था कि एनिमेटर कौन होता है, इन बिटवीनर कौन होता है, डायरेक्टर कोई और होता है। मेरे दिमाग में मैं डायरेक्टर था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसको डायरेक्टर बोलते हैं। तो उसकी भी बड़ी लंबी सी कहानी है कि मुझे नहीं पता था लाइट बॉक्स क्या होता है। तो मैं जेरोक्स मशीन वाले के वहां खड़े होकर दुकान में मैं लगातार जेरोक्स करके उसको मूवमेंट देता था ड्राइंग्स को। अदनान सामी का एक गाना आया था लिफ्ट करा दे, लिफ्ट करा दे पूरा एनिमेट किया था जेरोक्स कर करके,
1: अरे
0: वो
1: बाप।
0: कहीं मेरे पास रखा है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वो उसके इजी तरीके भी हैं, मुझे डिफिकल्ट तरीके पता थे क्योंकि मैं आर्टिकल्स पढ़े थे, तो मैं उस तरीके से ही काम कर रहा था। तो एनिमेशन के लिए भी बहुत हाथ पैर मारे मैंने, भारत में एनिमेशन का कोई स्कोप ही नहीं
1: सिस्टमेटिक
0: था,
1: मामला नहीं था।
0: स्कोप ही नहीं था, कुछ था ही नहीं। एक फिल्म बन रही थी जो मैं क्लास 9th में था तब से बन रही थी, वो अभी तक बनी नहीं थी, उसका नाम भागमती है। भागमती फाइनली उन्होंने लाइव एक्शन और एनिमेशन मिला के कुछ बना दिया था बाद में, मैं तब मेरे ख्याल से ऑलरेडी एनिमेशन में आ गया था तब तक। तो इस तरीके की चीजें हो रही थी, और जो कोर्सेस थे वो बहुत महंगे थे, तो मैं वो नहीं कर सकता था वो कोर्सेज। तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले तो मुझे मेरा गांव छोड़ना पड़ेगा। तब तक हम उड़ीसा शिफ्ट हो चुके थे भिलाई से, और ये बहुत छोटा सा गांव था, इसका नाम आताबिरा है। मतलब वहां पर आलोक शर्मा आताबिरा लिख के चिट्ठी डालिए मेरे घर आ जाती थी, इतना छोटा गाँव था वो। तो उसके लिए उस गाँव से निकलना बहुत जरूरी था। उस बीच में गौथम कॉमिक्स नाम की कंपनी शुरू हुई थी जिसने मार्वल और डीसी पब्लिश करना शुरू किया था, तो मैंने अपना बहुत सारा काम उनको भेजा। उन्होंने बोला ये सब कचरा है, मेरे पिछले 6, 7, 8 साल की मेहनत को। उन्होंने बोला ये क्वालिटी हमें चाहिए नहीं। तो अब मेरे मन में ये हुआ कि इनको, मतलब अभी तक तो मैं तुरम कहाँ था, जो भी भेज रहा था सब छप रहा था, ये अचानक एक कौन आ गया है जो मुझे बोल रहा है कि सारा खराब है, हमको ये कुछ चाहिए ही नहीं। तो मैं उनको मिलने गया बैंगलोर, वहां मैंने जाके टेस्ट दिए। तो वो भी एक चीज है कि मुझे टेस्ट वगैरह देने से कोई गुरेज नहीं है, मैं अभी भी देने को तैयार होता हूँ, और सैंपल कोई मांगे मुझसे मैं अभी भी सैंपल करने को रेडी रहता हूँ। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट आपका ऑडिशन है ही हमारा।
1: बिल्कुल
0: बड़े बड़े एक्टर्स अगर माइंड नहीं करते ऑडिशन देना, तो मतलब मुझे क्यों इस बात से गुरेज हो कि मुझे ऑडिशन देना पड़ रहा है। तो मैंने वहां जाके फिर फाइनली ऑडिशन दिया। बहुत खींचतान के बाद मेरा काम उनको समझ में आया, उन्होंने मुझे बैंगलोर बुला लिया, और मेरा पहला पब्लिश्ड काम मार्वल कॉमिक्स में आया।
1: वाह वाह
0: हाँ, तो
1: वाह।
0: पहली कॉमिक्स जो मैंने की वो मार्वल कॉमिक्स थी। मैं अनक्रेडिटेड था, मैं इंकर था स्पाइडरमैन इंडिया में। तो स्पाइडरमैन इंडिया अब तो बहुत बड़ा कैरेक्टर बन गया है, 2004 में वो नया नया कैरेक्टर आया था, अब तो स्पाइडर वर्स वगैरह आ गया है। तो वहां से मेरी कॉमिक्स की जर्नी शुरू हुई, लेकिन तब तक मैं समझ गया था कि कॉमिक्स बहुत मेहनत का काम है। मैं लिखना ज्यादा पसंद करूंगा ड्रॉ करने से, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे चित्र बनाते हैं। उस जगह तो मेरे ख्याल से भारत के और विश्व के सबसे बेहतरीन कलाकार उस
1: मौजूद
0: स्टूडियो में
1: थे।
0: थे, तो उनके बीच में जाके 12th प्लेयर बनने का कोई फायदा नहीं है, तो क्यों ना मैं लिखना शुरू करूं। और मैं उनको कहानियां सुनाता था, क्योंकि मुझे कहानियों का शौक बचपन से रहा है, तो उनको कहानियां पसंद आने लगी। उन्होंने कहा कि तू लिखना क्यों नहीं शुरू करता है, तू लिखेगा तो हम चाहेंगे कि उन कहानियों पर हम लोग ड्रॉइंग करें। वहां से थोड़ा सा लिखने की तरफ मेरा रुझान बढ़ना शुरू हुआ, तब तक मैं
1: मार्वल
0: लिखता
1: के
0: नहीं था।
1: साथ।
0: गौथम कॉमिक्स था, गौथम मार्वल के साथ कर रहा था ये चीजें, तो ये आर्टिस्ट ने मुझे बोला। लेकिन तब तक ये हो गया था कि मैं ब्रेक चाहता था उस चीज से, ड्राइंग से, क्योंकि क्या होता है कि किसी चीज को आप बहुत प्यार करते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी डेडलाइंस हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे उसमें से ना जो उसका जो आनंद है ना वो पूरा रस
1: निकल जाता
0: निकल
1: है।
0: जाता है, अब वो काम बन जाता है। कि
1: यस
0: आप बैंक में हैं या कॉमिक्स बना रहे हैं, दोनों एक काम हो गया है। तो जब ये हो गया है तो, और बैंक का काम इनफैक्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप बहुत लोगों से मिलते हैं, ये तो बहुत एकाकी काम है। तो ये बड़ा अजीब सा माहौल हो गया था कि जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी।

0: जिसमें मैंने 6-7 साल अपने दिए थे, उसमें से आनंद थोड़ा थोड़ा निकलने लगा था। और मुझे उस बीच में जापानी कॉमिक्स मंगा, जिनको बोलते हैं मंगा, मुझे बहुत पसंद आने लगी। तो मैंने चाणक्य पे एक मंगा बनाना शुरू किया खुद से, और मुझे बोला गया कि मंगा का भारत में कोई भविष्य नहीं है, तो इसको तुम बंद कर दो। तो मैंने कुछ 30-40 पन्ने उसके बना लिए थे, मैंने उसको बंद किया। मैं एक रेडियो स्टेशन गया, एफएम रेडियो तब नए नए आए थे, जीवन का मेरा पहला अनुभव था कि मैं एक रेडियो स्टेशन के अंदर गया, और उन्होंने ऑडिशन के लिए बुला लिया। मैंने जस्ट एक मेल भेजी थी उनको कि मैं आना चाहता हूँ, ऑडिशन देना चाहता हूँ, उन्होंने ऑडिशन में बुला लिया। मैंने जीवन में उससे पहले कभी कोई रेडियो स्टेशन नहीं देखा था। मैंने वहां जाके वीभत्स ऑडिशन दिया, एक बहुत ही भयानक, अभी भी सोचता हूँ तो मैं सिहर जाता हूँ। मैं एक किरण श्रीधर नाम के आरजे हुआ करते थे, अभी भी हैं, तो मैं अभी भी मतलब कभी कभी किरण को नतमस्तक हो जाता हूँ कि उसने मुझे आधे घंटे कैसे झेला था उस स्टूडियो के अंदर। मैं तो नहीं झेल सकता था अगर कोई मेरे जैसी हरकतें करता वहां पे। तो मैंने बहुत खराब ऑडिशन दिया, बहुत ही ज्यादा खराब। मतलब मैं स्टूडियो के बाहर जाते जाते ही समझ गया था कि ये लोग मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन यहाँ मेरी कहानी में एंट्री होती है विविध भारती की। तो विविध भारती मैंने सुनना शुरू किया मेरे ख्याल से जब मैं 9वीं में फेल हुआ था उसके बाद, क्योंकि रात में छाया गीत और ये सब आते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, थोड़े सुकून वाले गाने होते थे, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: रात में आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए था, क्योंकि तपता हुआ दिन निकाला है सारे
1: बिल्कुल
0: स्कूल से लेके पड़ोस तक। तो वहां मैंने विविध भारती सुनना शुरू किया, जहां मैं आप सबको सुनता था, कमल शर्मा थे, आप हैं, और बहुत सारे उद्घोषक। मुझे अभी भी याद है आप लोगों का एक होली का कार्यक्रम आया था जो बहुत बहुत मजेदार था, मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा था एक कैसेट में। तो मैं बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करता था, अमीन सयानी साहब को मैं मिमिक किया करता था। तो मुझे लगा था रेडियो में तो मैं जाके मतलब तूफान ही मचा दूंगा, फिर जैसे कार्टूनिंग में मैंने तूफान मचाया हुआ है अपने दिमाग में। तो जब रेडियो में गया और मैंने ये पूरा ऑडिशन खराब कर दिया, खराब करने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था तो जो आरजे थी, जैसा कि होता है, एक कुछ तो गलत इंफॉर्मेशन गई एकदम फट करके ऑन एयर, और मैंने कहा नहीं, ये मन्ना दे की आवाज है। तो उनके जो क्रेडिट्स थे उसमें क्रेडिट गलत गया हुआ था। तो उन्होंने बोला पक्का, मैंने कहा आप चेक कर लीजिए, इंटरनेट था, उन्होंने तुरंत चेक किया, उन्होंने तुरंत मिस्टेक करेक्ट किया। और उसके बाद वो मन्ना दे पर कार्यक्रम था और मैंने उनको लगातार ट्रिविया देना शुरू किया, वो प्रोग्राम ठीक हो गया। अब उनको लगा कि ये तो ठीक है, आया था
1: काम
0: ऑडिशन
1: का
0: देने लेकिन आदमी
1: आदमी
0: काम का है। लेकिन वो 6 महीने तक मुझे हायर नहीं कर सकते थे ऑडिशन में, अगर आपने गड़बड़ कर दी, उनका कुछ तो रूल था, वो 6 महीने तक हायर नहीं कर सकते थे। तो मैंने 6 महीने से उंगलियों पे गिने हैं, 6 महीने मुझे पता है मैंने कैसे गिना है। और मैंने ये भी दिमाग नहीं लगाया कि 6 महीने ऐसे नहीं होता है, 6 महीने वर्किंग डेज के हिसाब से होता है। मैंने 6 महीने डेट टू डेट लगा के
1: और दिन बढ़ गए इसके बाद।
0: नहीं, कम हुए, क्योंकि वर्किंग डेज के हिसाब से तो 6 महीना अगर काउंट करेंगे तो वो 7 महीना हो जाता है, सैटरडे।

0: नहीं कर सकते थे ऑडिशन में, अगर आपने गड़बड़ कर दी उनका कुछ तो रूल था, वो 6 महीने तक हायर नहीं कर सकते थे। मैंने 6 महीने से उंगलियों पे गिने, 6 महीने मुझे पता है मैंने कैसे गिना है। और मैंने ये भी दिमाग नहीं लगाया कि 6 महीने ऐसे नहीं होता है, 6 महीने वर्किंग डेज के हिसाब से होता है। मैंने 6 महीने डेट टू डेट लगा के
1: और दिन बढ़ गए इसके बाद,
0: नहीं नहीं कम हुए, क्योंकि वर्किंग डेज के हिसाब से तो 6 महीने अगर काउंट करेंगे तो वो 7 महीने हो जाता है, सैटरडे संडे हटा के, नेशनल हॉलीडेज हटा के। मैंने वो गिने ही नहीं, जस्ट जिस दिन 6 महीने पूरे हुए मैं बैठा, मैंने कॉमिक्स बनाई एक पेज की कि मैंने क्या क्या गड़बड़ किया रेडियो में आपके यहाँ आके, लेकिन मुझे दूसरा चांस चाहिए। वो कॉमिक्स बना के मैंने प्रिंट किया एक पेज का और मैंने उनको भेज दिया। तो मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया कि अच्छा आप कार्टून बनाते हैं। मैंने कहा हाँ, तो आप आके मिलेंगे हमसे। मैं वेट कर रहा था रेडियो स्टेशन से कॉल आएगी, लेकिन ये किसी एड एजेंसी से कॉल थी वो रेडियो से किसी एड एजेंसी को चला गया था मेरा मेरी कॉमिक। तो वो रेडियो की जो प्रोग्रामिंग डायरेक्टर थी, उनके हस्बैंड थे, उनकी एड एजेंसी थी, उन्होंने मुझे फ्रीलांस दे दिया। वो फ्रीलांस निपटाते निपटाते तक मुझे रेडियो से कॉल आया कि अभी 6 महीने पूरे हुए तुम्हारे, अब आ जाओ। तो वो कॉमिक्स की बदौलत मुझे थोड़ा कॉमिक्स का काम मिला, थोड़ा रेडियो का मिला, और मेरा रेडियो में पदार्पण हुआ इस तरह से। और फिर मैंने रेडियो शोज भी किए। फिर एक वही है ना कि एक फेलियर के बाद जो चमड़ी मोटी हो जाती है वो,
1: करेक्ट,
0: हाँ चमड़ी मोटी हो गई। तो रेडियो शोज भी किए, प्रोड्यूस किया बहुत कुछ, वॉइस ओवर्स किए, फिर तो शर्म भी झिझक भी चली गई माइक के सामने की। तो इस तरह से रेडियो का करियर शुरू हुआ मेरा।
1: यहाँ एक गाना सुनते हैं,
0: लिफ्ट करा दे
1: अदनान समी की आवाज़।

0: ये था इस कार्यक्रम का पहला भाग। इसका दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले।
1: आज के मेहमान।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प मोड़ शुरू होता है, ललित मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के ठीक 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम महिला जगत।

महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को सरिता चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। और हमारी बहनों कैसे हो? आशा करते हैं आप हमारी बहनों का जीवन खुशियों से भरा हो। इच्छा तमन्ना हसरतों के संग पूरे अरमानों को करना जरूरी है। बंदिशें चाहे लगे हजारों, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। बहनों, पढ़ने लिखने की आदत आपके मानसिक विकास को तेज करती है, आपके ज्ञान का दायरा बढ़ाती है और आपके बात करने के ढंग को सुधारकर आपके व्यक्तित्व को निखारती है। बहनों, आज हम बात करेंगे पढ़ने लिखने की आदत डालें अपना व्यक्तित्व निखारे पर। बहनों, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा सीखने के चार स्किल हैं। यह चार काबिलियत के सेट हैं जो किसी इंसान को सही और असरदार आपसी बातचीत के लिए बोली जाने वाली भाषा को समझने और इस्तेमाल करने में मदद करता है। पढ़ना सबसे अच्छी आदतों में से एक माना जाता है जो किसी के भी पास हो सकती है। पढ़ना लिखना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने, स्ट्रेस कम करने और हमें बेहतर मूड में रखने में मदद करता है। यह हमारी कल्पना को बढ़ाता है और हमें बहुत सारा ज्ञान देता है। यह सही कहा गया है कि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, क्योंकि पढ़ने से हमारी समझ और सोचने की काबिलियत बढ़ती है। बहनों, पढ़ने लिखने में दिलचस्पी किसी भी दूसरी आदत की तरह समय के साथ आती है, आदत का हिस्सा बन जाता है। अच्छी किताबें पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं। पढ़ने लिखने की आदत से हमारा नजरिया बड़ा होता है और जिंदगी में हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। इससे जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया भी बनता है। हम जितना ज्यादा पढ़ते हैं, हमें पढ़ने में उतना ही प्यार हो जाता है। बहनों, पढ़ना एंजाइटी कम करता है क्योंकि इससे आराम और मनोरंजन मिलता है। पढ़ने लिखने से आपको ज्यादा पॉजिटिव सोचने में मदद मिल सकती है। पढ़ना जरूरी है क्योंकि यह आपकी सोच को बदलता है और आपको बहुत सारी जानकारी और जिंदगी के सबक देता है। पढ़ना आपके दिमाग को एक्टिव हेल्दी रखता है और आपको ज्यादा क्रिएटिव बनने में मदद करता है। बहनों, पढ़ने से आपकी लैंग्वेज स्किल्स बेहतर होती हैं। पढ़ना ना सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाता है बल्कि आपकी राइटिंग स्किल्स को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। बहनों, किताबें हमें सभ्यताओं, रीति रिवाजों, कलाओं, इतिहास, हेल्थ और जिंदगी के कई दूसरे टॉपिक और चीजों की बुनियादी समझ देती है। हमारे दिमाग को हेल्दी और पावरफुल रखती है। बहनों, किताबें पढ़ते समय हम अपने मन में नए और क्रिएटिव विचार, सोच और राय बनाते हैं। हम अपने विचारों पर एनालिसिस कर सकते हैं। एक्टिव रीडिंग मन में नए आइडिया और विचार लाती है जिससे आप चीजों को एक अलग तरह से सोच पाते हैं। बहनों, किताबें पढ़ने में बहुत खुशी होती है। मैं जब किताब पढ़ती हूँ तो बहुत ही अच्छा महसूस करने लगती हूँ। ऐसा लगता है मैं एक नई दुनिया में चली गई हूँ। पढ़ते समय इतनी खो जाती हूँ और जब तक उसे पढ़कर खत्म नहीं कर लूँ, उसे नीचे रखना नहीं चाहती। किताबें पढ़ने का आनंद तभी आता है जब माहौल बिल्कुल शांत हो, जब आप बिल्कुल फ्री हो, जब आप बोर हो रहे हो। ऐसे में आप किताबें जरूर पढ़ें। कई बार मोबाइल में सोशल एक्टिविटी से बोर हो जाते हैं, ऐसे में किताबें काम आती हैं और आपको बोर होने से बचाती हैं। बहनों, हमें बाहरी दुनिया में किताबें रूबरू कराती हैं। अपनी पसंद के विषय, कहानी या जीवन परिचय वाली किताबें चुनें। बहनों,

दिन भर के अनुभव या अपने विचार कागज पर रोजाना उतारें, नए शब्द सीखें और वाक्यों को साफ व सरल लिखने का अभ्यास करें, बिना गलती की चिंता किए बगैर लिखने की आदत डालें। मैं तो ऐसा मानती हूँ, जब आप सोने जा रहे हैं उससे पहले 30 मिनट किताब जरूर पढ़िए, और ऐसी किताबें पढ़िए जो आपको खुशी दे। एक अच्छी और जानकारी देने वाली किताब पढ़ना किसी भी इंसान के लिए सबसे ज्यादा तरोताजा करने वाला और जोश भरा अनुभव होता है। सबसे अच्छी बात, किताबें पढ़ने से नींद बहुत अच्छी आती है। पढ़ने के फायदे बहुत हैं, क्योंकि इसे जो डिटेल जानकारी मिलती है वह इंटरनेट पर पढ़ी जाने वाली किसी भी चीज से बेजोड़ है। बहनों, पढ़ने से मुझे बहुत खुशी होती है और सुकून भी मिलता है। आप भी पढ़ने लिखने की आदत डालें और अपना व्यक्तित्व निखारें। बहनों, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आइए अब आपका करवाते हैं मनोरंजन और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

अभी हमारी बहनों ने सुना ये गीत। इस गीत के बाद हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन पर। बहनों, डेयरी फार्मिंग का बिजनेस हमेशा से भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है, लेकिन बदलते समय के साथ अब इसे पारंपरिक तरीके से हटकर आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने इसी मकसद से राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की है, जो पशुपालकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य स्वदेशी गायों की नस्ल में सुधार करना और दूध उत्पादन को रिकॉर्ड स्तर पर ले जाना है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत दिसंबर 2014 में की गई थी। बहनों, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य पशुओं की जेनेटिक क्वालिटी को सुधारने पर है। इसके तहत सरकार पशुपालकों को उच्च गुणवत्ता वाले सीमन और कृत्रिम गर्भाधान जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। इससे यह फायदा होता है कि आने वाली नई पीढ़ी की गायें ज्यादा दूध देने वाली और रोगों से लड़ने में सक्षम होती हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत पशुओं के लिए चारे, पानी, टीकाकरण और चिकित्सा सुविधा की पूरी व्यवस्था दी जाती है, जिससे पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। इस मिशन के तहत किसानों को कई प्रकार की वित्तीय सहायता भी दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को प्रशिक्षण भी देती है, जिससे वे बेहतर तरीके से देसी गायों की देखभाल और पालन कर सकें। साथ ही गोपाल रत्न और कामधेनु पुरस्कार जैसे सम्मान भी दिए जाते हैं, जिससे पशुपालकों को प्रोत्साहन मिलता है। बहनों, यह मिशन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह किसानों की आय में वृद्धि करने के साथ साथ भारतीय देसी नस्लों के संरक्षण को भी बढ़ावा देती है। यह मिशन आत्मनिर्भर भारत के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। बहनों, संगीत वह जादू है जो सीधे दिल को छू लेता है। जब मन उदास हो, संगीत सुकून बन जाता है, और जब मन खुश हो तो संगीत जश्न बन जाता है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

गीत सुनकर बेहद सुकून मिला। मैंने गीत सुनकर ही नहीं व्रत रखने में भी बहुत सुकून मिलता है। पूजा पाठ से घर और मन का वातावरण पवित्र होता है। मैंने सावन का महीना भगवान शिव की आराधना, व्रत और भक्ति का प्रतीक माना गया है। इस पूरे महीने बहुत से लोग सोमवार व्रत के साथ साथ नियमित उपवास भी रखते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती होती है कि हर दिन फलहार में क्या क्या बनाया जाए जो स्वादिष्ट भी हो और पौष्टिक भी। आइए आपको बताते हैं व्रत के पकवान जो आपको न केवल लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करेंगे बल्कि शरीर को ऊर्जा भी देंगे। बहनों, साबूदाने की खिचड़ी व्रत की सबसे लोकप्रिय डिश है। इसे बनाने के लिए 1 कप साबूदाना 4 घंटे भीगा हुआ, 1/2 कप भुनी दरदरी मूंगफली, 2 उबले आलू, घी 2 चम्मच, 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 8 से 10 करी पत्ते, सेंधा नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नींबू का रस और हरा धनिया बारीक कटा हुआ। बहनों, एक कढ़ाई में घी गरम करके जीरा करी पत्ते हरी मिर्च डालें, फिर कटे हुए आलू डालकर 2 से 3 मिनट तक भूनें। अब भीगा हुआ साबूदाना, कुटी मूंगफली, सेंधा नमक, काली मिर्च मिलाएं, धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट तक पकाएं। अब इसमें नींबू का रस और हरा धनिया डालकर परोस सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। बहनों, आप व्रत में सामक के चावल भी खा सकते हैं। सामक के चावल में मूंगफली, जीरा, हरी मिर्च और उबले आलू मिलाकर पुलाव तैयार कर सकती हैं। यह जल्दी बनता है और जल्दी पच भी जाता है। उपवास में एनर्जी बनाए रखने के लिए मखाने की खीर का सेवन कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए भुने मखाने, दूध, इलायची और सूखे मेवों का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी को मिलाकर साथ में पकाएं और मखाने की स्वादिष्ट खीर तैयार करके खाएं। मैंने मखाने की खीर में कैल्शियम और प्रोटीन होता है जो शरीर को स्वस्थ रखता है। मैंने सिंगाड़े के आटे की पूड़ियां भी व्रत में खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सिंगाड़े के आटे में थोड़ा उबले आलू मैश करके आटे को गूंथ लें, फिर इनकी पूड़ी बनाकर घी में सेक लें। इन्हें आप दही के साथ खाएंगे तो इनका स्वाद बेहद लाजवाब लगेगा। मैंने इस तरह से आप व्रत में खाएंगे तो आपको ऊर्जा मिलती रहेगी और आप स्वस्थ भी रहेंगी। आइए बहनों, चलते चलते आपको एक गीत और सुनवा देते हैं।

अभी हमारी बहनों ने सुनाई गीत। आशा करते हैं हमारी बहनों को गीत पसंद आया होगा। बहनों, मन तो बहुत हो रहा है आपसे यूं ही ढेर सारी बातें करते रहें, पर क्या करें, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। फिर आएंगे आपका मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत लेकर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुलकर जिंदगी को जीते रहिए। इसी के साथ सरिता चौधरी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। शाम के 5:30 होने को है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में। तो बताइए कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मौसम का आनंद ले रहे होंगे। और देखिए,

0: आज टाइम और देखिए, आज है बुधवार और टाइम है हमारे हेलो फरमाइश कार्यक्रम का। तो आइए सुनते हैं साथ में हमारे कुछ प्यारे प्यारे कॉलर्स की प्यारी प्यारी फरमाइशें।
1: हेलो
0: हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो फरमाइश में।
1: थैंक यू मैम।
0: जी बताइए, क्या नाम है आपका?
1: सतारा
0: दोबारा बताइए अपना नाम।
1: तनुश्री।
0: तनुश्री,
1: हाँ
0: जी, बड़ा प्यारा नाम है। बताइए तनुश्री, क्या करते हैं आप?
1: शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ मैम।
0: अच्छा, शास्त्रीय संगीत, ये
1: हाँ
0: तो बहुत अच्छी बात है। कब से सीख रहे हैं आप?
1: 3 साल पूरे हो।
0: 3 साल पूरे हो जाएंगे अब इस साल।
1: हाँ
0: तो कैसा लग रहा है शास्त्रीय संगीत सीखकर?
1: बहुत मैम बढ़िया लग रहा है।
0: आपकी रुचि शुरू से इसी में थी?
1: नहीं मैम, 10 साल के बाद से हो रहे।
0: अच्छा, तो वैसे अभी आप कौन सी क्लास में हैं?
1: मैम क्लास में तो नहीं पढ़ती क्योंकि 10वीं से दिखाई दे रहा बंद हो गया ना।
0: अच्छा, तो फिर आप 10th के बाद से शास्त्रीय संगीत सीखने में लग रही है ऐसा?
1: हाँ
0: अच्छा, तो कुछ गा के सुनाना चाहेंगी आप हमें?

0: बहुत प्यारा गाया तनुश्री आपने। तो अब आपको यही गाना सुनना है या कोई दूसरा गाना सुनना है?
1: गाना
0: आपको पता है कौन सी मूवी का गाना है?
1: का तो नाम पता नहीं,
0: अच्छा, और गाने का नाम पता है आपको क्या है?
1: तो आता है सीने में।
0: नहीं, गाने का नाम है कौन तुझे, ठीक है? और ये गाना है MS धोनी मूवी का, ठीक है?
1: ओके ओके।
0: चलिए ठीक है, कॉल करने के लिए धन्यवाद। और आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बोलिए कि वो हमारे पास फोन करें, ठीक है?

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो फरमाइश में।
0: जी। धन्यवाद मैडम
1: जी, बताइए क्या नाम है आपका।
0: जी। उदयलाल टेलर बात कर रहा हूँ।
1: जी बताइए, कैसे हैं आप।
0: मस्त हैं, स्वस्थ हैं।
1: और मौसम का

0: मजा ले रहे हैं?
1: मौसम का मजा ले रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है।
0: बारिश नहीं हो रही है?
1: जी
0: जी। कहाँ रहते हैं आप?
1: उदयपुर राजस्थान में रहते हैं हम।
0: अच्छा, और वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है?
1: बिल्कुल नहीं हो रही है।
0: अरे अरे, ये क्या बात हुई? ये तो मौसम है बारिश का और इसमें बारिश नहीं हो रही, बताइए।
1: नहीं हो रही है? आपके अलवर में हो रही है क्या?
0: जी, हमारे अलवर में तो हो रही है, कल ही बारिश हुई है अच्छी खासी।
1: नहीं, हमारे नहीं हुई है,
0: ये तो
1: 10 दिन हो गए सूखा चल रहा है।
0: ओहो, आप तो बहुत बढ़िया मौसम से वंचित बैठे हैं।
1: जी जी, जिलों में 1 इंच भी पानी नहीं आया इस साल।
0: अच्छा, गर्मी पड़ रही है? मतलब ऐसा तो नहीं कि मौसम ठंडा है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, ऐसा है क्या?
1: हाँ, बारिश नहीं हो रही है, मौसम तो ठंडा चल रहा है।
0: अच्छा,
1: आसपास बारिश होती है तो मौसम ठंडा हो जाता है।
0: जी, चलिए उम्मीद लगाए बैठिए, आपके यहाँ भी बारिश जरूर होगी।
1: जी, आपका आपकी दुआ होगी तो आ जाएगी।
0: जी बिल्कुल। तो बताइए कैसा काम चल रहा है आपका?
1: काम तो अभी कम है।
0: हाँ, अभी सीजन नहीं है ना शादी वगैरह का?
1: हाँ, शादियों का सीजन नहीं है तो हमारा काम भी कम चलता है।
0: जी जी, अब जब थोड़े टाइम बाद जब देव उठ जाएंगे तो उसके बाद तो खूब अच्छा खासा काम चलेगा आपका।
1: जी, उस समय तो हमें फुर्सत भी नहीं मिलेगी।
0: जी बिल्कुल सही बात है।
1: जी
0: तो बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: सावन का महीना चल रहा है तो सावन का गीत सुनेंगे।
0: जी,
1: आया सावन झूम के, उसका टाइटल सॉन्ग।
0: चलिए ठीक है, कॉल करने के लिए धन्यवाद। हम अभी आपको आपका ये गाना सुनवाते हैं।

बदरा है, बदरा छाए के झूले पड़ गए हैं कि मेले लग गए मच।

0: हाय हेलो जी नमस्कार।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो फरमाइश में। बताइए क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: मैं मैम मैं ग्राम बड़ा

0: जिला गुना मध्य प्रदेश से मांगीलाल धाकड़ बोल रहा हूँ मैम।
1: जी मांझीलाल जी, बताइए कैसे हैं आप?
0: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
1: मैं भी बहुत अच्छी हूँ।
0: जी मैम, आपका प्रोग्राम मैं सुनता हूँ
1: जी
0: और कभी समय मिल जाता है तो कॉल भी लगा देता हूँ।
1: अच्छी बात है, कभी कभार फोन कर लेना चाहिए, अपनी फरमाइशें बता देनी चाहिए, है ना?
0: जी मैम, बहुत काफी दिनों के बाद मैं जुड़ा हूँ
1: जी
0: और सुनता हूँ, मैं डेली सुनता हूँ।
1: अच्छी बात है, तो बताइए कैसा चल रहा है आपका काम?
0: मेरा काम तो अच्छा चल रहा है, खेती बाड़ी का व्यवसाय है हमारा।
1: जी जी
0: उसमें खेती में मक्का बुरा थी, उससे मक्का में लगे हुए हैं अभी तो।
1: अच्छा, मक्का फिर वो जो भुट्टा बन जाता है वही ना?
0: हाँ जी मैम जी,
1: तो फिर सर्दियों में तो भुट्टो सर्दियों क्या, खैर इस मौसम में तो भुट्टे बहुत खाए जाते हैं, आपको पसंद है?
0: हाँ जी मैम, हम तो बोलते हैं ना,
1: जी तो आप खाते भी हैं ना?
0: खाते भी हैं और चलाते भी हैं।
1: चलिए अच्छी बात है, तो
0: जी मैम,
1: बताइए।
0: और आपके प्रोग्राम सुनते रहते हैं और रेडियो से जुड़ाव है हमारा।
1: अच्छी बात है,
0: जी
1: रेडियो से जुड़ना बहुत अच्छी बात है, बताए बताइए कैसे?
0: आज ये जो रेडियो से जो आप ज्ञान प्राप्त होता है, मैं
1: मतलब ज्ञान की बात नहीं है, रेडियो बहुत टाइम से हमारे साथ है, बहुत टाइम से, शुरू से रेडियो हमारे साथ है। फोन तो चलो अभी आए हैं, इनका चलन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है आते ही। आजकल लोग रेडियो को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, पर स्टिल कुछ लोग हैं आपके जैसे जो रेडियो सुनते हैं, जिनका रेडियो में ही मन लगा रहता है।
0: जी नहीं, रेडियो साथ साथ में खेती बाड़ी करते हैं
1: जी जी
0: और साथ में रेडियो ऑन करके सुन रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं।
1: जी काम में मन लग जाता है रेडियो से, है ना?
0: जी मैम,
1: चलिए बहुत अच्छी बात है, तो बताइए
0: आप
1: कौन
0: कौन बोल
1: सा?
0: रही हैं मैम?
1: जी मेरा नाम नेहा है।
0: जी मैम जी, धन्यवाद है आपकी आवाज से अच्छा लगा मुझे।
1: चलिए सर, थैंक यू सो मच। आप ये बताइए आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
0: नए गाने का सुनवा देना, सावन के झूलों ने मुझको बुला जा।
1: चलिए ठीक है, कॉल करने के लिए धन्यवाद, हम आपको आपका गाना अभी सुनवाते हैं।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हेलो फरमाइश में। बताइए, क्या नाम है आपका?
1: जी, संदीप सोनग्रा बात कर रहा हूँ, गांव सिरसा, जिला चूरू से।
0: जी संदीप जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: जी, हम अच्छे हैं और आपके कार्यक्रम सुनते हैं तो और भी अच्छा लगता है।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं आप संदीप जी?
1: जब वैसे तो मैं सिलाई का काम करता हूँ, लेडीज
0: जी
1: सिलाई का।
0: जी जी
1: हाँ, और उनके साथ में डीजे साउंड का भी काम करते हैं।
0: डीजे सॉन्ग का
1: हाँ जी,
0: मतलब आप अपना जो वूफर वाला सिस्टम होता है डीजे को,
1: हाँ
0: वो
1: जी,
0: आप फंक्शंस में लेके जाते हैं ऐसा? अच्छा,
1: हाँ जी,
0: ये तो बहुत अच्छा काम है।
1: हाँ
0: आप
1: मैम,
0: जैसे आप अपने डीजे को ऐसे बुकिंग पे लेके जाते हैं तो आपको खुद भी मजे आते हैं गाने वाने सुन के जो आप वहाँ बजाते हैं?
1: अच्छा लगता है। गाने अपनी पसंद के भी चलाते हैं और दोस्तों की जो पसंद की फरमाइश पे जो चलाते हैं, जैसे रेडियो पे चलते हैं वैसे उनकी पसंद के गाने चलाते हैं, वो भी अच्छा लगता है।
0: चलिए, अच्छी बात है। तो बताइए, सही चल रहा है आपका काम?
1: अच्छा चल रहा है मैम।
0: अभी डीजे वीजे की तो बुकिंग इतनी नहीं आ रही होगी क्योंकि अभी शादी
1: नहीं
0: वगैरह
1: नहीं
0: नहीं
1: अभी
0: हो रही
1: अभी
0: है।
1: तो सावन का महीना चल रहा है, अभी तो ये 10वें महीने के अंदर जो देव उठने की बोलते हैं हम।
0: हाँ, जब देव उठ जाते हैं
1: हाँ
0: तब शादियाँ चालू हो जाती है ना?
1: हाँ जब शुरू होगी सारी।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बताइए, क्या फरमाइश है आपकी आज?
1: ये सुना दो फिर, मोरा फिल्म का गाना,
0: कौन सा बताइए इसका?
1: ये तू चीज बड़ी है मस्त मस्त।
0: चलिए ठीक है, कॉल करने के लिए धन्यवाद। हम अभी आपको आपका गाना सुनवाते हैं।

0: हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो फरमाइश में, बताइए क्या नाम है आपका
1: तीसरी टीम राजपूत बोल रहा हूँ। दी देरसिया जिला भोपाल से।
0: जी बताइए।

0: और पानी की बूंदे जरूर आ जाती हैं थोड़ी बहुत, 2-5-10 मिनट के लिए बस, हल्की फुल्की बस, बारिश नहीं हो रही अच्छे से बस।
1: अच्छा, बारिश नहीं हो रही है ठीक से, हमारे यहाँ तो हो रही है।
0: अच्छा, आप बहुत खुशनसीब हैं दीदी, बढ़िया बारिश हो रही है आपके
1: जी, आप भी उम्मीद लगाए बैठिए, आपके यहाँ भी बारिश जल्द हो जाएगी।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं कि दीदी आशा ही अमर है, आशा कर रहे हैं अभी गिरेगा दीदी, बारिश तो होगी खैर
1: जी,
0: बारिश
1: मौसम
0: होगी
1: बारिश का
0: कहाँ
1: ही है ना, सावन ही है तो बारिश तो जरूर होगी।
0: है। हाँ जी हाँ जी,
1: तो बताइए क्या करते हैं आप?
0: मैं दीदी आर्टिस्ट हूँ, पेंटर।
1: अच्छा, पेंटिंग करते हैं?
0: हाँ जी हाँ जी।
1: तो बताइए कैसा चल रहा है आपका काम?
0: काम बढ़िया चल रहा है दीदी, काम भी बढ़िया चल रहा है और प्लस में खेती भी है, तो गांव पर सोयाबीन भी लगा हुआ है, कुछ धान लगी हुई है।
1: जी, अच्छा ये पेंटिंग का काम आपने कब से शुरू करा?
0: इसको दीदी लगभग 15-1 वर्ष हो गया करीब।
1: अच्छा, तो आप शुरू से ही, आपको एक पेंटर बनना था?
0: हाँ स्कूल टाइम से दीदी इसी में रुचि थी, तो वो धीरे धीरे करते गए, अभ्यास होता गया, बढ़ता गया, और बस इसी में आ गए अब।
1: चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने पैशन को फॉलो करा। तो आप किस किस तरह की पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं, मतलब लोग आपके पास खुद आगे से आते हैं, आपने कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रखा है?
0: हाँ सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर रखा है, और जैसे कहीं पर भी काम करने जाते हैं तो वहाँ पर अपना कॉन्टेक्ट नंबर छोड़ देते हैं, तो फिर कस्टमर अपने को कॉल लगाते हैं, उनको जैसा काम काम
1: अच्छा,
0: की
1: तो
0: जरूरत लगती है उस हिसाब से।
1: अच्छा, तो आप वैसे सीनरीज वगैरह ड्रॉ करते हैं या पोर्ट्रेट भी बनाते
0: हाँ
1: हैं?
0: हाँ सीनरी भी बनाते हैं दीदी, राइटिंग का काम ज्यादा रहता है, लिखाई का,
1: अच्छा
0: जैसे बोर्ड बोर्ड वगैरह हुए, और ट्रावलियों पर पेंटिंग होती है हमारे इधर,
1: जी जी
0: स्कूलों में होती है, पंचायतों में नारे लिखाते हैं स्वच्छता अभियान के विषय में,
1: जी जी जी जी
0: और पेंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे काम है दीदी।
1: अच्छा, तो वैसे आपने कभी किसी का पोर्ट्रेट बनाया है?
0: हाँ वो घर पर ही बनाते रहते हैं दीदी।
1: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि आपने अपने पैशन को फॉलो करा। तो बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
0: गाना सुनवा दीजिए का दीदी, मूवी का नाम है प्यार का मौसम
1: जी,
0: और गाने की बोल है मैं सुल्ताना रे, प्यार का मौसम आया।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता एक प्रमुख पहलू है।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन की कार्यवाही में विपक्षी सदस्यों द्वारा लगातार हो रही बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। श्री रिजिजू ने दावा किया कि विपक्ष संसद का संचालन नहीं होने देना चाहता है और जानबूझकर बाधा उत्पन्न कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और अपने अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी है। तथा कथित यौम इस्तेहसाल यानी शोषण दिवस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। हमें

0: हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्स कॉर्प और गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने श्री गडकरी द्वारा दायर मानहानि के दीवानी मुकदमे में अंतरिम राहत दी है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने आज बाल यौन शोषण सामग्री, डीपफेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर रखा गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में ईशरानी बरुआ, तन्वी शर्मा, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया, अनमोल खरब और श्यांशी वली शेट्टी ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

शाम 6:10 पर आप सुनेंगे भेंटवार्ता, फिट इंडिया, युवाओं का जिम की ओर रुझान। श्री विभव शर्मा से शिव कुमार शर्मा की भेंटवार्ता। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। तत्पश्चात 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। संध्या 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम भारती, जिसके अंतर्गत चर्चा होगी बरसात के मौसम में पशुओं की देखभाल एवं आहार प्रबंधन पर। साथ में आप सुनेंगे भेंटवार्ता, वर्षा ऋतु में पशुओं का कैसे रखें देखभाल। डॉक्टर बजरंग लाल शर्मा, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय हल्दीना से भेंटवार्ता। दी जाएगी जानकारी, पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाएं। संध्या 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। रात्रि के 8:00 आप सुनेंगे संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि के 8:15 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। रात्रि के 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। तत्पश्चात रात 9:00 आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि के 9:15 से आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। रात 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, कल हमारे प्रसारण आरंभ होंगे प्रातः 5:51 से। प्रातः 6:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदनवार। प्रातः 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम झरोखा। प्रातः 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस कान। संगीत सरिता कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 6:45 पर विविध भारती के मुंबई केंद्र से। सुबह 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार अलवर। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। सुबह 8:00 आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सुबह 9:00 आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।

सुबह 9:10 से आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। दोपहर 12:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। दोपहर 1:00 आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। दोपहर 2:00 आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।

0: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। शाम के 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए भेंट वार्ता फिट इंडिया, युवाओं का जिम की ओर रुझान। श्री विभव शर्मा से शिव कुमार शर्मा की भेंट।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज के युवा फिटनेस को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। जिम और एक्सरसाइज उनकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। फिटनेस के प्रति युवाओं का बढ़ता रुझान एक स्वस्थ और ऊर्जावान समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक फिटनेस फ्रीक यानी कि फिटनेस लवर उपस्थित हैं। नाम है विभव शर्मा। इनका अपना एक डायग्नोस्टिक सेंटर है और साथ में बॉडी फिटनेस को लेकर ये काफ़ी जागरूक हैं। विभव जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच
1: जी। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप फिटनेस फ्रीक तो हैं, अब हम अपने श्रोताओं को आपकी पिक तो नहीं दिखा सकते, लेकिन आपकी आवाज़ के माध्यम से आपकी बात उन तक पहुंच रही है। विभव जी, आपका अपने एक डायग्नोस्टिक सेंटर है, तो पहला प्रश्न तो हमारा ये है कि डायग्नोस्टिक सेंटर को संचालित करने के लिए आपने कौन सी डिग्री हासिल की जिसके बाद आपने अपना डायग्नोस्टिक सेंटर खोला, और अपने सेंटर में आप कौन कौन सी जाँच करते हैं?
2: सर, सबसे पहले तो कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर जिसमें खून जांच, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, ये सब चीज़ें होती हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको एक तो यू हैव टू बी DMLT क्वालिफाइड, तो वो होता है सर लैब का डिप्लोमा, तो उसके बाद ही आप इस फील्ड में कदम रख सकते हैं। और उसके बाद मेरा तो सर पहले से ही जुड़ाव था मेडिकल से, तो थोड़ा सा उन चीज़ों में इंटरेस्ट था, तो उसके बाद DMLT मेरा हुआ, तो उसके बाद जब जाके मैंने एक डायग्नोस्टिक सेंटर ओपन किया, और उसके बाद उसमें सारे टेस्ट अपने हिस्टोपैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, इन सब से रिलेटेड सारे ब्लड टेस्ट, साथ में इमेजिंग जैसे कि CT, MRI स्कैन, ये सब चीज़ें, एक्सरे, 2D इको, ये सब चीज़ें उसमें होती है
1: जी। अच्छा, डायग्नोस्टिक सेंटर चलाने के साथ साथ आप जिम में भी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, तो जिम से आपका जुड़ाव कब हुआ और कैसे हुआ?
2: सर, एक्चुअली सबसे पहले तो आई वॉज टू स्किनी, मैं बहुत पतला हुआ करता था, इवन मेरे घर वाले भी बोलते थे कि तू बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और उसके बाद जब धीरे धीरे रुझान होने लगा, मोबाइल फ़ोन्स आने लगे, साथ में इंटरनेट आने लगा, तो उसमें चीज़ें देखने लगे कि ये बॉडी बिल्डर है और वो बॉडी बिल्डर है, तो धीरे धीरे अपने आप की बॉडी भी ट्रांसफॉर्म करने का मन हुआ। उसके बाद जिम जाते ही उसके बाद एक्सरसाइज करने लगे, धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे वो जब सब चीज़ें शरीर में आती गई और नॉलेज भी बढ़ती गई और साथ में शरीर में ट्रांसफॉर्मेशन भी होने लगी।
1: अच्छा, वर्तमान की हम बात करें तो अभी आप जिम जाते हैं?
2: जी बिल्कुल, वो तो कंसिस्टेंसी है सर।
1: तो आपका वर्कआउट रूटीन है, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि आप जिम में जाने के बाद फिर आप किस तरह से रूटीन अपनाते हैं, क्या करते हैं आप?
2: सर, सबसे पहले तो मैं अपना पर्सनली बात करूं तो जिम में मैं शाम को ही या रात को जाता हूं, पूरे अपने दिन का पूरा शेड्यूल जो ख़त्म हो जाता है, काम हो या कुछ भी ज़रूरी काम हो, उस सब निपटाने के बाद ही मैं शाम को जिम जाता हूं। तो उससे क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने दिन भर में क्या खाया है वो मेरी बॉडी में लगा हुआ है, तो उसके बाद वो मुझे एनर्जी भी देता है और साथ में

0: हल्का सा स्ट्रेस भी रहता है, बट जिम जाने के बाद वो सब निकल जाता है।
1: अच्छा, जिम जैसे जाते हैं आप, जैसे जिम में एंटर करते हैं तो उसके बाद सीधा वर्कआउट शुरू कर देते हैं या बीच में कुछ वार्म अप एक्सरसाइज भी आप होती है जिससे कि बॉडी जो आपकी एकदम शिथिल होती है वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए?
0: नहीं सर, ये बहुत बड़ी गलती है अगर कोई भी ऐसा करता है कि जिम में जाते ही सीधे एक्सरसाइज करना चालू कर देता है, तो ये आज नहीं तो कल उनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म करने वाली है। क्योंकि सबसे पहले आप जब सारा काम करके और जिम जाते हैं और वहाँ पे एंटर करते हैं, तो उसके बाद सबसे पहले आपको जिम के माहौल में ढलने के लिए वार्म अप करना ज़रूरी होता है, अपनी बॉडी को गर्म करना ज़रूरी होता है। जब तक आपकी बॉडी वार्म नहीं होगी, आपकी मसल्स को पता नहीं होगा कि वो ट्रेन होने वाली हैं, तो वो इंजरी भी कर सकती हैं। तो सबसे पहले वार्म अप जरूरी है।
1: एक सप्ताह में आप कितने दिन वर्कआउट करते हैं और कितना वक्त आपका गुजरता है जिम में?
0: सप्ताह में अगर कोई 5 से 6 दिन कर रहा है तो वो बहुत अच्छा इनफ टाइम जिसको बोलते हैं अपन हफ्ते में, क्योंकि उससे ज्यादा अगर वो कर रहे हैं तो शरीर तोड़ रहे हैं अपना, कुछ नहीं होगा। रिकवरी के बाद शरीर टूटना चालू हो जाता है अगर वो लगातार कर रहे हैं। और वर्कआउट अगर आप समय की बात करें तो लगभग मेरे हिसाब से कि एक बंदे का वर्कआउट इंडिविजुअली 45 से 50 मिनट से ज़्यादा का वर्कआउट नहीं होता है। वो जिम में बातें कर रहे हैं या वर्कआउट नहीं कर रहे, बैठे हुए हैं, तो उनका 4 घंटे भी निकल सकते हैं।
1: अच्छा, देखा कि कॉम्पिटिशन का ज़माना है, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी एक खेल को खेलते हैं और साथ में जिम भी ज्वाइन कर रखी है उन्होंने, तो उससे क्या उनको कोई विशेष फायदा होता है कि अपनी खेल के साथ साथ वो जिम में अपनी बॉडी पर भी ध्यान देते हैं?
0: सर, जिम शायद मेरे हिसाब से हर खिलाड़ी का सबसे पहला उसके खेल से और उसके वर्कआउट से रिलेटेड सबसे पहला स्टेप होता है सर। क्योंकि जिम सिर्फ आपकी बॉडी बनाने के लिए ही नहीं होता या फैट कम करने के लिए ही नहीं होता, वो आपकी एंड्योरेंस बढ़ाता है, वो आपका स्टेमिना बढ़ाता है। तो हर वर्कआउट अलग अलग सबके गोल्स के हिसाब से होता है कि मेरा गोल अगर अपना एंड्योरेंस और अपना स्टेमिना बढ़ाना है तो उस तरीके का वर्कआउट वो करेंगे, और अगर किसी का गेन करना है या वेट लॉस करना है तो उस तरीके का वर्कआउट वो करेंगे।
1: जब हम वर्कआउट की बात करते हैं तो उसके साथ फिर डाइट की भी बात होना शुरू हो जाती है कि किस तरह की डाइट व्यक्ति को लेनी चाहिए, क्योंकि जिम में काफ़ी वर्कआउट जब करते हैं तो हमारा जो शरीर है वो काफ़ी थक जाता है, उसमें काफ़ी कुछ आवश्यकता होती है, तो खाने के बारे में बताएं कि डाइट किस प्रकार की होनी चाहिए?
0: सर, डाइट का तो ये है कि अभी बहुत सारे लोग आलतू फालतू चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये भी एक सच है इन सब बातों के साथ कि कुछ जिम वाले ऐसे भी हैं जो लोगों को गलत दिशा में, सबसे पहले अपने कुछ पैसों के फायदे के लिए वो बच्चों को गलत दिशा में भेज देते हैं।
1: जी, आलतू फालतू का मतलब है कि जो सप्लीमेंट लेते हैं उनकी बात कर रहे हैं आप?
0: सर, सप्लीमेंट आलतू फालतू की चीज़ नहीं है, क्योंकि सर अगर अपन साइंटिफिकली भी देखें तो सप्लीमेंट एक डाइटरी प्रोडक्ट है, उसको अपनी जो डाइट में अपन लेते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स उनसे ही बनाया गया है। लेकिन जो आलतू फालतू की चीज़ें हैं वो थोड़ा सा उनसे ऊपर निकल जाती हैं, वो दवाइयों पे पहुंच जाती है, वो उनके लिए हानिकारक होती है। लेकिन सप्लीमेंट जो हैं वो उनको एक तरह से बहुत मदद करते हैं डाइट में ही, तो वो उनको करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कई बच्चे होते हैं सर सिर्फ प्रोटीन की तरफ भागते हैं, जबकि प्रोटीन से एनर्जी नहीं मिलती है। एनर्जी जो मिलती है वो कार्ब से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। वो बिना कार्बोहाइड्रेट्स लिए ही पूरी दिन की डाइट लेते रहते हैं और शाम को जिम में जाने के मेहनत करने की कोशिश करते हैं, जो कि होएगी नहीं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ही आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है।
1: अच्छा, बहुत से हमारे युवा साथी हैं जो शरीर को आकर्षित और सुडोल दिखाने के लिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इनका शरीर पर क्या इम्पैक्ट होता है?
0: दुनिया में एक ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एवरीथिंग टेक्स टाइम, और वो टाइम नहीं देते अपनी बॉडी को, और जल्दीबाजी में बॉडी बनाने के चक्कर में, अच्छा दिखने के चक्कर में उनकी कुछ उम्र भी नहीं होती, सिर्फ 17-18 साल के वो होते हैं, उनकी बॉडी पूरी तरीके से ग्रो भी नहीं हुई होती अभी, और वो स्टेरॉयड डाल लेते हैं, जिससे ऐसे ऐसे उसके डिमेट्स हैं मैं आपको बता भी नहीं सकता कि शुरुआती में ही उनके पिंपल्स आ जाते हैं, बैक पे पूरे एक्ने हो जाते हैं।
1: तो क्या ये खतरनाक शॉर्टकट तरीका है?
0: सर, ये खतरनाक नहीं है, एक्चुअल में ये बहुत खतरनाक तरीका है। एक्चुअल में लोगों को पता नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं अपनी बॉडी के साथ। इतने गंदे गंदे स्टेरॉइड्स मैं आपको बताऊं सर, इंजेक्टेबल भी होते हैं, ओरल भी। ओरल जैसे हो गए, लोग घुसते ही सबसे पहले ले लेते हैं डायनाबॉल, वो आपकी बॉडी को इतना गंदे तरीके से ख़राब करने लगता है। हाँ, वो आपका साइज़ बढ़ा देगा कुछ दिनों में ही, जो काम आपके शायद 6 महीने 1 साल में हो रहा है वो काम आपका महीने भर में कर देगा। बच्चे खुश हो जाएंगे

0: ये तो हमारी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई, बट ऐसा नहीं है। उसके बाद जो साइड इफेक्ट्स आएंगे, और इंजेक्टेबल भी ले लेते हैं कहीं, तो डेका हो गया सर, ट्रेन हो गया, वो इतने गंदे गंदे होते हैं कुछ, तो सर मैं आपको बता नहीं सकता। जो इंजेक्शन अपन रेस वाले घोड़े को लगाते हैं ना, वो भी कई बंदे जिम में इनके इंजेक्शन ले रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि अभी माइंडसेट किस लेवल का हो गया है, सिर्फ एक वो दिखावटी बॉडी के लिए, एक वो शो ऑफ के लिए, जो उनको बहुत ज्यादा हार्म करने वाली है आने वाले समय में, और अंदर से खोखला करने वाली है। अगर अपन बात करें और ज्यादा, तो आगे जाके आपको पता होगा इनकी जो फिजिकल लाइफ होती है, फैमिली लाइफ, वो भी बहुत ज्यादा खत्म हो जाती है, बिल्कुल मतलब नील आ जाती है वो।
1: हमने देखा है जीवन में बहुत सारे लोगों को एडिक्शन होता है, किसी को सिगरेट पीने का होता है, तंबाकू सेवन का होता है, किसी को अल्कोहल का होता है, किसी को चाय का होता है। तो हम बात करें जिम की, तो या क्या ये भी एक प्रकार का नशा एडिक्शन है कि कई बार व्यक्ति जब जिम नहीं जाता तो उसको अजीब सा लगता है कि आज मैं जिम नहीं गया तो आज कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है।
0: ये एडिक्शन बहुत अच्छा एडिक्शन है, जैसे वो कहते हैं ना कि कैड आता है कि दाग अच्छे हैं, तो ये एडिक्शन बहुत अच्छा है। आप अपने फिटनेस को लेके, आप अपने बॉडी को लेके इतने ज्यादा अवेयर हैं, इससे बेटर कुछ भी नहीं है। बस इतना ही है कि गलत चीजों की तरफ मत बढ़िए। हर चीज की एक एज होती है, और हर चीज का एक समझ के साथ अगला स्टेप होता है। बट ये एडिक्शन बहुत अच्छा है, कोई अपने शरीर पे इतना ध्यान दे रहा है। आप 24 घंटे में से अगर शरीर के लिए एक घंटा भी निकाल पा रहे हैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन से, या कह सकें कि आप कहीं ना कहीं 1-2% में आ रहे हैं, ये भी हर कोई नहीं करता।
1: जो जिम जाते हैं उनका शारीरिक बदलाव तो दिखाई देता है कि काफी उनका शरीर काफी मतलब अच्छा सुडौल हो जाता है। उसका जो मानसिक प्रभाव है वो किस प्रकार का होता है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा समझाइए।
0: सर कहीं ना कहीं अपन जब वर्कआउट करते हैं और अपनी बॉडी के लिए इतना इतना टाइम निकालते हैं पर डे, कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी रखते हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं सर माइंड से भी ग्रो करता है। आपका माइंड शार्प होने लगता है और हर चीज़ को लेके आप अवेयर होने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत अच्छी है कि इसका असर शरीर के साथ साथ माइंड पर भी उतना ही रहता है, क्योंकि आपके बॉडी में जब आप वर्कआउट करते हैं तो हर चीज़ को लेके कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी के बाद अवेयरनेस इतनी बढ़ती है कि वो अवेयरनेस आपका माइंड हर किसी चीज़ में अवेयर होने लग जाता है।
1: प्रायः देखने में आता है कि जिम में एक कोच भी होता है जो सबकी हेल्प करता है कि उसको कैसे करना है, कौन सा सही तरीका है। आपकी हम बात करें तो आप इंडिविजुअली अपने आप करते हैं या आप कोच की सहायता अभी भी लेनी पड़ती है आपको?
0: सर एक्चुअल में इंडिविजुअली अगर अपन बात करें तो पहले तो जब जिम में सबसे पहली बार मैं गया था तो मुझे एक्सरसाइजेज ही नहीं पता थी कि कौन सी रहती है, कौन कौन से पार्ट्स बॉडी के ट्रेन करने होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हमारी जिम में जो सीनियर हुआ करते थे, ट्रेनर हुआ करते थे, उन्होंने थोड़ा सा बताया कि ऐसे होता है। फिर धीरे धीरे धीरे धीरे हमको खुद को ही समझ में आने लग जाता है कि ऐसे वर्कआउट होता है, ऐसे एक्सरसाइज होती है, ये पार्ट ट्रेन होता है और साथ में ये करना चाहिए। तो उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे अब एक्सपीरियंस जब हो जाता है धीरे धीरे, तो फिर उसके बाद सारी चीज़ें माइंड में सेट हो जाती हैं और बॉडी को भी आदत पड़ जाती है। और जैसे कहते हैं ना, गंदे नशे होते हैं, जब आप उनको ज़्यादा कर लेते हैं उसके एडिक्ट हो जाते हैं तो वो शरीर मांगने लग जाता है। तो ऐसे ही अगर आप 3-4 दिन 10 दिन वर्कआउट ना करें तो शरीर भी कहने लगता है कि यार मेरे को थोड़ा सा थका तो दो।
1: ऐसे हमारे बहुत से युवा साथी हैं जो जिम जाना चाहते हैं लेकिन अभी तक हिम्मत नहीं कर पाए, हिम्मत जुटा नहीं पाए। उनको ये लगता है कि जिम जाने का मतलब है कि भारी वजन उठाना, यही जिम में होता है। तो आप उन्हें बताइए कि जिम जाने का मतलब सिर्फ भारी वजन उठाना ही नहीं होता, इसका मतलब और भी कुछ होता है।
0: सर एक्चुअली क्या है कि जिम का मतलब भारी वजन उठाना ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप जिम जा रहे हैं तो सबसे पहले तो मजे के लिए जिम मत जाइए। अपना कोई शरीर को लेके या माइंड को लेके गोल सेट करके अगर आप जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, आप इधर उधर भटकेंगे नहीं। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप वेट लॉस करने ही जाएंगे, और अगर आपको अपना मसल गेन करनी है या साइज बढ़ाना है, अट्रैक्टिव दिखना है, तो आप वही गोल लेके जाएंगे तो साथ में बढ़िया रहेगा। और रही बात ज़्यादा हैवी वेट मारने की, तो एक वर्ड हमारी जिम में यूज़ करते हैं सर, ईगो लिफ्टिंग। दूसरों को देख के कि कोई बड़ा है मुझसे और वो ज़्यादा उठा रहा है, 150 मार रहा है, 200 मार रहा है, तो मैं भी मारूं, तो वो चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हर बॉडी की एक पोटेंशियल रहता है, समय के साथ वो बढ़ता भी है और कम भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अपना जो एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से उठाएं, क्योंकि ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल नुकसान देने वाली है। आपकी LS स्पाइन पे, आपकी जॉइंट पे कब फर्क पड़ जाएगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा। और कुछ

0: आप देखते होंगे सर वीडियोस में भी इतनी गंदी गंदे तरीके से इंजरीज होती हैं बॉडी में, जब आप ईगो लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, जबरदस्ती का वेट मार रहे होते हैं जो आपकी बॉडी को सूट ही नहीं कर रहा है, तो वो चीजें कभी भी नहीं करनी चाहिए। मेरा तो बस यही कहना है कि ईगो लिफ्टिंग की तरफ तो अपन को जाना ही नहीं है, क्योंकि किसी के लिए सर 20 kg वेट भी भारी है और किसी के लिए 40-50 का डंबल भी भारी नहीं है।
1: वो कहा जाता है ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और जब हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो फिर हमारा इंडिया फिट रहेगा, हमारा देश तरक्की करेगा, हमारे देश का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
0: सर ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है कि सबसे पहले आपका अगर शरीर ही सही नहीं है तो दिमाग तक तो आप पहुंचेंगे ही नहीं, अपने अगले कामों की तरफ तो आप जाएंगे ही नहीं। सबसे पहले तो शरीर है सर, सबसे पहले तो शरीर आपका सही है, जब आप बाकी चीजें सेकेंडरी है, प्राइमरी शरीर है, तो शरीर तो सबसे पहले स्वस्थ होगा जब ही आप आगे के काम अच्छे से कर पाएंगे, आप मस्तिष्क स्वस्थ होगा।
1: अच्छा, ऐसे युवा साथी जो इस समय हमें सुन रहे हैं और वो जिम जाने की कोशिश करना चाहते हैं, मतलब सोचते तो रोज हैं कि कल से हम जाएंगे, अगले वीक से जाएंगे, जा नहीं पा रहे हैं, तो उनको जागृत करने के लिए उनको क्या कहना चाहेंगे आप, जिससे कि उठ के दूसरे दिन वो जिम जाना शुरू कर दें?
0: युवा जो हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपको अच्छा दिखना है और अंदर से अच्छा रहना है, अच्छा फील करना है, और सबसे बड़ी बात युवाओं के लिए ये होती है कि अपन अच्छे कपड़े पहनते हैं ताकि अच्छे दिख सके, तो इसीलिए अगर अच्छा दिखना है, कोई आपसे आगे पूछे कि भाई आपको कितना समय हो गया और आप कौन सी जिम जा रहे हो, कब वर्कआउट करते हो, क्या खाते हो, आप अलग दिखना चाहते हो, तो आपको खड़े होके जिम जाना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। ऐसे घर बैठे पैसा आ सकता है, घर बैठे शरीर नहीं बन सकता सर।
1: जिम जाने वाले व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसकी हम बात करें तो वो कॉन्फिडेंस उनमें कितना होता है?
0: जिसकी चेस्ट अच्छी होती है ना सर जिम में, उसको बोलते हैं, चेस्ट को हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस। तो जिसकी चेस्ट अच्छी है ना सर, उसको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस है, और जिसके शोल्डर वाइड है ना सर, वो है डोमिनेंस। वो डोमिनेट कर रहा है, 10 बंदों में खड़ा हुआ है ना अगर वो, तो वो डोमिनेट कर रहा है उनको। तो अगर आपको अच्छा दिखना है और अपने को अच्छा फील करवाना है, कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाना है, तो अपने जिम आके और मेहनत करो और अपने चेस्ट बनाओ, और शोल्डर बनाओगे तो डोमिनेट करोगे।
1: जिम जाने वाला व्यक्ति दूर से दिखाई देता है कि ये जिम जाने वाला व्यक्ति है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो उससे कुछ लोग तो वैसे भी दूर रहते हैं, ज्यादा कुछ उसके साथ कहते हैं ना, कई बार कुछ दंगा फसाद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उससे कुछ दूर रहने की कोशिश करते हैं, लगता है ऐसा आपको?
0: सर ये बिल्कुल ये सच बात है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक्चुअली क्या है कि मैंने कहा ना अभी, वो शोल्डर जिसके चौड़े हैं वो डोमिनेट कर रहा है जी। अभी तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला है और कहीं लड़ाई दंगा हो गया है, तो वो बिना कुछ बोले ही डोमिनेट कर रहा है। बाकी के 9 जने उन 10 जनों में ऑटोमेटिकली उससे डर रहे हैं कि ये, इससे अपन को कुछ फालतू नहीं बोलना है, चाहे वो बंदा लड़ाई करने वाला हो या ना हो, पर वो डोमिनेट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने कहा कि जिम जाने वाला बंदा अलग ही दिखता है, तो सर इससे मैं थोड़ा सा 90% आपकी बात से सहमत हूँ, पर 10% ऐसा है कि कई बार कुछ लोग मजे के लिए जिम जाते हैं, कुछ लोग अपना टाइम पास करने के लिए जिम जाते हैं, वो जिम जाके भी सीरियस नहीं है, और ना अपनी डाइट को लेके सीरियस है और ना ही अपने वर्कआउट को लेके सीरियस है। और जो लाइफ में किसी भी फील्ड में किसी भी अपने काम को लेके सीरियस नहीं है, तो वो काम उसका कंप्लीट नहीं होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी हैव सीन कि ये कंप्लीट नहीं होता है। तो ऐसे ही मैं बहुत से बंदे देखता हूँ जो जिम रेगुलर आ रहे हैं, पर वो मस्ती करने जिम आते हैं, वो जिम करने जिम नहीं आते, तो उनकी बॉडी नहीं बनती है। और ये फैक्ट है कि उनकी बॉडी नहीं बनती, उनके शरीर में फर्क भी नहीं आता।
1: बातचीत के अंत में फिटनेस को लेकर युवा साथियों के लिए आपके पास क्या मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे हमारे युवा साथियों से कि फिटनेस क्यों जरूरी है?
0: लास्ट में सर यही कहना चाहूँगा मैं कि जिम बहुत ज़रूरी है। जिम आप बॉडी बनाने ही मत जाइए, बट अपने शरीर के लिए जाइए, आप फिटनेस के लिए जिम जाइए, और गलत चीज़ों में मत पड़िए। मैं लैब से हूँ, मुझे पता है जब कुछ जिम वाले बंदों की, जब वो स्टेरॉइड्स लेके गलत कदम उठाते हैं और मतलब जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में, तो उनकी सर हम रिपोर्ट्स देखते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, उनकी किडनी में क्रिएटिनिन बिल्कुल बढ़ चुका होता है, 5 point something, 4 point something, और लिवर में SGOT, SGPT, लिवर के फंक्शंस होते हैं सर, SGOT, SGPT, एल्कलाइन फॉस्फेट, वो इतने ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं, लिपिड प्रोफाइल उनका बढ़ जाता है क्योंकि ऑयली चीज़ें इतनी खा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी। फिटनेस सिर्फ जिम जाना ही नहीं होता,

0: फिटनेस आपकी डाइट मेंटेन करना होता है। बाहर के खाने को कभी कभार खाना चलता है। फिटनेस का मतलब होता है अपनी बॉडी पे ध्यान देना, अब आइदर वो आप जिम में दे रहे हैं या जिम के बाहर दे रहे हैं।
1: तो श्रोताओं, ये हम बात कर रहे थे वैभव शर्मा से, जो डायग्नोस्टिक सेंटर में काम करने के साथ साथ एक फिटनेस फ्रीक भी हैं और फिटनेस पसंद व्यक्ति भी हैं। तो वैभव जी, आज आप स्टूडियो में आए और आपने फिटनेस के बारे में जो जानकारी और बातचीत की, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे मुझे स्टूडियो में बुलाया। मेरी वजह से अगर किसी एक दो बंदों को भी अगर कुछ समझ में आता है और वो अपने फिटनेस की तरफ जाते हैं तो आई विल बी डेफिनेटली थैंकफुल।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता फिट इंडिया, FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी कई बार बाधित हुई। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान में देश भर में सबसे अधिक 62,58,000 से ज्यादा किसानों का नामांकन। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संत रविदास के समता, सद्भावना और समरसता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 विपक्ष के हंगामे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये विधेयक सदन में पेश किया। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के शोर शराबे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सदन की कार्यवाही नीट सहित अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बार बार बाधित हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने सभी सदस्यों से संसद के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
1: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। इसके साथ ही मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर 5.25% पर यथावत रखने का फैसला किया है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मजबूत मांग के कारण देश की आर्थिक वृद्धि जारी है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026-2027 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित

0: महंगाई का अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि हाल में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी रही। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि देश में अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं, इनके सुरक्षा फीचर्स और अन्य ब्यौरा जल्द साझा किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। अदालत ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की हिंसक प्रतिक्रिया देने से स्थिति और बिगड़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में सीजेपी की अगुवाई में हुए प्रदर्शनों के दौरान पत्थरबाजी के आरोप भी शामिल हैं। इसके लिए पार्टी की कथित जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में खेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से नई दिल्ली में मुलाकात की। श्री बिरला ने कोटा के खेल स्टेडियम में दो नए एथलेटिक्स ट्रैक बनाए जाने की आवश्यकता बताई। साथ ही कोटा को खेल प्रतिभाओं के सशक्त केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने पर भी चर्चा की। केंद्रीय खेल मंत्री ने श्री बिरला को कोटा में सुविधाओं के विकास के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और देश भर में विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रधानमंत्री आवास योजना लखपति दीदी और वीबी रामजी के तहत प्रदेश में हुए कामों की सराहना की है। श्री बागड़े ने आज लोकभवन में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से गांवों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने गांवों में हस्तकलाओं और कौशल विकास से जुड़े कामों के प्रशिक्षण के लिए समुचित व्यवस्था किए जाने की बात कही। श्री बागड़े ने मानसून के दौरान ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने पर भी जोर दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का व्यापक क्रियान्वयन हुआ है। राजस्थान में इस योजना में देश में सबसे ज्यादा 62,58,000 किसानों को नामांकित किया गया है। पीएम फसल बीमा योजना में साल 2025-2026 में राज्य की लगभग 2,82,00,000 हेक्टेयर सकल फसली क्षेत्र में 1,00,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र को बीमित किया गया, जो राज्य के कुल फसली क्षेत्र का 36% है। योजना में चूरू में 77%, बाड़मेर में 69% और नागौर में 47% सकल फसली इलाके का बीमा कवरेज हुआ है। पिछले 5 सालों में किसानों की ओर से 4,650 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रीमियम हिस्सा जमा किया गया है, जो देश भर में सबसे अधिक है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को सूखा, अकाल, ओलावृष्टि, कीटों और बीमारियों के कारण फसल को हुए नुकसान की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। योजना के तहत किसान राज्य और केंद्र सरकार मिलकर प्रीमियम का भार वहन करते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को देने के उद्देश्य से जोधपुर डिस्कॉम की ओर से कैंप लगाए जा रहे हैं। डिस्कॉम में सहायक अभियंता हेमेश जोशी ने बताया कि लोग इसका फायदा उठाकर बिजली के बिल को न्यूनतम कर सकते हैं।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत हर 3 किलोवाट तक अधिकतम 70,000 की सब्सिडी है। सरकार की यह मंशा है कि अधिक से अधिक घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर लगाया जाए। जिन लोगों ने यह रूफटॉप सोलर लगा दिया, जिनको सब्सिडी मिल गई है, उनको सरकार द्वारा इंडक्शन कुकटॉप भी दिया जा रहा है, ताकि गैस से लोगों की जो उपलब्धता है वो खत्म हो गए और लोग लाइट की तरफ बढ़े, जिनके सोलर पे बिजली का जनरेशन हो रहा है। सरकार द्वारा और बैंक के द्वारा भी इसके अंदर सस्पेंड को लोन दिया जा रहा है। इस योजना का अधिक से अधिक लाभ ले।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थी नेमाराम ने बताया कि उनका बिजली का बिल शून्य हो गया है। साथ ही उन्हें सरकार की ओर से इंडक्शन कुकर की भी

0: सौगात मिली है।
1: मैं नेमारा प्रजापत शिव नगर पाली, मैंने पीएम सौर घर ऊर्जा का सोलर प्लांट लगाया, जिसमें मेरे को पहले 12,000 लाइट का बिल आता था, अब एक साल से मुझे 0% बिल आता है और 78,000 की सब्सिडी मिली, और आज मुझे सोलर प्लांट का ये सोलर चूल्हा भी मिला है। जनता से आह्वान करूंगा आप इस सोलर ऊर्जा लगाएं।
0: संत रविदास जी की 650वीं जयंती के मौके पर प्रदेश में आज से समरसता संकल्प अभियान कलश वंदन यात्रा की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के एसएमएस स्टेडियम से यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि ये यात्रा संत गुरु रविदास जी के सामाजिक समता, सद्भाव और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। श्री शर्मा ने कहा कि संतों ने हमेशा समरसता का भाव दिखाया है और समाज को दिशा देने का काम किया है।
2: हमारी संस्कृति में हमेशा से रहा है कि हमारे संत मुनि महंत ऋषि महर्षियों का हमेशा सम्मान रहा है, क्योंकि इन्होंने हमारे राष्ट्र को दिशा देने का काम किया है, और ये आज से नहीं सदियों से है। हम ऐसे संतों का, मुनियों का, महंतों का सम्मान करते हैं। मित्रों, ये भारत की सनातन सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का महापर्व है।
0: हनुमानगढ़ में आज महिला सुरक्षा हेल्पलाइन शुरू की गई है। बीकानेर रेंज की डीआईजी श्वेता धनकड़ ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि महिलाएं किसी भी तरह के उत्पीड़न, छेड़छाड़ होने पर हेल्पलाइन पर संपर्क कर तत्काल पुलिस सहायता प्राप्त कर सकती हैं।
3: पूरे प्रदेश भर में राज्य स्तरीय महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में आज पुलिस लाइन परिसर में और जिला हनुमानगढ़ में महिलाओं से वाद संवाद किया गया, और साथ में जो एक नवाचार जो स्टार्ट किया गया है वो है महिला से सेफ्टी अभियान से रिलेटेड। हमने हेल्पलाइन नंबर सभी को बताया है, वो इस नंबर पे फोन करेंगी, मिस कॉल करेंगी, उनके पास वापिस में कॉल जाएगा, उनके पास कोई भी सूचना है वो फ्री होकर जो है बता सकती है पुलिस को, और जहां भी वो बताएंगी उस पर कार्यवाही की जाएगी, उनका नाम और उनकी जो सूचना है गोपनीय रखें।
0: और अब मौसम। पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्र के ऊपर कल से नया परिसंचरण तंत्र बनने के आसार हैं। इससे मॉनसून के फिर से सक्रिय होने और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। 7 से 10 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। वहीं कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश के भी आसार हैं। मौसम विभाग ने कल 17 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच भरतपुर में आज भी घनघोर घटाएं छाई रहीं, तो सुबह से ही कभी हल्की तो कभी तेज बरसात का दौर चला। नदबई, भुसावर, वैर और बयाना में भी कुछ देर झमाझम बारिश हुई। डीग में भी पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश हो रही है। उधर सवाईमाधोपुर में रिमझिम बरसात से मौसम सुहावना बना हुआ है। हालांकि जल संसाधन विभाग के अनुसार इस मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 10% कम बरसात हुई है। 5 जिलों में अत्यधिक पानी बरसा है, वहीं 19 जिलों में सामान्य और 17 जिलों में सामान्य से भी कम बरसात दर्ज की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी कई बार बाधित हुई। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान में देश भर में सबसे अधिक 62,58,000 से ज्यादा किसानों का नामांकन। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संत रविदास के समता, सद्भावना और समरसता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से दौसा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। राजधानी जयपुर से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित दौसा शहर का एक नाम देवनगरी भी है। आभानेरी स्थित चांद बावड़ी दौसा जिले की आभा को बढ़ाती है और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। वहीं चांद बावड़ी परिसर में मौजूद हर्षद माता का मंदिर अपनी स्थापत्य कला का एक अनूठा नमूना है। पहाड़ियों और जल स्रोतों से भरपूर झांजीरामपुर मंदिरों के लिए जाना जाता है। वहीं जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी आस्था का

0: प्रमुख केंद्र है। इन दिनों मॉनसून की बारिश के बाद ये पर्यटन स्थल लोगों का ध्यान लगातार आकर्षित कर रहे हैं। एक ओर मौसम सुहावना हो गया है, वहीं दूसरी ओर किसानों ने अपने खेतों में खरीफ फसल की बुवाई शुरू कर दी है। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने दौसा में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बीते दिनों पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत दौसा आए, उन्होंने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने पर दो अधिकारियों को निलंबित भी किया। मंत्री ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना और खुरपका मुंहपका टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने गोवंश संरक्षण और पशुपालकों के हितों से जुड़ी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने की चेतावनी दी। ग्रामीण सेवा शिविर जिले में आमजन के लिए राहत का माध्यम बना। पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा की ग्राम पंचायत निजामपुरा में लगाए गए शिविर के दौरान स्वामित्व योजना के तहत अरण्यकला गांव के लाभार्थियों को उनके पुश्तैनी मकानों के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज और पट्टे प्रदान किए गए। लाभार्थियों ने कहा कि अब उन्हें अपने मकान का वैध स्वामित्व प्रमाण मिलने से बैंक ऋण सहित विभिन्न सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर सिकराय पंचायत समिति की मानपुर पांचोली और ठीकरिया ग्राम पंचायत पहुंचे। उन्होंने वहां औचक निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। ग्रामीणों से बातचीत के दौरान मिली शिकायतों पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। श्री दिलावर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने महवा के समलेटी गांव में आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने महवा केंद्रीय बस स्टैंड के नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण कामों का भी लोकार्पण किया। श्री बैरवा ने कहा कि आयुर्वेद महाविद्यालय बनने से क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार और विकास के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और आयुष सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया। जिले में आयोजित रोजगार उत्सव में बड़ी संख्या में नवचयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र और स्वागत किट वितरित किए गए। ये कार्यक्रम पचपदरा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह से वर्चुअल माध्यम से जुड़ा रहा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में आधारभूत संरचना, उद्योग, पेयजल और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि ईसरदा पेयजल परियोजना पूरी होने के बाद दौसा जिले को भी इसका लाभ मिलेगा। जिला प्रभारी सचिव पीसी किशन ने नगर परिषद परिसर में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में लाभार्थियों को पट्टे, नामांतरण पत्र, भवन निर्माण स्वीकृति और अन्य दस्तावेज वितरित किए। उन्होंने कहा कि शहरी सेवा शिविरों का उद्देश्य विभिन्न सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना और आमजन की समस्याओं का तुरंत समाधान करना है। प्रभारी सचिव ने पट्टा प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने तथा शिविरों में ही अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी के साथ दौसा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है प्रादेशिक समाचार। पहली आजरी खास खास खबरां। संसद रात दोनों सदनारी कार्यवाही न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विपखरा हंगामा रे चालता आज भी कई बगत रोकनी पड़ी। रिजर्व बैंक रो इन माली बरस माए जीडीपी बढ़ोतरी दर 6.7% रहबारू अंदाजो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे तहत राजस्थान माए देश भर माए सबू बत्ता 62,58,000 कास्कारा रो नामांकन। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संत रविदास रा समता, सद्भावना और समरसता रा संदेश ने लोगा ताई पुगाबारी बात कही। समाचार आ रहे सागे, मैं रचना पारीक और अब है

0: चार विगतवार लोकसभा में आज बैंकर्स बुक एविडेंस विधेयक 2026 विपक्ष रा हंगामा रे बीच बिना चर्चा रे पारित कर दियो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ओ विधेयक संसद में सदन में पेश करियो एंड्रो लगस बैंकारा रिकॉर्ड सु जुड़िया साक्षारा कानून ने मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था रे मुजब बनानो है एंड्रे मार्फत बैंकिंग प्रणाली री हाल री जरूरत आरे मुजब कानूनी ढांचा ने आधुनिक बनायो जावेला विधेयक माए ओ भी प्रावधान है के बैंकारा रिकॉर्ड री इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति ने अदालत माए वैध और कानूनी साक्षी रा रूप माए मान्यो जावेला लोकसभा री कार्यवाही विपक्ष रा शोर शराबा री वजह काल तई रे वास्ते रोक दी गई इनसु पहली सदन री कार्यवाही नीट समेत दूजा मुद्दा माथे विपक्ष रा हंगामा रे चलता आज भी बार बार रुकनी पड़ी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रश्नकाल शुरू कर बारी कोशिश करिया वणा सगला सदस्यों संसद ने चोखी तरीकाओं चला बामाए इमदाद कर बारी अरज करी
1: संसद चर्चा संवाद के लिए आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन करकर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं
0: राज्यसभा माए पहला स्थगन रे पछे सभापति सीपी राधाकृष्णन प्रश्नकाल शुरू करिया सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कया के देश रा न्यारा न्यारा हल्का माए ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान थापित करिया जावेला सरकार 300 इणभातरा संस्थाना ने मंजूरी दे चुकी है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई चालू माली बरस माए देशरी माली दर रो अनुमान बढ़ार 6.7% कर दियो है इनरस आ गई मौद्रिक नीति समिति रेपो दर 5.25% जो कि त्यों राखबारो फैसलो करियो है आरबीआई रा गवर्नर संजय मल्होत्रा आज मौद्रिक नीति रो ऐलान करियो वे कया के 32 मांगरी वजह सु देशरी आर्थिक वृद्धि जारी है भारत दुनिया री सबू तेजी सु बढ़ती वी अर्थव्यवस्था बण्यो वयो है चालू माली बरस री अप्रैल जून तिमाही माए अर्थव्यवस्था रो प्रदर्शन उम्मीद सु बत्तो रियो रिजर्व बैंक माली बरस 2026-27 खातर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माथे आधारित महंगाई रो अंदाजो 5.1% सु घटार 5% कर दियो श्री मल्होत्रा कया के हाल ताई महंगाई बदबारो खास कारण खाबा और ईंधन री कीमता माए बढ़ोतरी है पश्चिमी एशिया माए चाल री लड़ाई री वजह सु व्यापार रा खास रास्ता माथे घणो असर पड़ियो है जिनसु दुनिया भर माथे माली दबाव पड़ियो है रिजर्व बैंक रा गवर्नर कया के देश माए आवता माली बरस री शुरुआत माए प्लास्टिक रा नोट चलन माए आ जावेला मुंबई माए संवाददाता सम्मेलन माए वणा कया के प्लास्टिक रा नोट बत्ता टिकाऊ होवे है सर्वोच्च न्यायालय कयो के युवा छात्र प्रदर्शनकारिया ने लेर आपरा विचार राखता टेम अहलकारा ने संयम बरतनो चाहिजे अदालत कयो के हिंसा ने रोकबा खातर किणी भी भांतरी

0: ਆਪਰਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਟੇਮ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਯਮ ਵਰਤਣੋ ਚਾਹੀਜੇ। ਅਦਾਲਤ ਕਹੋ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਰੋਕਬਾ ਖਾਤਰ ਕਿਣੀ ਵੀ ਭਾਂਤਰੀ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਸੋਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕੇ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਨਿਆਇਆਧੀਸ਼ ਨਿਆਇਮੂਰਤੀ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤਰੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੀਠ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਯਾਚਿਕਾ ਮਾਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਤਾ ਥਕਾਂ ਆ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੀ। ਯਾਚਿਕਾ ਮਾਏ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਲਕਾ ਮਾਏ ਸੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਾਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਵੀ ਫੇਲਾ ਹੈ। ਇਨ ਖਾਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਕੋਟਾ ਮਾਏ ਖੇਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜਾਵਾ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਲ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਸੂੰ ਨਈ ਦਿੱਲੀ ਮਾਏ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਕੋਟਾ ਰਾ ਖੇਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮਾਏ ਦੋ ਨਯਾ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਟ੍ਰੈਕ ਬਣਾਵਾ ਜਾਬਾ ਮਾਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਤਾਈ। ਸਾਥੇ ਹੀ ਕੋਟਾ ਨੇ ਖੇਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਰਾ ਰੂਪ ਮਾਏ ਬੜਾਵਾ ਖਾਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਵਾ ਮਾਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕੋਟਾ ਮਾਏ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜਾਵਾ ਖਾਤਰ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਬਾਰੀ ਆਸ ਬੰਧਾਈ। ਵੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਬੜਾਵੋ ਦੇਵਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਮਾਏ ਵਿਸ਼ਵ ਸਤਰੀ ਖੇਲ ਸੁਵਿਧਾ ਰਾ ਵਿਕਾਸ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ये समाचार आप आकाशवाणी राजयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जोर शोरू चाल रही है। राजस्थान माए इन योजना माए देश माए सबू बत्ता 62,58,000 कासकाना ने नामांकित करियो गयो है। पीएम फसल बीमा योजना माए बरस 2025-26 माए राज्य री करीब 2,82,00,000 हेक्टर सफल फसली हलका माए 1,00,00,000 हेक्टेयर हलको बीमित करियो गयो है, जो राज्यरा कुल फसली हलका रो 36% है। योजना माए चूरू माए 77, बाड़मेर माए 69 और नागौर माए 47% सकल फसली इलाका रो बीमो कवरेज भी है। लारला 5 साल माए कासकारा रिकानी हूँ 4,650 करोड़ रुपया सू बत्ता रो प्रीमियम हिस्सो जमा करायो गयो है, जो देश भर माए सबू बत्तो है। ध्यान जोग है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कासकारा ने सूखा अकाल ओला पड़बा कीट और बीमारिया री वजह सु फसल ने व्या नुकसान ने माली सुरक्षा देवे है। योजना रे तहत कास्तकार राज्य और केंद्र सरकार मिलर प्रीमियम रो भाव उठावे है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना री जानकारी बत्ताऊ बत्ता लोगा ने दे बारा लगा सू जोधपुर डिस्कामरी कानियो कैंप लगाया जा रहा है। डिस्कामरा सहायक अभियंता हेमेश जोशी बताया के लोग इनरो फायदो उठार बिजली रा बिल माए कमी ला सके है।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत हर 3 किलोवाट तक अधिकतम 70,000 की सब्सिडी है। सरकार की यह मंशा है कि अधिक से अधिक घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर लगाया जाए। जिन लोगों ने यह रूफटॉप सोलर लगा दिया, जिनको सब्सिडी मिल गई है, उनको सरकार द्वारा इंडक्शन कुकटॉप भी दिया जा रहा है, ताकि गैस से लोगों की जो उपलब्धता है वो खत्म हो गए और लोग लाइट की तरफ बढ़े, जिनके सोलर से बिजली का जनरेशन हो रहा है। सरकार द्वारा और बैंक के द्वारा भी इसके अंदर सस्पेंड को लोन दिया जा रहा है, इसकी योजना का अधिक से अधिक लाभ ले।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना रा लाभार्थी नीमाराम बतायो के वारो बिजली रो बिल शून्य वेग्यो है, साथ ही वाने सरकारी कान्यो इंडक्शन कुकर दियो गयो।
2: मैं नेमाराम प्रजापत शिवनगर पाली, मैंने पीएम सौर घर ऊर्जा का सोलर प्लान लगाया, जिसमें मेरे को पहले 12,000 लाइट का बिल आता था, अब एक साल से मुझे 0% बिल आता है और 78,000 की सब्सिडी मिली और आज मुझे सोलर प्लांट का ये सोलर सोलर भी मिला है। जनता से आह्वान करूंगा आप भी सोलर ऊर्जा लगाएं।
0: संत रविदास जी री 650वीं जयंती रे मौके प्रदेश माए आज समरसता संकल्प अभियान कलश वंदन यात्रा री शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर रा SMS स्टेडियम सु यात्रा री शुरुआत करी। इन मौके श्री शर्मा कया के आ यात्रा संत गुरु रविदास जी रा सामाजिक समता सद्भाव और मानवता रा संदेश ने लोगा ताई पुगाबा रो जरियो बनेला। वणा कया के संत हमेशा समरसता रो भाव दिखावा और समाज ने दिशा देबा रो काम करियो है।
3: हमारी संस्कृति में हमेशा से रहा है कि हमारे संत मुनि महंत ऋषि महर्षियों का हमेशा सम्मान रहा है, क्योंकि इन्होंने हमारे राष्ट्र को दिशा देने का काम किया है। और ये आज से नहीं।

0: सदियों से है। हम ऐसे संतों का, मुनियों का, महंतों का सम्मान करते हैं। मित्रों, ये भारत की सनातन सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का महापर्व है।
1: प्रदेश की पहली महिला सुरक्षा हेल्पलाइन हनुमानगढ़ माय शुरू करी गई। बीकानेर रेंजरी डीआईजी श्वेता धनकड़ इनरी शुरुआत करी। इन दौरान वणा महिला वासु बातचीत करी। वे कया कि किणी भी भात्रा उत्पीड़न और छेड़छाड़ हुबा माथे हेल्पलाइन माथे संपर्क कर तुरंत पुलिस री इमदाद हासिल करी जा सके है।
2: पूरे प्रदेश भर में राज्य स्तरीय महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में आज पुलिस लाइन परिसर में और जिला हनुमानगढ़ में महिलाओं से वाद संवाद किया गया और साथ में जो एक नवाचार जो स्टार्ट किया गया है वो है महिला से सेफ्टी अभियान से रिलेटेड। हमने हेल्पलाइन नंबर सभी को बताया है, वो इस नंबर पे फोन करेंगी, मिस कॉल करेंगी, उनके पास वापिस में कॉल जाएगा, उनके पास कोई भी सूचना है वो फ्री होकर जो है बता सकती है पुलिस को और जहां भी वो बताएंगी उस पर कार्यवाही की जाएगी, उनका नाम और उनकी जो सूचना है गोपनीय रखें।
1: पूर्वी राजस्थान और आरएसआरएरा हल्का रे ऊपर कालसून नुवो परिसंचरण तंत्र बनबारा आसार है। इनसु मानसून रे फेरू सक्रिय होबा और तेज बारिश होबारो अंदाजो है। 7-10 अगस्त रे दौरान भरतपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर संभागरा कुछ एक हल्का माए हल्की सु तेज बारिश वह सके है। वठीने कटे कटे भारी और घटा टोप में बरस बरा आसार भी है। मौसम महकमो काल 17 जिला माए बरसात रो येलो अलर्ट जारी करियो है। इन बीच आज भरतपुर माए बादला छाया रिया, अठे सुमारा सुही कटे कटे हल्की तो कटे तेज बरसात रो दौर चालियो। नदबई, भुसावर, बैर और बयाना माए भी थोड़ी देर झमाझम में बरसियो। डीग माए भी लारला दो दुनाओं रुक रुक कर में बरस रियो है। वठीने सवाई माधोपुर माए झिरमिर में बरस बासु मौसम सुहावनो वैग्यो। हालांकि जल संसाधन महकमा रे मुजब इन मानसून सीजन माए हाल ताई सामान्य सु 10% कम बरसात भी है, जबकि 5 जिला माए 32 में बरसियो। वटे ही 19 जिला माए सामान्य और 17 जिला माए सामान्य सु कम में बरसियो है। और अब आखिर माए खास खबरा एकर फेरू। संसद रा दोनों सदनारी कार्यवाही न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विपक्ष रा हंगामा रे चलता आज भी कई बगत रोकनी पड़ी। रिजर्व बैंक रो इन माली बरस माए जीडीपी बढ़ोतरी दर 6.7% रहबारो अंदाजो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे तहत राजस्थान माए देश भर माए सबू 62,58,000 कास्कारा रो नामांकन। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संत रविदास रा समता, सद्भावना और समरसता रा संदेश ने लोगा ताई पुगाबारी बात कही। इंद्र सागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो वियो, वहां को आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर संध्या के ठीक 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ग्राम भारती।

ग्राम भारती कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई भाइयों को जगदीश की ओर से घनी घनी राम राम साहब। तो देखो किसान बहन भाइयों, आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे बरसात के मौसम में पशुओं की देखभाल और आहार प्रबंधन के बारे में। तो देखिए, सबसे जैसे कि आहार प्रबंधन की बात करें तो देखिए, बरसात के मौसम में पशुओं की जो आहार व्यवस्था और जो आवास पर है, पशुपालकों को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पशुओं को संतुलित आहार देना बहुत ज़रूरी होता है। पशुओं को दाने चारे

के बारिश में भीग जाने पर उसमें क्या है फंगस लग जाती है, तो इसे पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए। बारिश के बाद हरा चारा पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, परंतु इस हरे चारे को मशीन से काट करके और सूखे चारे में मिला करके खिलाना चाहिए। इसके अलावा फलीदार हरा चारा अधिक खिलाने से पशुओं में आफरा आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में पशुपालक भाई है वो 500 मिलीलीटर मीठे तेल में 50 मिलीलीटर तारपीन का तेल मिला करके पिलाना चाहिए। इसके अलावा देखिए बरसात के मौसम में पशुओं में बीमारियां अधिक होने की संभावना रहती है, क्योंकि इस समय कीट पतंगों का प्रकोप और परजीवी की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, जिससे पशुओं में अनेक प्रकार की बीमारियां फैलने की संभावना बनी रहती है, जिसके कारण पशुओं की मृत्यु हो जाती है और पशुपालकों को कई बार काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि बरसात में होने वाले प्रमुख रोग और उसके बचाव के बारे में। तो देखिए गलघोंटू रोग की बात करते हैं, तो कि इस बीमारी से पशु को तेज बुखार के समय गले में सूजन आ जाती है, जिसके कारण पशु को श्वास लेने में तकलीफ होती है और अंत में दम घुटने से पशु की मृत्यु हो जाती है। इसके बचाव की और उपचार की बात करें तो देखिए हर वर्ष बरसात शुरू होने से पहले 3 माह से बड़े सभी पशुओं को गलघोंटू रोग का टीकाकरण लगवाना चाहिए और रोग ग्रसित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें तथा मृत पशु को गहरा गड्ढा खोद करके उसमें चूना या नमक डाल करके करना चाहिए। चेचक रोग, यह रोग पशुओं के आवास में ज़्यादा गंदगी होने के कारण होता है और इसमें पशु की ऐन पर लाल रंग के दाने निकल जाते हैं और पशुओं में रोग रोधक क्षमता कम हो जाती है। तो इसके बचाव और उपचार की बात करें तो देखिए बीमार पशुओं को सबसे पहले लाल दवा के घोल से संक्रमित जगह को धोएं और उसके बाद में उस जगह पर मलहम लगा दें, तो इससे पशुओं को आराम मिलेगा। इसके बाद है चीचड़ी रोग। तो देखिए बरसात के में अक्सर पशुओं में चीचड़ी लग जाती है, तो ये चीचड़ पशुओं का खून चूसते हैं जिससे खून की कमी हो जाती है पशुओं में। तो इसके बचाव और उपचार के लिए चीचड़ियों को मारने के लिए 0.05 मेलाथियन घोल का छिड़काव पशु के शरीर पर तथा पशुशाला में दोनों जगह करना चाहिए और छिड़काव के बाद पशु को बांध दें और उसके बाद उसको शरीर को चाटने नहीं देना चाहिए। इसके बाद आता है खुरपका मुंहपका रोग। तो देखिए इस रोग में पशु के मुंह के अंदर मसूड़ों और जीभ पर फोड़े हो जाते हैं और कुछ समय बाद फूट जाते हैं, जिससे जख्म बन जाते हैं, जिससे पशु का चारा खाना मुश्किल हो जाता है और कमज़ोर हो जाता है और पशु के मुंह में लगातार चिपचिपी लार बहती रहती है और पशु के खुरों में भी बीच में फोड़े हो जाते हैं और उसमें भी जख्म बन जाते हैं और पशु ठीक से चल फिर नहीं सकता है। तो इसके उपचार के लिए किसान बहन भाई है वो इस रोग से पशुओं को केवल टीकाकरण द्वारा ही बचाया जा सकता है, इसलिए बरसात शुरू होने से पहले खुरपका मुंहपका रोग विरोधी टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। इसके अलावा परजीवियों का प्रकोप भी इस मौसम में ज़्यादा रहता है। तो देखिए दो प्रकार के परजीवी होते हैं, एक तो अंतः परजीवी और एक बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी में जैसे पेट के कीड़े और कृमि होते हैं, बाह्य परजीवी में जैसे चीचड़, मेज और जू होती हैं। इनके उपचार के लिए पशुपालक है वो पशु चिकित्सक की सलाह से पशुओं को उनके वजन के अनुसार परजीवीनाशक दवा सप्ताह के अंतराल में 2 बार पिलानी चाहिए। अब बात करते हैं टीकाकरण और डीवर्मिंग कृमिनाशक के बारे में, ध्यान रखने वाली कुछ बातों के बारे में। तो देखिए सबसे पहले टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार पशुओं को टीकाकरण लगवाना चाहिए और सभी पशुओं को एक साथ टीका लगवाना चाहिए। टीकाकरण के बाद भूख, बुखार और दूध उत्पादन में कुछ कमी आ जाती है, तो इसके लिए किसी इलाज की आवश्यकता नहीं होती है। सभी जानवरों को टीकाकरण से कम 1 सप्ताह पहले कीटनाशक छिड़काव और डीवर्मिंग कृमिनाशक की दवा दी जानी चाहिए और यह जानवर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा टीकाकरण के तुरंत बाद पशुओं को तनाव में नहीं रखना चाहिए और उन्हें ठीक से खिलाना और विश्राम कर देना चाहिए। पशुओं को टीका लगाए जाने के तक टीके को क्या है ठंडी जगह में रखा जाना अवश्य है। इस प्रकार पशुपालक अपने पशुओं को नियमित रूप से कृमि निवारक और समय पर टीकाकरण द्वारा उत्पादकता के घाटे से एक प्रमुख कारण से

चाया जा सकता है। तो ये तो थी किसान बने में बरसात के मौसम में पशुओं की देखभाल और आहार प्रबंधन के बारे में। और अब आपको सुनवा देते हैं एक भेंट वार्ता, वर्षा ऋतु में पशुओं का कैसे करें रखे ध्यान, डॉक्टर बजरंग लाल शर्मा वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी हल्दीना के द्वारा। लेकिन उससे पहले एक सुनवा देते हैं आपको जरूरी संदेश।

0: तलाई, जल हौज, पाइपलाइन, फवारा और ड्रिप अपनाएं और अनुदान का लाभ भी उठाएं।
1: बूंद बूंद सिंचाई संयंत्र लगाने पर सरकार की ओर से लघु और सीमांत किसानों के लिए 75% और सामान्य किसानों के लिए 70% तक अनुदान दे है। अधिक जानकारी के लिए निकटतम किसान सेवा केंद्र से संपर्क करें। आत्मा योजना अलवर द्वारा किसान हित में जारी।
2: पशुपालक भाइयों, राम राम। आज आपकी हम भेंट करवा रहे हैं डॉक्टर बजरंग शर्मा जी से। हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्कार।
3: नमस्कार, और पशुपालक भाइयों को मैं नमस्कार बोलना चाहूँगा। मैं बजरंग शर्मा, पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय हल्दीना में पदस्थापित हूँ।
2: अच्छा जी, जैसा कि डॉक्टर साहब बरसात का मौसम हुआ, ऐसे समय में हमारे पशुपालक भाई हैं, वो अपने पशुओं का किस तरह से ध्यान रखें, यानी कि कौन कौन सी बातों का वो विशेष तौर से ध्यान रखें, जिनमें हम बात करते हैं आवास के बारे में। बरसात के मौसम में पशुओं का आवास है वो किस तरह का होना चाहिए, किस तरह से वो ध्यान रखें।
3: पशुपालक भाइयों, सबसे पहले तो आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी वर्षा ऋतु के बारे में है वो ये ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे ही वर्षा ऋतु का आगमन होता है उस हिसाब से जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है आवास के आसपास। तो उसमें आप जल भराव ना होने दें, पशु के आवास को सूखा रखें, उसकी जो फर्श है उसको बार बार बदलते रहें, और एकदम से पशु को बांध के रखेंगे और उसको खुला नहीं छोड़ेंगे तो उसको उमस की जो समस्या है, आसपास के वातावरण की उमस की समस्या है, उससे पशु पीड़ित होगा और वो थोड़ा तनाव में आ जाएगा। तो उसको थोड़ा खुला छोड़ें, थोड़ा सा उसको घुमा के रखें और आसपास उसके जो वातावरण है वो सूखा रखें और जल भराव ना होने दें। जल भराव होने से क्या होता है कि बहुत सारे परजीवी हैं, कलीले चीचड़े मच्छर हैं, उनके जो प्रजनन की जो संख्या है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जल के माध्यम से वो ज़्यादा अपना प्रजनन करने लग जाते हैं। तो जल भराव ना होंगे तो हम बहुत सारी पशुपालक भाई बहुत सारी बीमारियों से बचा पाएंगे उन पशुओं को।
2: जी, तो ऐसे मौसम में यानी बरसात के मौसम में हमारे पशुपालक भाई हैं वो अपने पशुओं का आहार के बारे में किस तरह से ध्यान रखें कि कौन सा आहार किस मात्रा में दें।
3: पशुपालक भाइयों, सबसे बड़ी बात जो आहार के संबंध में आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है संतुलित आहार। संतुलित आहार से मेरा मतलब है दुधारू पशु के लिए आहार अलग होता है और जो पशु ज्ञापन है उसका आहार अलग होता है और जो छोटा पशु है उसका आहार अलग होता है। हम लोगों में ये भ्रांति है कि हम सबको एक साथ एक जैसा आहार देना पसंद करते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें एक तो मौसम के अनुरूप अपन को आहार बदलना है, जैसे इस मौसम में हरा चारा उसको बहुतायत मात्रा में दे देंगे तो इससे क्या है आफरे की समस्या हो जाएगी। पशु जब ज़्यादा आहार को चरेगा, हरे चारे को चरेगा, तो उसमें इसकी आफरे की समस्या ज़्यादा हो जाएगी। तो उसका जो संतुलन है वो हमको बना के रखना है, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ सूखे चारे की मात्रा कितनी रखनी है और हरे चारे की मात्रा कितनी रखनी है। जो सूखा तूड़ा है पशुपालक भाई 5 से 6 किलो जो दूध ना देने वाली गाय है उसको दे सकते हैं या दूध ना देने वाली भैंस उसको दे सकते हैं, और जो हरा चारा है उससे 20 से 25 किलो से ज्यादा उसकी मात्रा ना रखें और उसको धीरे धीरे करके बढ़ाएं। अगर आहार का परिवर्तन करना है तो धीरे धीरे करके नया आहार उसका बढ़ाएं और जो पुराना आहार है जो आप तूड़ा कुट्टी खिला रहे थे उसको थोड़ा कम कर दें, धीरे धीरे उसको कम करें पुराने आहार को, नए आहार को धीरे धीरे बढ़ाएं, एकदम से आहार को ना बदलें। दूसरी जो विशेष बात ध्यान रखनी है वो ये है कि आहार में मीठे सोडे का प्रयोग करें 10 से 20 ग्राम जिससे जो तनाव की स्थिति है, जो तनाव में पशु हाँफने लगता है, उमस से पशु हाँफने लगता है, उससे पशु के शरीर में अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है। तो उस अम्लता को कम करने के लिए पशुपालक भाई 10 से 20 ग्राम मीठा सोडा, 20 से 30 ग्राम नमक और 40 से 50 ग्राम खनिज लवण का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही 1 से 1.5 किलो बाट जो आप दलिया रांधते हो वो दे सकते हैं। ये है जो दूध नहीं दे रहा पशु, जो बिल्कुल भी दूध उत्पादन नहीं है, और प्रति किलो जो दूध देने वाला दुधारू पशु है उसमें प्रति किलो दूध के हिसाब से 400 से 500 ग्राम आप इसका दाना मिश्रण का, जो भी अच्छी कंपनी का है या खुद भी पशुपालक भाई दाना मिश्रण को बना के तैयार करके दे सकते हैं।
2: जी, तो ये बात हुई आहार के बारे में। अब बात आती है इसके अलावा हमारे पशुओं में बरसात के मौसम में कुछ संक्रामक रोग हो जाते हैं, तो संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं जो हमारे पशुओं को यानी कि परेशान करते हैं, उनको ज़्यादा परेशानी आती है ऐसे मौसम में।
3: वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा संक्रमण फैलने की आशंका होती है, चाहे वो पशु शरीर हो चाहे वो मानव शरीर हो। वर्षा ऋतु में नमी होती है तो नमी, मैंने जैसे बताया, बाहरी परजीवी, बाहरी कीटाणु, बाहरी जीवाणु, उनके पनपने की संख्या की जो मात्रा है, उनके प्रजनन की जो क्षमता है वो सबसे ज़्यादा अधिक रहती है, तो इसमें संक्रमण फैलने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है पशु को। दूसरी बात ये

0: ध्यान में रखनी चाहिए कि वर्षा ऋतु आने वाली है, तो वर्षा ऋतु के आने से पहले जो भी संक्रामक रोग हैं उसका हमें बचाव रखना चाहिए, बचाव करना चाहिए, और बचाव के लिए सबसे उपयुक्त उपाय उनका टीकाकरण। जैसे बुजुर्ग लोग भी कहते हैं और सभी बुद्धिजीवी वर्ग का यही मानना होता है और किंवदंती भी है कि बचाव ही उपचार है। सभी जानते हैं, पशुपालक भाई और हम सभी जानते हैं कि बचाव ही उपचार है। तो उपचार करने की स्थिति ना पड़े संक्रामक रोगों की, इस वजह से अपने सभी पशुओं को टीकाकरण करवा लेना चाहिए। और ये मौसम वर्षा ऋतु आने से पहले और गर्मी जाने के बाद का सबसे उपयुक्त समय है टीकाकरण का, जिसमें 2-3 संक्रामक रोग हैं जो दुधारू पशुओं में, गाय भैंस में फैल सकते हैं। वो है गलगोटू, जिसको HS या हेमरेजिक सेप्टिसीमिया बोलते हैं। दूसरा है ब्लैक क्वार्टर, लंगड़ा बुखार, जो कि जो भी दुधारू पशुओं में फैल सकता है। तो विशेषकर इन दो बीमारियों के लिए दुधारू पशु, गाय और भैंस में टीकाकरण पशुपालन विभाग द्वारा भी चलाया जा रहा है, और पशुपालक भाइयों को भी जागरूक होते हुए इनका टीकाकरण करवा लेना चाहिए।
1: इनमें जैसे अपन बात कर रहे हैं खुरपका मुहपका रोग है, इसके लक्षण हमारे किसान भाइयों को कैसे पहचाने कि हमारे पशुओं को इस तरह का रोग हो गया है?
0: जी, जैसे मैंने अभी बताया कि दो रोग जिनका टीकाकरण चल रहा है वो है गलगोटू और लंगड़ा बुखार। तीसरा आपने जो रोग की चर्चा की वो खुरपका मुहपका है। तो खुरपका मुहपका का तो NADCP योजना अंतर्गत इसका कॉम्बैट प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें वर्ष में 2 बार टीकाकरण होता है
1: जी।
0: इसका भी टीकाकरण पशुपालन विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन ये टीकाकरण होने में अभी थोड़ा समय है। ये सर्दियों से पहले इसका व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। अभी का मौसम है, उसमें जो टीकाकरण चल रहा है वो गलगोटू और इसका लंगड़ा बुखार का है। तो गलगोटू के जो लक्षण है वो है कि सबसे पहले पशु, कोई भी बीमारी हो, चाहे गलगोटू हो, चाहे लंगड़ा बुखार हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी पशु को कोई भी बीमारी या कोई भी संक्रमण होगा, तो सबसे पहले पशु सुस्त होगा, वो दूध देना बंद कर देगा और जो चारा पानी है उसको थोड़ा कम कर देगा। तो इन लक्षणों को देख के पशुपालक भाई को पहचानना चाहिए कि पशु में कोई समस्या है। दूसरा जो स्पेसिफिक जो इसके लक्षण होते हैं, जो विशेष लक्षण होते हैं जिनसे पशुपालक भाई पहचान सकते हैं, वो गलगोटू का ये है कि गले और मुंह के नीचे सूजन आने लगेगी। वो सूजन को आप दबाने पे पशु दर्द महसूस करने लगेगा और साथ ही उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, और जैसे जैसे ये सूजन बढ़ेगी, जैसे जैसे होगा तो पशु को सांस लेने में तकलीफ होगी, गड़गड़ाहट की आवाज पशु के मुंह से सुनाई देगी। ये बहुत ही खतरनाक रोग है, तो इस रोग को फैलने से पहले ही इसका टीकाकरण करवा लेना चाहिए। लंगड़ा बुखार जैसा मैंने बताया वो विशेषतः गाय भैंसों का रोग है, जिसमें गाय सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, भैंसें भी प्रभावित हो सकती हैं। उसमें पशु लंगड़ाने लगता है और लंगड़ाहट के साथ में पशु के जो शरीर है उसमें गैस इकट्ठा होने लगेगी। थोड़ा ये गैस को अगर आप दबाएंगे, पशु की चमड़ी को हम दबाएंगे तो उसमें चरचराहट की आवाज आएगी और पशु की चमड़ी थोड़ी सूखने लगेगी। तो इस रोग का अगर पशुपालक भाई पहचानते अपने रोग में, तो वो एक लंगड़ा बुखार के लक्षण है जिसे पहचानना चाहिए। तीसरा, आपने जैसे खुरपका मुहपका के बारे में बताया, तो इसमें पशु चारा छोड़ देगा, पशु के मुंह में छाले होंगे, पैरों में छाले होंगे, पैरों में जख्म होंगे, मुंह में से लार गिरने लगेगी। तो लार देख के, मुंह में छाले या पशु के पैर में छाले देख के पशुपालक भाई खुरपका मुहपका को पहचान सकते हैं। और आम भाषा में इसको, अपनी प्रचलन की भाषा में इसको बांग रोग भी कहते हैं। तो इन रोगों के लिए निश्चित ही पशुपालक भाइयों को टीकाकरण करवा लेना चाहिए और संक्रमण से बचाव हो जिससे।
1: तो देखिए डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी हमारे किसान भाइयों को बातें बताई, लेकिन इसके अलावा कि पशुओं में एक विशेष ही बीमारी देखने को मिल रही है कि ज़्यादातर पशु या तो गाभिन नहीं रुक पा रहे हैं, एक तो वो कारण है। दूसरा, जो गाभिन रुक भी जाते हैं तो कई पशुपालक भाई हैं वो इस तरह से परेशान होते हैं कि उनका पशु है जो पाछा दिखाता है, यानी कि उनको जो शरीर दिखाई देने की समस्या आती है। ये दो रोग मुख्य रूप से हमारे यहाँ पर पशुपालकों को बड़े परेशान कर रहे हैं, इनके क्या कारण हैं और इनका उपचार क्या है?
0: आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न मुझसे पूछा। ये समस्या हमारे फील्ड में, हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, जिसमें पशुपालक भाई अपने पशु की इस समस्या से सबसे ज्यादा परेशान होता है कि पशु या तो हीट में नहीं आता, हीट में मतलब ताव में नहीं आता। अगर वो ताव में आ जाता है तो उसको लगातार बीज रखवाने पे, गाभन करवाने पे वो पशु रुकता नहीं है, रुक नहीं पाता। उसके अलावा जो समस्या होती है कि अगर गाभन रुक जाएगा तो बच्चा जल्दी फेंक देगी या बच्चा रुक नहीं पाएगा, कंसीव नहीं कर पाएगा। और जैसे आपने बताया पाछा दिखाएगा, अगर गाभन हो जाएगी तो भी पाछा दिखाएगा। तो इन सब बातों में एक जो आम बात है और जो सबसे कॉमन बात है जिसका पशुपालक भाई ध्यान नहीं रख पाते, वो है संतुलित आहार का। संतुलित आहार के साथ साथ अगर पशुपालक भाई इसको खनिज लवण समय से देंगे, खनिज लवण की मात्रा उसकी निर्धारित जैसे मैंने बताया 50 ग्राम रखेंगे, तो इन बीमारियों से आप 50 से 60% निजात दिला पाएंगे। होता क्या है कि हमारे क्षेत्र में जो आहार है और जो हमारी मिट्टी है वो कुछ खनिज तत्वों में कमी है, तो उसकी जो चारा फसलें हैं और जो चारा फसलें चारा काटकर जो किसान भाई अपने पशुओं को खिलाते हैं उसमें उन सारे खनिज लवणों की या खनिजों की पूर्ति नहीं हो पाती। तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको संतुलन

0: बैठाने के लिए खनिज लवण 50 ग्राम डेली प्रतिदिन रिकमेंडेड है, प्रतिदिन उसको खिलाना चाहिए, जिससे ये ग्याबन ना रुकना या ताव में ना आना वो पशुपालक भाई को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये तो पशुपालक भाई अपनी तरफ से कर सकते हैं। दूसरा ये है कि पशुपालक भाई ताव पहचानना सीखे। होता क्या है कि पशुपालक भाई रंभाने पे ही या भैंस के जोर जोर से चिल्लाने पे या चक्कर काटने पे ही ये समझने लगते हैं कि वो ताव में आ गई, और वो जल्दी से जल्दी नजदीकी किसी भी चिकित्सक से, जो चिकित्सा का कार्य कर रहा है, उसको पास ले जाते हैं। तो वो ताव को पहचानने में सक्षम नहीं है, और वो चिकित्सक भी अकुशल होने के कारण वो सही से पहचान नहीं पाते हैं। तो सबसे बड़ा ये है कि एक तो ताव पहचानना सीखे, ताव के लक्षण पहचानना सीखे। ताव के लक्षण ये है, जो सबसे सही लक्षण है वो है कि पशु अगर जीरा गिर रहा है, और जीरा भी ऐसा होना चाहिए, पतला होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, पानी जैसा होना चाहिए, और लगातार उसका एक तार होना चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए उसका क्रम। तो वो जेरी अगर पशुपालक भाई देखता है तो उसके 12 घंटे पे उसका कृत्रिम गर्भाधान या गर्भाधान जिससे भी वो करवाना चाहे वो करवाना चाहिए, वो भी कुशल चिकित्सक के नेतृत्व में। आपके नजदीकी पशु चिकित्सालय, सरकारी पशु चिकित्सालय, आपको वहां लेके जाना चाहिए। और अगर फिर भी समस्या रहती है ग्याबन ना रुकने की, तो पशुपालक भाइयों को लगातार 2 बार 24 घंटे के अंतराल पे उसको बीज या कृत्रिम गर्भाधान या गर्भाधान करवाना चाहिए, और साथ ही एक खनिज लवण की का 50 ग्राम उपयोग करना चाहिए उसके आहार में। फिर भी ये समस्या रहती है तो नजदीकी पशु चिकित्सालय, जो कुशल चिकित्सक हैं, आप उनको वहां लेके जाएं, और अगर अपने पशु में कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो ना रुकने की, किस कारण से रुक रही है, तो उनकी सलाह के अनुसार पशुपालक भाई काम कर सकते हैं
1: जी। तो देखिए डॉक्टर साहब, आपने हमारे सभी पशुपालक भाइयों को बरसात के मौसम में किन किन बातों का ध्यान रखा जाए और किस तरह से अपने पशुओं का बाड़ाबंदी है या आहार का ध्यान रखा जाए, बीमारियों का ध्यान रखा जाए, ये सारी बातें बताई। इन सभी बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: नहीं, धन्यवाद जी, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि यंत्र खरीदने की सोच रहे हैं किसान भाई, तो राज्य सरकार की अनुदान योजना का लाभ उठाएं। मल्टी क्रॉप थ्रेशर खरीदने पर अधिकतम 1,00,000 रुपए, रोटावेटर खरीदने पर अधिकतम 50,400 रुपए, और सीड ड्रिल एवं सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन पर अधिकतम 28,000 रुपए का अनुदान उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए निकटतम किसान सेवा केंद्र से संपर्क करें। आत्मा योजना अलवर द्वारा कृषक हित में जारी।
3: हाँ, तो देखो किसान बहन भाइयों, अभी आपने सुनी भेंट वार्ता वर्षा ऋतु में पशुओं का ध्यान कैसे रखें डॉक्टर बजरंगलाल शर्मा से। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई कि भाई कौन कौन से समय में किस प्रकार का दाना, चारा और पौष्टिक भोजन देना चाहिए, इसके अलावा कौन कौन से बीमारियों के लिए किस प्रकार के टीके लगवाने चाहिए और कब कब लगवाने चाहिए। और अब आपका करवा देते हैं मनोरंजन और सुनवा देते हैं एक लोकगीत।

हाँ तो देखिए, नैना नीचा कर ले श्याम से मिलावे निकाई, गायक कलाकार थे सीमा मिश्रा और साथी। तो देखो किसान बन भाई, आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब आपको दे देते हैं जानकारी, जानकारी में दे देते हैं आज पशुओं को संक्रामक रोगों से कैसे बचाएं। तो देखिए, इस समय जो बरसात का मौसम है तो इसमें क्या है, पशुओं में कई प्रकार की संक्रामक रोग फैलने का खतरा बढ़ जाता है। तो जिसमें जैसे गलगोटू है, लंगड़ा बुखार है, एंथ्रेक्स है, खुरपका मुंहपका है और पशुमाता, ये रोग बहुत ज़्यादा फैलते हैं। तो इस मौसम में वातावरण में क्या है, नमी के कारण अनेक प्रकार के कीड़े, बीमारियां और परजीवी कीट पनपते हैं। संक्रामक रोगों को एक पशु से दूसरे पशु में फैलने का खतरा रहता है। तो पशुपालक भाई थोड़ी सी जागरूकता से अपने पशुओं को इन रोगों से बचा सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि संक्रामक रोग के प्रारंभिक लक्षण देखते ही रोगी पशुओं को स्वस्थ पशु से अलग कर देना चाहिए। इसके अलावा रोगी पशुओं को दाना, चारा और वह पानी की जो व्यवस्था है अलग बर्तन में करनी चाहिए। रोगी पशु के उपचार के लिए पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशु चिकित्सक द्वारा यदि संक्रामक होने की जानकारी देने पर रोगी पशु के उपचार के साथ साथ स्वस्थ पशुओं को टीकाकरण अवश्य कराएं। इसके अलावा पशुपालक पहले स्वस्थ पशुओं का दूध निकालें और उसके बाद रोगी पशुओं का दूध निकालें और हाथ बर्तन आदि को एंटीसेप्टिक घोल से जैसे लाल दवा या डिटॉल आदि से साफ करना चाहिए। यदि मृत पशु के संपर्क में रही वस्तुओं व स्थान को फिनाइल या लाल दवा

से कीटाणु रहित करना चाहिए और बाड़े के पास मक्खी कीट न पनपे इसके लिए समय समय पर कीटनाशक घोल का छिड़काव करना चाहिए। यदि घाव लगने पर पशु का तुरंत प्राथमिक उपचार करें और उसे संक्रमण से बचाएं। इसके अलावा नियमित अंतः और बाह्य परजीवी नाशक औषधि का उपयोग पशु चिकित्सक की सलाह पर करें। इसके अलावा संक्रामक रोग से मृत पशुओं का शवों का निस्तारण कैसे करें, तो देखिए इसके लिए संक्रामक रोग से मृत पशु के शव को गड्ढा खोद करके गड्ढे में चूना या नमक के साथ दबा दें। इसके अलावा मृत पशु का जो मल मूत्र चारा बिछावन या खून जैसे वर्जित पदार्थ हैं उनको भी गड्ढे में दबा दें या फिर जला दें। पशु आवास में शव स्थान पर चूना पानी फिनाइल या का छिड़काव कर स्थान को शुद्ध करना चाहिए। इसके अलावा क्या नहीं करना चाहिए, तो देखिए शव को खुले मैदान में या नदी में या तालाब में नहीं फेंकें और शव की खालने उतारें। इसके अलावा चील कौओं और कुत्तों के लिए खुला न छोड़ें, संक्रमण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये फैलाते हैं। इसके अलावा बिना स्थान शुद्ध किए स्वस्थ पशुओं को स्थान पर नहीं बांधना चाहिए। तो इस प्रकार पशुपालक भाई अपने पशुओं को संक्रामक रोग से बचा सकते हैं। अब दे देते हैं आज के अलवर मंडी के बाजार भाव के बारे में। तो देखिए गेहूं का भाव रहा 2600 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल, जौ का भाव रहा 2200 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल, चने का भाव रहा 5800 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों का भाव रहा 7500 से 8100 रुपये प्रति क्विंटल, बाजरे का भाव रहा 2050 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल और गवार का भाव रहा 4500 से 5500 रुपये प्रति क्विंटल। और अब दे देते हैं आज के मौसम की जानकारी। तो देखिए अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की है। आसमान में घने बादल छाए रहने के साथ ही और हल्की से तेज बारिश होने की भी संभावना है। तो देखो किसान बने भी अब हमारा कार्यक्रम का समय होने जा रहा है समय समाप्त। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं श्री नीरज भगत। तो लेते हैं इजाज़त। जय जवान जय किसान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम भारती एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। संध्या के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

0: अंदाज़ फिल्म से अभी आपने सुना है गीत। गीत को गाया था बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक ने। बोल लिखे थे समीर ने, संगीत था नदीम श्रवण का। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नमक हलाल से। गीत को गाया है किशोर कुमार ने, बोल लिखे हैं प्रकाश मेहरा ने, संगीत बप्पी लहरे का।
1: बुजुर्गों ने

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब आप सुनेंगे संसद समीक्षा।

कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज राम मंदिर में चढ़ावा चोरी सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे से पहले तक बैठक बार बार बाधित हुई। हालांकि बाद में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक पर 2.5 घंटे तक चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। आज सुबह 11 बजे जब उच्च सदन की बैठक शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की और दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृहमंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी की मांग की। हंगामे के बीच सभापति ने कार्यवाही जारी रखते हुए सदस्यों को लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाने की अनुमति दी। विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शून्यकाल में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विभिन्न सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की कविता पाटीदार ने निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के ग्राहकों को दावा निस्तारण में आ रही तमाम कठिनाइयों पर चिंता जताते हुए सरकार से मांग की कि इन दावों को निपटाने में अनावश्यक विलम्ब होने पर संबंधित कंपनियों के विरुद्ध प्रभावी एवं समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा सांसद ने सरकार से मांग की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी करते हुए ये अनिवार्य किया जाए कि सरल एवं सहज शब्दों में पॉलिसी के भीतर कवर की जाने वाली बीमारियों और उपचार के बारे में जानकारी हो। इसमें प्रतीक्षा अवधि, दावा स्वीकार या अस्वीकार किए जाने वाली परिस्थितियों, दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और दावा निस्तारण की अवधि भी बताई जानी चाहिए। शून्यकाल में भाजपा की मेधा विश्राम कुलकर्णी ने एक ही दवा के अलग अलग मूल्य होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मरीजों को महंगी दवाएं बेचकर मुनाफाखोरी को रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल में एक संसदीय

इस समिति ने भी इस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दवाओं के लिए एक रेफरेंस प्राइस रेंज बनाई जानी चाहिए। शून्यकाल में भाजपा की संगीता बलवंत ने 18 जुलाई 2026 को भारत की निजी कंपनी स्काईरूट द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का सफल प्रक्षेपण किए जाने की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि ये भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों और नवाचार का प्रमाण है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदास ने शून्यकाल में अनुबंध कर्मचारियों की सेवा को एकाएक समाप्त करने के बढ़ते चलन का मुद्दा उठाते हुए इस पर चिंता जताई। भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाए जाने का स्वागत करते हुए मांग की कि सेवा का विस्तार करने हाइड्रोजन ट्रेन चलाए जाने का स्वागत करते हुए मांग की कि सेवा का विस्तार करते हुए राज्य के पानीपत रोहतना द्रमुक के नेता डॉक्टर एम थंबीदुरई ने मद्रास उच्च न्यायालय में ही अन्ना द्रमुक के नेता डॉक्टर एम थंबी की वर्ष 2016 में तमिलनाडु विधानसभा ने इस बारे में केंद्र से अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया था। भाजपा के सतपाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर से आज ही के दिन 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि इसके कारण केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को केंद्र की हर योजना का लाभ मिल रहा है और वो देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहा है। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति ने प्रश्नकाल चलवाने का प्रयास किया, किंतु सदन में हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक में उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए कांग्रेस एवं कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। विधेयक पर चर्चा में हंगामे के बीच ही उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू करवाई। इसमें कांग्रेस के विवेक तनखा, भाजपा की संगीता यादव, नरेश बंसल, भीम सिंह, केसरी देव सिंह झाला, अशोक कुमार मित्तल और मनन कुमार मिश्र, तृणमूल कांग्रेस की मेनका गुरुस्वामी, द्रमुक के आर गिरिराजन और पी विल्सन, बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के आई एस अनबदुरई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीलालाल जैन, तेलुगु देशम पार्टी के विजय चिंता कायला, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के संजय यादव, भारत राष्ट्र समिति के रविचंद्र वद्दीचंद्र, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन और ए रहीम, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी, शिवसेना के मिलिंद मुरली देवरा और ज्योति नागनाथ वाघमारे, एमडीएमडीए के एल के सुधीश, भाजपा के नरेश बंसल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संदोष कुमार पी, द्रमुक के पी विल्सन, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, मनोनीत उज्जवल निकम आदि ने भाग लिया। करीब 2.5 घंटे तक चली चर्चा में भाग लेते हुए विपक्षी सदस्यों ने कहा कि उच्च न्यायपालिका की नियुक्ति में महिलाओं एवं आरक्षित जातियों के सदस्यों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से अदालतों में मामलों के अंबार को कम करने में मदद मिलेगी। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वो सरकार की ओर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय में उन्हीं न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जिनकी सिफारिश कॉलेजियम करता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में महिलाओं एवं आरक्षित वर्ग के लोगों के बारे में विचार करने का विषय कॉलेजियम का है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।
मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्याय

न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। कानून मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके उपरांत सदन में विभिन्न सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई और प्रश्नकाल तथा शून्यकाल नहीं चल सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी दल संसद की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहते और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों ने संसद परिसर में नाटक करके भगवान राम का अपमान किया है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सदन में हंगामे के बीच ही बैंक कर बही साक्ष्य विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जब प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग दोहरा रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है और इसमें सदस्यों को अवसर मिलना चाहिए। मेरा आग्रह है कि प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। प्रश्नकाल के बाद सभी मुद्दों पर आपसे चर्चा करूंगा। उन्होंने आसन के पास आकर नारे लगा रहे और पोस्टर लहरा रहे सदस्यों से कहा, सदन के अंदर या बाहर नारेबाजी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके और प्रदर्शन करके सदन की गरिमा को गिराना चाहते हैं। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर शुरू होने पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि मैं गंभीरता से आग्रह करना चाहता हूं, मैं शून्यकाल चलाना चाहता हूं। आपके नाम लॉटरी में आए हैं और नीति और राज्य से जुड़े सवाल है, मैं आपको बोलने दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप अपने स्थान पर जाइए और शून्यकाल चलने दीजिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल अपने दल के सदस्यों को समझा दें तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विपक्ष के सदस्य संसद नहीं चलाना चाहते। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बन रहा था तो विपक्ष ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। संसद परिसर में जो नाटक किया गया उसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। हंगामा नहीं थमने पर पाल ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही लोकसभा ने बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026 को मंजूरी दी। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस विधेयक को पारित कराने के लिए रखा। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने विधेयक पर संशोधन पेश करने के लिए विपक्षी सांसदों मनोज कुमार, एनके प्रेमचंदन, के सुरेश और कुछ अन्य के नाम पुकारे। हालांकि किसी ने संशोधन पेश नहीं किया। सदन के हंगामे के बीच ही इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। प्रस्तावित कानून में बैंककार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड

को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण स्पेशल कॉज परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका, हालांकि सरकार ने कई सदस्यों के प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में जानकारी दी कि आरक्षित कोच वाली स्पेशल ट्रेन का किराया नियमित निर्धारित ट्रेन की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। वैष्णव का ये लिखित उत्तर कांग्रेस सांसद संजना जाटव द्वारा स्पेशल ट्रेन के किराया ढांचे और किराया निर्धारित करने के मानदंडों से जुड़े प्रश्नों के जवाब में आया। सांसद ने यह भी पूछा था कि पिछले 3 वर्षों में कितनी स्पेशल ट्रेन को नियमित सेवाओं में बदला गया है तथा क्या हनुमानगढ़ जयपुर ट्रेन का किराया उसी मार्ग पर चलने वाली अन्य नियमित ट्रेनों की तुलना में अधिक है। रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेल यात्रियों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके तहत नई ट्रेन सेवाएं शुरू की जाती हैं, मौजूदा ट्रेन का विस्तार किया जाता है, उनके फेरे बढ़ाए जाते हैं तथा उनमें अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा ट्रेन सेवाओं में अतिरिक्त डिब्बे भी लगाए जाते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है जो परिचालन क्षमता, संसाधनों की उपलब्धता और अन्य प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। वैष्णव ने आगे कहा कि त्योहारों, विशेष आयोजनों और यात्रा के व्यस्त सीजन में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल स्पेशल ट्रेनें चलाती है। बाद में यात्री मांग, व्यावसायिक औचित्य, परिचालन व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इन्हें नियमित सेवाओं में शामिल किया जाता है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2024-25 से लेकर जून 2026 तक भारतीय रेल ने 245 ट्रेन सेवाओं को नियमित किया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत। कलाकार हैं नूरदीन खान और साथी।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

हरा गुजारो ना है या जग में बंदा या जग में अरे चलो हो कुआ पिया जी के दिए ओ गुजार।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास तथा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा तथा अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका

0: विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है।
2: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस साल जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 जजों की स्वीकृत संख्या पूरी होने के बावजूद केवल 65,000 से अधिक मामलों का ही निपटारा हो सका, जबकि पिछले साल अदालत में 75,000 से अधिक नए मामले आए। हर साल नए मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों से अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेज होगा और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग का भी आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े जोखिमों से अवगत है। श्री वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित वैश्विक घटनाक्रमों और विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय नियामक दृष्टिकोणों से अवगत रहती है। इसमें डिजिटल वातावरण में बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों की ओर से अपनाए गए उपाय भी शामिल हैं। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए केंद्र सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मेटा को स्पष्ट कर दिया गया था कि वे मध्यवर्ती की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं और वे ही तय करते हैं कि उनके मंच पर दी गई सामग्री किसे प्राप्त होगी। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा एक्स कॉर्प तथा गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश ने आज अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को भी अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दोनों अनुच्छेदों को निरस्त करने के बाद राज्य में बहुत विकास हुआ है।
4: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहाँ के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहाँ खुश है।
0: जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से

0: बातचीत में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।
1: जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी। तथाकथित यौम इस्तेहसाल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंक

0: के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार के दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी लोग नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।
1: जो दूसरा मॉड्यूल है पेट्रोल बम फेंकने का और उनको बनाने का ट्रेनिंग दी गई ISI के जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा, और वहां उनको बताया गया कि आप पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी के एस्टेब्लिशमेंट या किसी यूनिफॉर्म बंदे का टारगेट करने के लिए उनकी रेकी करो और आपको पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहां भी ये जाके आए 8 लोग और वहां इनको लोकल एक स्पोर्ट मुहैया करवाई।
0: झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। इस बीच भाजपा ने इन प्रदर्शनों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की चुप्पी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि उन्होंने झारखंड का दौरा इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस राज्य में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। श्री पात्रा ने राहुल गांधी की आलोचना की है कि उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मासूम बच्चों को संवाददाता सम्मेलन में घसीटा।
2: जो बच्चे आज राहुल जी के साथ थे उन्हें मैं बहुत प्यार से कहना चाहूंगा कि निडर रहना, बिल्कुल आप घबराना मत। हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, हम सब पार्टीज हो सकते हैं, मगर आप हमारे हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम ऑपोजिशन की और राहुल गांधी की झूठी नरेटिव यहाँ एक्सपोज करना चाहते हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। हैदराबाद में आज ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक संपन्न हुई। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हुई 2 दिन की बैठक का विषय था सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव रचना शाह ने कहा कि भारत की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का उल्लेख इस दौरान किया गया। उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा, सुशासन और सतत विकास की नींव है। बैठक में ब्रिक्स के सदस्यों ने कानून प्रवर्तन विशेषज्ञों के ब्रिक्स नेटवर्क के लिए भारत के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की। यह नेटवर्क भ्रष्टाचार के मामलों में वांछित भगोड़ों का पता लगाने में सहायता करेगा और प्रत्यर्पण में सहयोग भी करेगा जो वर्तमान कानूनी प्रक्रियाओं का पूरक होगा। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। ये ढांचा भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के इस आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात पर सुगम बनाने के लिए व्यापक नीति और प्रक्रियात्मक संरचना प्रदान करता है। इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ई कॉमर्स निर्यात का लाभ भारतीय निर्माताओं तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिले और साथ ही नियामक निगरानी भी बनी रहे। सरकार ने कहा है कि मुंबई देश में फिल्म, टेलीविजन प्रसारण, डिजिटल मीडिया और कंटेंट निर्माण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यह भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एलमुरुगन ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा, फिल्मों की विरासत और फिल्म सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए विकास, संचार तथा फिल्म सामग्री के प्रसार की केंद्रीय योजना लागू की है। केंद्र सरकार पत्रकार कल्याण योजना लागू करती है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि योजना के अंतर्गत सरकार ने 2014-15 से 2025-26 तक 456 मीडिया कर्मियों या उनके परिवारों को 19 करोड़ 41 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% तक रखा गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं

0: रांची प्रिया,
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में मामूली 10 अंकों की बढ़त हुई और ये 24,625 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 25 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95 रुपये और 13 पैसे पर बंद हुआ।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इन खिलाड़ियों में ईशरानी बरुआ, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया और श्रेयांशी वली शेट्टी भी शामिल हैं। वहीं महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठक्कर तथा मिक्स्ड डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मौसम फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाजों में। गुलजार ने इसे लिखा, मदन मोहन का संगीत। आप सुन रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम आपके लिए विविध।

किशोर कुमार को आप सुन रहे थे। इस गीत में आराधना फिल्म से इसे लिया गया था। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, एसडी बर्मन का संगीत।

लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे। इस गीत में मौसम फिल्म से इसे लिया गया था। गुलजार ने इसे लिखा, मदन मोहन का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर

0: उनके अभिनय, उनकी खूबसूरती पर भंवरे भी गुनगुनाने लगते हैं।
1: आवारा भंवरे जो हौले हौले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए।
0: फिल्मी पर्दे पर इनकी अदाएं और अभिनय की तारीफ के लिए चांद सितारों के उपमान भी फीके पड़ जाते हैं।

5 अगस्त 1974 को जन्मी काजोल हिंदी सिनेमा की सफलतम अभिनेत्रियों में से एक हैं। उनके कुशल अभिनय के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था।

काजोल को अभिनय की तालीम तो विरासत में मिली। काजोल की नानी शोभना समर्थ मूक फिल्मों के जमाने से समर्थ अभिनेत्री थीं। बाद के दिनों में उन्होंने कई सशक्त फिल्मों में उत्कृष्ट भूमिका निभाई। शोभना समर्थ की दोनों बेटियां तनुजा और नूतन अपने अभिनय कौशल में माहिर थीं और उन्होंने अपने अभिनय कौशल से लोगों को मोहित किया। माँ तनुजा और मौसी नूतन से काजोल को अभिनय की बारीकियां खुद ब खुद सीखने को मिल गईं।

काजोल की नानी, उनकी माँ और मौसी तो फिल्मी दुनिया की विशिष्ट अदाकारा तो थी ही, उनके चाचा जॉय मुखर्जी और देव मुखर्जी गजब के कलाकार थे। उनके खानदान में और भी एक्टर्स थे, रानी मुखर्जी, मुनीश बहल, ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्म बनाने वाले अयान मुखर्जी। परिवार में इतने सारे फिल्मी कलाकारों का जमावड़ा। फिल्मी परिवार के बीच बड़ी चुलबुली और शरारती सी काजोल पढ़ाई में अपना मन लगा रही थी। दोस्तों, काजोल के माता पिता ने पहाड़ों के गोद में बसी जगह पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉलेज में उन्हें दाखिला दिलवा दिया, जहां उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। लेकिन कॉलेज के दिनों में ही उन्हें अभिनय का चस्का लग गया। पढ़ाई के दिनों में ही काजोल को साहित्य में गहरी दिलचस्पी थी। वे साहित्य किताबें पढ़ती थीं और बहुत सारी कहानियां पढ़ती थीं। एक बार वे कॉलेज से, पंचगनी से मुंबई आई। वहां राहुल रवेल की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। वहां उन्होंने कैमरे के सामने कुछ परफॉर्म किया। बस वहीं से उनके अभिनय की शुरुआत हुई। महज 17 साल की उम्र में उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। 1992 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म बेखुदी में उन्हें एक बड़ा ही सुंदर किरदार मिल गया निभाने के लिए।

और उनके साथ थे नवोदित अभिनेता कमल सदाना और उनकी माँ तनुजा भी इस फिल्म में साथ थीं। काजोल ने इस फिल्म में राधिका का किरदार निभाया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास साबित नहीं हुई, लेकिन काजोल के अभिनय की बहुत बहुत सराहना हुई। और उसके बाद अब्बास मस्तान की क्राइम थ्रिलर फिल्म बाजीगर में उन्हें रोल मिला, जिसमें उनके साथी कलाकार थे शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी।

अभिनय की बारीकियों के कारण काजल को बहुत जल्द बेहतरीन रोल मिलने लगे और काजोल ने अभिनय की चुनौतियों को स्वीकार करना शुरू कर दिया और खुद को साबित किया। काजोल ने यूं तो बहुत सारे कलाकारों के साथ काम करके अपने अभिनय का जलवा दिखाया, लेकिन शाहरुख खान के साथ उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दीं।

इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में इतिहास का एक खास पन्ना लिख दिया। एक सिनेमा घर में 1000 हफ्ते से भी ज्यादा चलने का रिकॉर्ड बनाया है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म।

मुंबई के एक सिनेमा घर में आप अभी भी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये फिल्म देख सकते हैं। सन 1998 में शाहरुख खान के साथ काजोल की एक और हिट फिल्म आई, कुछ कुछ होता है। तुम

शाहरुख खान और काजोल की एक और हिट फिल्म आई माय नेम इज खान। दोस्तों काजोल ने सिर्फ बेस्ट हीरोइन का ही रोल नहीं किया बल्कि नेगेटिव रोल में भी काजोल बेस्ट एक्ट्रेस कहलाई। उन्होंने फिल्म गुप्त में रोल किया नेगेटिव लेकिन रिजल्ट रहा पॉजिटिव। इस तरह काजोल ने साबित कर दिया कि काजोल हीरोइन का रोल करें या खलनायिका का रोल करें रहेंगी वे उत्कृष्ट अदाकारा।

0: वो राजकुमार उसके सपनों में नए रंग भरता है। काजोल के फिल्मी करियर और निजी जिंदगी के हीरो बने अजय देवगन।
1: देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए, सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए तेरे लिए आए।
0: अजय देवगन के साथ काजोल ने कुछ बेमिसाल फिल्में दी। ये फिल्म है इश्क।
2: देखो

फिल्म दिल क्या करे। इस फिल्म में उनके साथ थे अजय देवगन। 1994 में आई फिल्म हलचल में काजोल ने शर्मिली सिन्हा की भूमिका निभाई थी। सन 1998 में फिल्म आई थी प्यार तो होना ही था, जिसमें काजोल ने संजना पटेल का किरदार अदा किया था।

राजू चाचा, गुंडा राज और यूमी और हम अजय देवगन के साथ ये हिट फिल्में काजोल ने दी। फिल्म यूमी और हम में काजोल अल्जाइमर्स नाम की बीमारी से ग्रसित होती हैं। अजय देवगन के साथ ये एक मार्मिक फिल्म थी।

सन 2006 में काजोल की फिल्म आमिर खान के साथ आई थी। फिल्म थी फना, जिसमें उन्होंने एक नेत्रहीन कश्मीरी लड़की की भूमिका निभाई थी। खास बात यह है कि इस फिल्म में ऋषि कपूर पर्दे पर नजर आए थे।

आमिर खान के साथ कुछ फिल्में और की थी काजोल ने, जैसे फिल्म इश्क। हालांकि फिल्म इश्क में आमिर खान के साथ थी जूही चावला। काजोल की बेहद कमर्शियल फिल्म आई थी हम आपके दिल में रहते हैं। इस फिल्म में काजोल के साथ पर्दे पर नजर आए थे अनिल कपूर।

काजोल बनी थी मेघा वर्मा। सन 2000 में आई फिल्म राजू चाचा, सन 2001 में फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी।

0: कुछ कुछ मीठी।
1: दोस्तों, काजोल को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। सन 1996 में काजोल को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

सन 1999 में फिल्म कुछ कुछ होता है के लिए मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड। सन 2002 में कभी खुशी कभी गम फिल्म के लिए मिला काजोल को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर। अभिनेता थे शाहरुख खान। सन 2007 में आमिर खान के साथ काजोल की फिल्म आई फना, जिसके लिए मिला उन्हें

बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 2011 में फिल्म मायने मिस खान के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इस फिल्म में अभिनेता थे शाहरुख खान।

काजोल के फिल्मी करियर की एक बड़ी बेहतरीन फिल्म आई थी तानाजी, जिसमें अजय देवगन बने थे तानाजी मालूसरे, काजोल बनी थी सावित्री बाई और सैफ अली बने थे उदय भानु सिंह राठौड़। बहुत सारे फिल्मी समीक्षकों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी।

सैफ अली खान के साथ काजोल की एक और फिल्म आई थी ये दिल लगी, जिसमें साथ में अक्षय कुमार भी थे। एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म आई थी काजोल के फिल्मी करियर की सन 1998 में दुश्मन, जो बदला लेने वाले की भूमिका निभाने के लिए उनकी बड़ी प्रशंसा हुई थी।

काजोल की अभिनय यात्रा आज भी जारी है। सन 2015 में उनकी एक कॉमेडी फिल्म आई थी दिलवाले, फिल्म खूब चली थी।

2021 में आई फिल्म त्रिभंगा, इसके बाद सन 2022 में आई फिल्म सलाम वेंकी। काजोल ने कुछ वेब सीरीज भी की, जैसे कि द ट्रायल। काजोल ने अपने फिल्मी करियर में हर तरह के किरदार निभाए। वे कहीं चुलबुली लड़की के रूप में पर्दे पर नजर आईं, कहीं गंभीर स्त्री तो कहीं बेहद रूमानी प्रेमिका या पत्नी।

0: इतना ही।
1: जाती हूँ मैं,
2: जल्दी है क्या,
1: धड़के जिया
2: वो क्यों भला।
0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी अभिनेत्री काजोल पर।
1: जाती हूँ मैं,
2: जल्दी है क्या,
1: धड़के जिया
2: वो क्यों भला।
0: शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: आज के फनकार।

अभिनय के अलावा काजोल एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और विधवाओं और बच्चों के साथ अपने काम के लिए वे काफी चर्चित हैं। काजोल ने सन 2008 में कुछ रियलिटी शोज भी किए जिसमें एक टैलेंट जज के रूप में भी उन्होंने काम किया।

काजोल का फिल्मी करियर काफी विराट है। उनके पूरे करियर को समेटकर सारी फिल्मों का जिक्र करना एक कार्यक्रम में संभव नहीं है। आज बस

0: प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, जीवन एक अधूरी कविता सा है ना? ये अधूरापन मन को सालता है, लेकिन लगातार आपका पीछा करता रहता है। कुछ लफ्ज अधूरे रह जाते हैं, कुछ ख्वाब, कुछ सपने, तो कभी कुछ मुलाकातें भी। हाँ, कुछ इश्क अधूरा रह जाता है, और तब कुछ आप अधूरे रह जाते हैं। हाँ, तब कुछ आप अधूरे रह जाते हैं।
1: तेरे बिना जिया ना लगे।

0: आजा रे।
1: जब मेरी किताब छपेगी ना तो लोग पढ़ेंगे तुम्हारी हंसी की कहानियां, तुम्हारी नाराजगी के किस्से, तुम्हारी बेरुखी की दर्दनाक गाथाएं, और हाँ तुम्हारी बेवफाई भी। पर कोई नहीं पढ़ पाएगा मेरा वो खालीपन, वो अधूरापन, जिसे मैं हर पल महसूस करती हूँ तुम्हारी।

कभी रात के सन्नाटे में जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब अधूरी कहानियां जेहन में तैरने लगती हैं। कहते हैं अधूरी मोहब्बत पूरी मोहब्बत से कहीं ज्यादा गहरी होती है। शायद इसीलिए अधूरी कहानियां जिंदगी की किताब में सबसे गहरी लकीर छोड़ जाती है।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती, वे टुकड़ों में मौजूद होती हैं। एक वाक्य अधूरा छूट जाता है, एक कथानक छूट जाता है, और कभी कभी एक नोटबुक अधूरे विचारों से भर जाती है। हाँ, हमें सिखाया जाता है कि हर कहानी का अंत होना चाहिए, पात्रों को अपने अंत तक पहुंचना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। ये पात्र अपने अधूरेपन के साथ पड़े रहते हैं, चुपचाप किसी कागज के कोने में, दिनों, महीनों और कभी कभी तो जीवन भर। लगा

आज जब किताबों की अलमारी खोली तो सामने आई किताब गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती का ये उपन्यास हमने मिलकर पढ़ा था, याद है? तुम्हें कहाँ याद होगा। हाँ, आज फिर एक बार उस अधूरे प्रेम के लिए दिल भारी हो गया है। इश्क का वो पहला खत कभी फाड़ा नहीं गया मुझसे। वो प्रेम, वो जुड़ाव, वो बेबसी हर शब्द जैसे आज भी सांस ले रहा है। अपनी अधूरी प्रेम कहानी की याद दिलाता है ये खत। और हाँ, तब मन को समझा लेती हूँ ये सोचकर कि हम सब अधूरे होते हैं एक आस में। हाँ, हम सभी तो अधूरे होते हैं एक आस में।

0: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
2: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहाँ के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहाँ खुश है।
1: विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू होने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए आज भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मुंबई उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्सकॉर्प तथा गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा है। तथाकथित यौमे इस्तेसाहल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले 12 रैट माइनिंग श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग हादसे का बचाव अभियान हाल के वर्षों के सबसे कठिन अभियानों में से एक था।

0: पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। श्रोताओं, हमारी आज की सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:51 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।